सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 34 सेकंड में हैं। अब आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। मंगल कामना के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती

0: चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

संसार के भौतिक सुख नश्वर हैं, इसलिए सांसारिक भोगों में ना उलझकर एकमात्र परम पिता परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही शाश्वत सत्य है।

वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना लता मंगेशकर, अंजलि जैन, वाणी जयराम और शर्मा बंधु की गाई भक्ति रचनाएं। आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देश गान।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय है चंचल मन। आलेख है डॉक्टर चंद्र किशोर पाठक का, वाचन है डॉक्टर लिली खन्ना का।
1: यह संसार रति, मति और गति की विचित्र मोहपाश में जकड़ा हुआ है। रति का तात्पर्य वासना से है और मति होती है बुद्धि। जैसी वासना अर्थात इच्छा होगी, वैसी ही बनेगी बुद्धि और तदनुरूप ही उसको प्राप्त करने के होंगे क्रियाकलापों की गति। उन सब के ऊपर देश, काल, परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। मतियाँ भिन्न होती हैं तथा उनका कर्म होता है अपने अनुसार अभिमत व्यक्त करना। महापुरुषों, धर्माचारों के अभिमत भी भिन्न होते हैं। जो विषय मति की सीमा से बाहर रहता है वह कहलाता है अमत अर्थात भेद रहित। सभी शास्त्रों के अवांतर तात्पर्य में भेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं। उसके निरूपण की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, तत्व नहीं। इसी प्रकार ईश्वर की उपासना पद्धतियों में अंतर हो सकता है, ईश्वर में नहीं। तथा धर्माचरण के अंतर मूल धर्म में अंतर नहीं डाल सकती। इसीलिए धर्मों का सार समझने वाले धर्मों में अंतर न मानकर उसको अमत कहना ही श्रेयस्कर समझते हैं। उपनिषदों का यही सार है। अमत निर्विवाद और निर्विरोध होता है। इस संबंध में स्थापित किसी भी भ्रांति, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अविवेक की निवृत्ति होनी ही चाहिए। इसके निवारण से सत्य का साक्षात्कार होगा और द्वंद्वों की समाप्ति। मति के अनुसार अभिमत तथा युक्ति के अनुसार प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार अधिकारी के अनुसार साधना का विधान है। मतों से भ्रमित मति अस्थिर हो जाती है और मन चंचल अनियंत्रित होकर मति और मन भयंकर अनपेक्षित दुर्घटनाओं को आमंत्रण देते हैं और परिणामतः सब छिन्न भिन्न हो जाता है। एक सहज जिज्ञासा है कि आखिर मति और चंचल मन नियंत्रण में कैसे रहें, स्थिरता कैसे रहे। समस्या यथार्थ मूल

0: लक है। एक कृषक था, किसी प्रकार अपने बैलों की जोड़ी के सहारे अपना उदर पोषण करता था। दुर्घटनावश उसकी जोड़ी का एक बैल मर गया। कृषि कार्य हेतु बैलों की जोड़ी ही चाहिए। विवशता में व्यवस्था की ओर हाट से एक स्वस्थ सा बैल बिना गुण लक्षण देके क्रय कर लाया। दुर्भाग्यवश घर आकर उसे ज्ञात हुआ कि क्रय किया हुआ बैल अत्यंत चपल और उद्दंड स्वभाव का है। अपनी चंचलता और उद्दंडता के कारण वह बैल पहले बैल के साथ न तो हल में चल पा रहा था और न ही गाड़ी में। उसकी चपलता से गाड़ी तो क्षतिग्रस्त हुई, कृषक भी दुर्घटनाग्रस्त होकर चुटैल हो गया। उस बैल के कारण वह कृषक अत्यंत दुखी हो गया। दोष किसे दे, उसका लाने वाला तो वह स्वयं था। दुखित मन से वह एक अनुभवी वृद्ध कृषक के पास गया और अपना दुखड़ा उसे कह सुनाया। वृद्ध कृषक ने अत्यंत धैर्य पूर्वक उसकी व्यथा सुनी, हंसकर कहने लगा, बिना गुण लक्षण के देखे किसी वस्तु को लेकर स्वयं ही आपदा क्रय की है, लेकिन दुखी होने से कार्य बनेगा कैसे? यदि ले ही आए हो तब उस पर नियंत्रण का सहज उपाय है। कुछ समय इस नए चपल बैल को उससे भी अधिक उद्दंड और तीव्र गति वाले चपल बैल के साथ जोत दो। वह अपनी तीव्र गति और अधिक चपलता से चला चला कर थका डालेगा, उसको त्रस्त कर नियंत्रण में ले आएगा। कृषक ने उपाय अपनाया, प्रयास सफल हुआ। मन चंचल है तो उसका निषेध न कर उसको उससे भी अधिक चपल इष्ट की चंचल लीलाओं से बांध दीजिए, आपका प्रयास सफल होगा।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आपने सुना चंचल मन विषय पर ये आलेख। आलेख था डॉक्टर चंद्र किशोर पाठक का, वाचन था डॉक्टर लिली खन्ना का। श्रोताओं आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है ए हरिहरन का, संगीत है सतीश भाटिया का।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक

वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे। उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। स्वर था ए हरिहरन का, संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा कीटनाशी का प्रयोग एवं सावधानियां। वार्ताकार होंगे विजय सिंह नौलखा। सुबह 7 बजे सुनिएगा पुराने फिल्मी गाने भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। सुबह 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे कवि मुखसौ। कवि होंगे डॉक्टर जसमान अली चौहान। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर। 9 बजे हिंदी वार्ता के अंतर्गत पर्यावरण वार्ता सुनवाई जाएगी ब्रज की वन संपदा का वैभव। आलेख होगा डॉक्टर अशोक अग्रवाल का और वाचन होगा राजेश कुमार शर्मा का। प्रस्तुति होगी ओपी सिंह की। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय होगा जैव विविधता। आलेख और वाचन होगा संजय भाटिया का। ब्रज की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम ब्रज दर्पण आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। संयोजक होंगे ओपी सिंह। 10 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण होगा दिन 11 बजे। प्रस्तुति होगी रश्मि शर्मा की यादों के झरोखे से। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे

पूर्वाह्न 11:30 पर। मध्याह्न 12:00 सुनिएगा गीत, बात और SMS। 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे रिया देवी के गाए लोकगीत। संगत कलाकार होंगे हारमोनियम पर रामेश्वर दयाल शर्मा, ढोलक पर प्रोफेसर मिश्रा, सारंगी संगत करेंगे मनमोहन कौशिक और परकशन संगत होगी गुलाम जफर की। वनिता लोक कार्यक्रम में आज सुनिएगा फोनिन कार्यक्रम हेलो सहेली। विषय होगा आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पूनम अग्रवाल, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। अपराह्न 2:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में चर्चा होगी गतिशीलता और शारीरिक संतुलन के लिए योग। साथ ही सुनेगा स्वरचित कहानी भाग्य बड़ा ईश्वर, कहानीकार होंगी ऋचा अरोड़ा। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम शाम 6:15 पर चर्चा होगी पशुपालन से खेत की समृद्धि और खेत बचाओ अभियान में युवाओं की भूमिका इन विषयों पर। साथ ही सुनवाई जाएगी भेंट वार्ता गर्मियों में पशुओं के लिए संतुलित पोषण। वार्ताकार और विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि से सत्यव्रत सिंह की बातचीत।

संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:45 पर, 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रज वार्ता सुनवाई जाएगी। मथुरा को पुरातात्विक स्वरूप, वार्ताकार होंगे चंद्रशेखर शर्मा। शाम सुहानी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। रात 8 बजे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। सुहाना तराने रात 9:15 पर। रात 10 बजे सुनिएगा नाटक एक था राजकुमार, लेखक होंगे डॉक्टर ब्रज बल्लभ मिश्रा, प्रस्तुति होगी सतीश माथुर की। रात 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, कलाकार होंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, आप सुनेंगे इनका ख्याल गायन, राग होगा जय जय वंती।

0: ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है कीटनाशी का प्रयोग एवं सावधानियां। वार्ताकार हैं विजय सिंह नौलखा।
1: किसान भाइयों, आज हम आपको कीटनाशकों का प्रयोग एवं सावधानियां विषय पर जानकारी देंगे। कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए इनका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अतः कीटनाशक को फसलों में कीट नियंत्रण के लिए काम में लेने से पहले, काम में लेते समय तथा काम में लेने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कीटनाशी को काम में लेने से पहले रखी जाने वाली सावधानियों पर। सबसे पहले कीट को पहचानें या कीट विशेषज्ञ से पहचान करवा लें व पता लगाएं कि वास्तव में फसल को कितना नुकसान हुआ है। जब आर्थिक हानि स्तर का नुकसान पहुंच जावे तभी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। कीट नियंत्रण की सही जानकारी हेतु कीट विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। सिफारिश की गई कीटनाशी का ही प्रयोग करें। कीटनाशी के डिब्बे पर तिकोने आकार में लाल या पीले, नीले या हरे रंग का निशान लगा होता है। जहां तक हो लाल निशान वाली कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाल रंग वाली से कम नुकसान वाली पीले रंग की व उससे कम नीले रंग की और अंत में सबसे कम नुकसान हरे रंग के तिकोने निशान वाली कीटनाशियों से होता है। कीटनाशी खरीदते

0: समय उसके बनाने व काम में लेने की अंतिम तारीख अवश्य देखें। डिब्बों के साथ ऊपर लेबल या सूचना पत्रक आता है, इसे भी पढ़ लें व दिए गए निर्देशों का पालन करें। जगह जगह समूह में कीटनाशी हो तो एक के बाद दूसरी काम में लेवें। मिश्रण कभी न बनाएं। रिसने वाले या टूटा फूटा स्प्रेयर कभी इस्तेमाल न करें। कीटनाशकों को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें और जरूरी है कि ताले में रखें। अब बात करते हैं कीटनाशी मिलाते व छिड़कते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक प्रकार से शरीर की सुरक्षा हेतु कपड़े पहने, हाथों में रबर के दस्ताने अवश्य पहने। बहुत जहरीले कीटनाशी छिड़कते समय अकेले न रहें। कीटनाशी को पानी में मिलाते समय किसी बच्चे या आदमी को पास में खड़ा न होने दें व मिलाने के लिए लकड़ी का डंडा या लोहे की सरिया काम में लें। भरते समय कीप का प्रयोग करें और घोल को इधर उधर न गिरने दें। लेबल व सूचना पत्रक को पुनः पढ़ें व निर्देशों का पालन करें। कीटनाशी छिड़कने वाले यंत्र की जांच कर लें कि कहीं वो खराब तो नहीं हो गया। त्वचा खास रूप से मुंह और आंखों का कीटनाशी से बचाव रखें। द्रव्य वाली कीटनाशियों को सावधानी से पंप में डालें। चूर्ण रूप वाली कीटनाशियों के कण आदि मुंह में न गिरें व गलती से गिर भी जाएं तो तुरंत साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह से धो लें। कीटनाशी मिलाते एवं छिड़कते समय खाना पीना या धूम्रपान करना सख्त मना होता है, इसका पालन करें। यह भी निश्चित कर लें कि कीटनाशी ठीक मात्रा में पानी में मिल गई है या नहीं। कीटनाशी या उसका धुआं श्वसन क्रिया द्वारा अंदर न जाने दें। हवा के विरुद्ध दिशा में चलकर कीटनाशी का छिड़काव न करें। छिड़काव सदा कमर के नीचे करें ताकि कीटनाशक सांस के साथ शरीर के अंदर न जाए। मुंह से हवा लगाकर बंद हुए नोजल आदि की सफाई कदापि न करें। यह सुनिश्चित कर लें कि छिड़काव करने वाली जगह पर तौलिया, साबुन व पानी उपलब्ध हो तथा कपड़ों का भी एक जोड़ा अलग से रखा होना चाहिए। एक दिन में जितनी जरूरत हो उतना ही कीटनाशी काम में लें। फूल आने पर फसलों पर बहुत कम मात्रा में छिड़काव तथा सायंकाल में ही इसका छिड़काव करें ताकि मधुमक्खियों को बचाया जा सके। कभी भी कीटनाशी खेत में एकांत में न रखें व घर पर भी बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशी
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय था कीटनाशी का प्रयोग एवं सावधानियां। वार्ताकार थे विजय सिंह नौलखा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: Frühstück und Gedam. Iam Akashvani. Samprati Vartaha Shru Yantam Pravachika Sadhana Sharma. अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पोताः आईएनएस दुनागिरिः, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे द्विशताधिकाः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिक वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याण

झनक झनक पायल बाजे। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत, आवाजें थी लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी बसंत देसाई ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आर पार फिल्म से, गाया है गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने, बोल है मजरू सुल्तानपुरी के, धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: अरे जा।
1: अरे सुन।
2: पुराने फिल्मी गीतों का आनंद हमारे श्रोता ले रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना तलत महमूद को फिल्म सुजाता में। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पेइंग गेस्ट फिल्म से, गाया है किशोर कुमार ने, धुन बनाई है एस डी बर्मन ने और गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

किशोर कुमार के गाए इस गाने के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट UG की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी नई और विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री कल बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 करोड़ से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और

0: वीरता की चर्चा करते हुए कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से की भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के मुस्लिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
0: इस अवसर पर लखनऊ के जन भवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित NEET UG की पुनर्परीक्षा कल शाम शुचिता के साथ शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। NTA ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन एवं जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से

संचालित किया जाए तथा वर्षा जल संचयन को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ा जाए। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वह खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का यह सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महीने के अंत तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। उधर प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। इसे लेकर शासन से जारी निर्देश के अनुसार अब तक हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न, करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित, अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

0: भैया, यह कार्यक्रम में आज आपको सुनवाए रहे हैं कवि मुक्सो। कवि हैं डॉक्टर जसमान अली चौहान।
1: सबसे पहले मैं ग्रीष्म ऋतु पर कुछ छंद प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रस्तुत है पहला छंद।

कोमल कपोल अनमोल गई लालिमा, कालिमा ने रख होत मन मेरो तंग है। जसुमान ऐसे जेठ मास में उदास।

सात है, ज्वालन के पुंज विकराल बरसात है। ताप मार भीषण भीषण के गया सम, जसमान द्रुम छाह बैठ सह जात है। स्वेद कर पहुँछ लेत श्रम सो वियोग धार, द्योस अवसान काल मन लल चात है। द्योस अवसान काल मन लल चात है। द्योस बाल काल तेज पुंज धार लेत भान, द्योस मध्य काल भान होत विकराल है। धरन तजत मग चलत जरत गात, भाल को पसीना बन जात कंठ माल है। भाल को पसीना बन जात कंठ माल है। सिर कौन डार के बिछौना अल सात पौन, जस मान चाओ दिस बिछो ज्वाल जाल है। रेन में चैन की न आस अब शेष रहे, के बात बरनो जी काल महाकाल है। के बात बरनो जी काल महाकाल है। गोरे गात कारे कर रूप रस हीन करे, ग्रीष्म ऋतु ऐसी सख मोए न सुहाई है। और कोकिल की कूक कून कान तक आन देत, सख घन श्याम की सूरत छुपाई है। सख घन श्याम।

सूखे नद नाले पारे पानी के कसाले पारे दूध दध लाले पारे ऋतु प्रभु ताई है। जस मन आस के सहारे अब सांस लेत घन घन श्याम की सूरत लगाई है। घन घन श्याम की सूरत लगाई है।

0: गोपिका खटक हेतु नट खट श्याम जुने जमुना के तीर जाए बांसुरी बजाई है और मीठी मीठी धुन सुन ग्वाल न के झोर दौरे प्रेम के हवाले पर नंगे पैर धाई है प्रेम के हवाले पर नंगे पैर धाई है ताते रेत चलत जरत पम छाले परे जसमान लाले पर दर्शन पाई है आरत पुकारत समारत न को व्याकुल जहाँ की तहाँ गोपिका गिराई है व्याकुल जहाँ की तहाँ गोपिका गिराई है गोपी न के हाल कुंबे हाल देखे नंदलाल नेह भर घन श्याम मेघ बने आए हैं जहर जहर झीनी झीनी सी फुहार बने हरे किने गात जेहि ताप मुरझाए हैं हरे किने गात जेहि ताप मुरझाए हैं बरसत नेह मेह सर सत अंग अंग रंग ढंग बदले उमंग भर लाए हैं ताप दुख दूर कर मन में उल्लास भर जसमान नाच नाच जसन मनाए हैं जसमान नाच नाच जसन मनाए हैं।
1: और अब मैं कीरत किशोरी की समस्या पूर्ति पे कुछ छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत है पहला छंद।
0: कोटि चंद ज्योति रूप दिव्य है अनूप रूप बानी है परम रस रूप राधा गोरी की कोटि चंद ज्योति रूप दिव्य है अनूप रूप बानी है परम रस रूप रा...

जसमान छाई जग कीरति किशोरी की, प्रेम डोर बांध जीत नेहा के सुनाए गीत कामना।

श्याम मन हारनी बिहारनी करील कुंज द्रग लोभ कारनी है लोन छवि गोरी की विपुल।

श्याम मन रांची रहे कीरति किशोरी की। गयन दुहावन कु कान मन भावन कु चितक लुभावन कु बतिया ने होरी की। और माखन पटक देत नेह सो अटक लेत कान सो खटक देत चाह झक झोरी की। कान सो खटक देत चाह झक झोरी की। अधरन गयान धूर कर मुस्कान जस मन

की। जस मन लाल नंद गोपी संग छल छन्न, माखन चुराव चंद खोर लाग चोरी की। गौर श्याम रूप झांकी प्रेम रस छाक छाकी,

शैल श्रृंग सम वक्ष सामर सलोने अक्ष भासत परम दक्ष वासिनी सुगोरी की सुख सम नासिका है सुख गेह वासिका है श्याम की उपासिका है आसमन।

मन माए हर साए श्याम संग गौर पाए श्याम तन लसियाए अनुकृत गोरी की गौर श्याम अभिराम।

भेजे मन मीत गुने उद्धव के गीत सुन शिष्य को रही धुन खीज राधा भोरी की जग समझाए मिथ्य ब्रह्म को बताए सत्य मन माह रहो कृत हम सो ठिठोरी की गलवाहे डार झूले कदम की डार झूल गलवाहे डार फूले कदम की डार झूले कैसे जाए याद भूले।

0: के ठाड़ो रात मैया को बतावे बात भैया नु मरोरी की। रोज रोज मांगे दही बात ना है जाती सही, रोस सु बताए रही मटकिन फोरी की। सोच सोच कछु रह जात मन मन माहे सब कुछ आत, और बात न बताए पाए चिरन की चोरी की। पुने देख एक साथ जस मान नाए मात, वेद और पुराण गाथ कीरति किशोरी की। वेद और पुराण गाथ कीरति किशोरी की।
1: भैया अभी आपने सुनो डॉक्टर जसमान अली चौहान को काव्य पाठ, और अब आपको सुना मैं अलका राजेश को गायो यह लोकगीत।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं मुनीश शर्मा।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भर

0: निर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
0: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
0: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG

0: पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्धविराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और

0: राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रांग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host 2-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड दीज रिमार्क्स आफ्टर कमिशनिंग 3 इंडिजिनियसली बिल्ट इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स, INS दूनागिरी, INS संशोधक एंड INS

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी, दूसरा कोई मैच है क्या?
4: ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
3: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम अपने सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं।

आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना सोनू निगम को फिल्म बाबुल में। कार्यक्रम का ये अगला गीत रावण फिल्म से। गीत समीर का है, स्वर और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नंदिनी शेखर की आवाज में। फिल्म का नाम है रावण।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और मधुश्री की आवाजों में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है ए आर रहमान ने। फिल्म का नाम है उमराव जान।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सोनू निगम और मधु श्री की आवाजों में जोधा अकबर फिल्म का ये गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं उमराव जान फिल्म से। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं. सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी वार्ता के अंतर्गत पर्यावरण वार्ता का कार्यक्रम. विषय है ब्रज की वन संपदा का वैभव. आलेख है डॉक्टर अशोक अग्रवाल का, वाचन है राजेश कुमार शर्मा का और प्रस्तुति है OP सिंह की.
4: प्राचीन समय में संपूर्ण ब्रज मंडल घने जंगलों में आच्छादित था. वन संपदा अपने चरमोत्कर्ष पर थी. जगह जगह कुंड और सरोवर हुआ करते थे. हरियाली का वैभव प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक था. अनेकों प्रकार के पेड़ पौधों और नाना प्रकार के जीव जंतुओं की उपस्थिति ने जैव विविधता को बनाकर पर्यावरण को सुंदरतम बनाया. साथ ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और क्रीड़ा स्थली की वजह से ब्रज मंडल का हृदय मथुरा वृंदावन विश्वविख्यात हो गया. बांसुरी की धुन, मयूर का नृत्य, कोयल की कुहू कुहू और गाय के रभाने के स्वर से गुंजायमान पूर्व का ब्रज वर्तमान में अपने बदले स्वरूप में दिखलाई पड़ता है. वनों का जंगल कंक्रीट के जंगलों में बदल गया है. मंदिर आश्रमों के विस्तार के साथ जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण की प्रक्रिया ने ब्रज मंडल के पर्यावरण को गहरी क्षति पहुंचाई है. जैव विविधता नष्ट हो गई है. पर्यावरणविदों का मानना है कि समय रहते यदि पर्यावरण विनाश की प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो भविष्य में ब्रज का प्राचीन स्वरूप ही नहीं बदलेगा बल्कि आध्यात्मिक स्वरूप भी बदल जाएगा. भगवत गीता के एक श्लोक के माध्यम से नंद बाबा को बताया है कि संपूर्ण ब्रज मंडल वनों से आच्छादित होने के कारण हम सभी वनवासी हैं. हम शहरों और गांव के निवासी नहीं हैं. चारों ओर हरियाली और पहाड़ हैं. कल कल बहती यमुना नदी और सभी प्रकार के जीव जंतुओं के आवास हेतु पर्याप्त कुंड सरोवर भी हैं. वनों से आच्छादित होने के कारण ही अनेकों वनों और उपवनों का उल्लेख इतिहास के पन्नों में सुरक्षित है. साथ ही विभिन्न स्थानों के नाम वनों से रखे गए हैं, जैसे वृंदावन, महावन, तालवन, विल्ववन आदि आदि. ब्रज में तुलसी, तमाल, कदंब, करील, बबूल, शीशम आदि की भरमार हुआ करती थी. वहीं दूसरी ओर गुंजा, जवासा

अश्वगंधा के साथ अनेकों औषधीय पादप हुआ करते थे, किंतु आज परिस्थिति बदली हुई सी दिखाई पड़ती है। वनों का घनत्व तेजी से घटा है, जो वनस्पतियां ब्रज की पहचान थीं, वो धीरे धीरे विलुप्तता की ओर बढ़ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय गुंजा, तमाल, तुलसी यानी वृंदा आदि के पौधों में अत्यधिक कमी आई है। प्रकृति का ये नियम है कि जब पेड़ पौधे नष्ट होते हैं तो इसका प्रभाव संपूर्ण पर्यावरण पर पड़ता है। पेड़ पौधों से पर्यावरण सुशोभित होता है और अनेकों जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास भी। प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाने से प्रजातियां या तो स्थान गमन करती हैं या विलुप्त हो जाती हैं। वर्तमान में हरियाली नष्ट हो जाने से जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। वर्तमान में कई पादप प्रजातियां ब्रज में देखने को नहीं मिलती हैं। वहीं एक शोध से ये सिद्ध हो चुका है कि विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। प्रातःकाल में घर आंगन में फुदकने वाले चिड़िया, चिरोटा और गौरैया जैसे कहीं गायब से हो गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य के दृष्टिगत ही लिखा था, तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, यानी सूर्य की पुत्री और यम की बहन यमुना के तट पर बैठे हुए बहुत सारे घने तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। कविवर रसखान ने कहा कि कौटिक एकल द्योत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कवि के प्रेम में ये भाव है कि जो आत्मिक सुख ब्रज की प्राकृतिक छटा में है, उसके सौंदर्य को निहारने में है, वैसा सुख संसार की किसी भी सांसारिक वस्तु को निहारने में नहीं है। इसलिए वो ब्रज की कांटेदार झाड़ियों और कुंजों पर सोने के महलों का सुख न्यौछावर कर देना चाहते हैं। ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य के गौरव को बनाए रखना और इस विरासत को किसी प्रकार से नष्ट नहीं होने देना है। भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानने वाले ब्रजवासियों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता को बढ़ावा देना होगा। पश्चिम दिशा के वनों के नष्ट होने से रेगिस्तानी वातावरण का फैलाव बढ़ता जा रहा है। ब्रज की धरती का ताप बढ़ने के साथ वर्षा में कमी होना इसका संकेत है। 84 कोस की परिक्रमा का अधिकांश भाग जहां घने जंगलों से आच्छादित था, वो आज स्पष्ट रूप से पर्यावरण विनाश की कहानी कह रहा है। पिछले 50 दशकों में ब्रज के पर्यावरण में क्रमशः परिवर्तन हुआ है। तमाल, कदम, करील आदि पौधों की संख्या में कमी आई है। वन क्षेत्र धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। अंत में मेरा सभी ब्रजवासियों से निवेदन है कि हम सभी मिलकर युद्ध स्तर पर हरियाली संवर्धन के कार्य को प्राथमिकता दें। ब्रज की विरासत और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को पुनः स्थापित करने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें। पर्यावरण विनाश के नाम पर विकास न किया जाए, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि राधा कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी भविष्य में अपनी मौलिकता न खो।

हिंदी वार्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण वार्ता। विषय था ब्रज की वन संपदा का वैभव। आलेख था डॉक्टर अशोक अग्रवाल का। वाचन था राजेश कुमार शर्मा का। प्रस्तुति थी ओपी सिंह की।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर विवेक कुमार पांडे का।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कुशीनगर जिले के तमकुही राज में आयोजित एक कार्यक्रम में तमकुही राज व फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्रों की 424 करोड़ की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने यहां जनता से कोई सरोकार नहीं रखा। यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, युवाओं के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 25 साल पहले यहां जंगल पार्टी का आतंक था, इंसेफेलाइटिस से पूरा जिला प्रभावित था, मुसहर समुदाय में भूखमरी थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि यह तभी संभव हुआ है जब आपने अपना अच्छा जनप्रतिनिधि चुना है। उन्होंने कहा कि अब फाजिलनगर को पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा, हम इसकी मान्यता देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर से शीघ्र ही उड़ान शुरू होगी तथा इसी सत्र से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही जिले की अन्य विधानसभाओं में भी जनसभा करेंगे।
2: भगवान महावीर से नाम होगा, भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैसे होती है सनातन धर्मावलंबियों से ज्यादा कौन जानता है।
1: इससे पहले उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपा। जनसभा को क्षेत्रीय सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, गोरखपुर के सांसद रवि किशन तथा अन्य स्थानीय विधायक गण ने संबोधित किया। बाद में कुशीनगर स्थित निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहा यह विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों तथा युवाओं के लिए आधुनिक कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना, खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना तथा किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना है। प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री एवं कुशीनगर

0: जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कुशीनगर में सांसद विजय दुबे और राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह व विधायक गण के साथ केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं सुशासन की उपलब्धियों को साझा किया।
1: पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, लखपति दीदी योजना, 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। हमारी जो लखपति दीदी हैं, वो अपने सरकार से मुख्यमंत्री जीवा योजना के अंतर्गत जो उनको लोन मिलता है, अपने तो रोजगार पाए, दूसरे को भी रोजगार देने का काम करते हैं।
0: इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर सूचना विभाग द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विभागीय उपलब्धियों संबंधी तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी और स्टॉलों का उन्होंने उद्घाटन व अवलोकन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की गई है। राज्य महिला आयोग की सदस्य जनक नंदिनी की अध्यक्षता में कुशीनगर जिले की हाटा तहसील में महिला उत्पीड़न की समस्याओं पर महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया। सुनवाई के दौरान कुल 23 आवेदन सामने आए, जिसे संबंधित विभागों को निस्तारण हेतु भेजा गया। महिला आयोग की सदस्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा, आंगनबाड़ी केंद्र, वृद्धाश्रम व वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। कुशीनगर जिले में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में विधायी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरांत अवकाश प्राप्त विंग कमांडर आलोक सक्सेना ने अपना प्रभार नवागत अधिकारी अवकाश प्राप्त कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी को अपना कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व सैनिकों पुष्प मालाएं भेंट कर विंग कमांडर सक्सेना को भावभीनी विदाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों एवं कार्यालय स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुशीनगर में उनका कार्यकाल अत्यंत सुखद एवं यादगार रहा है तथा सभी का भरपूर स्नेह, सहयोग और सम्मान प्राप्त हुआ है।
2: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सभा का।
3: कालीन और पर्यटन के लिए पहचान रखने वाला मिर्जापुर अब औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। जिले में 78,148 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पहुंचा हुआ है। इन निवेशों से न सिर्फ उद्योगों का विस्तार होगा बल्कि 13,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। जिले को अब तक 192 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 104 परियोजनाओं को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए चयनित किया गया है। इनमें 25,625 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। प्रदेश की योगी सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पौधारोपण का महाअभियान की अभी हाल में ही शुरुआत की है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अभियान के तहत रोपे गए पौधों को शत प्रतिशत सुरक्षित रखा जाए और आम जन को पौधारोपण के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी किया जाए। इसी कड़ी में मिर्जापुर जनपद में पौधारोपण अभियान को तीज त्योहारों और संस्कृति से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के वनों की स्थापना के साथ ही विशिष्ट प्रकार के आयोजन भी किए जाएंगे, जिससे आमजन पौधारोपण के साथ साथ की सुरक्षा के लिए भी जागरूक हो सके। वृक्षारोपण अभियान 2026 के तहत जिले में कुल 87,50,015 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। प्रभागी वनाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत जिले में हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए मानसून में 5 वनों व 2 वाटिकाओं की स्थापना वन विभाग व अन्य विभागों द्वारा की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से महर्षि चरक औषधि वन स्थापित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जड़ी बूटियों और औषधि पौधों का रोपण होगा। इसके अलावा समरस वन, समृद्धि वन, कपिल वन एवं ऊर्जा वन भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के अवसर पर जनपद के बरकछा में वंदे मातरम वाटिका की स्थापना की जाएगी, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रिय पौधों का रोपण किया जाएगा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मणिहान रेंज में कप्फा झरना के पास रक्षाबंधन वाटिका की स्थापना की जाएगी, जहां पर भाई बहन मिलकर फलदार पौधों का रोपण करेंगे। इसके अलावा उद्यान विभाग की ओर से आम भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के जरिए लोगों को फलदार पौधे रोपने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। इसी तरह ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रत्येक विकास खंड में जन का भंडारा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के तहत आम जनों को रोपने के लिए सहजन के पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य सहजन के औषधि गुणों से आम जन को रूबरू कराते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण के लिए जागरूक करना है। केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी गत दिनों मिर्जापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत के सभागार में प्रेस वार्ता की और मोदी सरकार के कामों को गिनाया। कहा, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार के योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
4: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का रिकॉर्ड बनाया है। देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री

0: जी ने काम किया, जिसका नतीजा है कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाना हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना हो, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।
1: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गत दिनों मिर्जापुर के BLJ ग्राउंड में जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा विकसित भारत प्रदर्शनी व जनपद के विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों एवं प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों तथा स्थानीय उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन उर्वरक भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने देवरी ब्लॉक हलिया मिर्जापुर में भूमि पूजन कर हरबरा MP बॉर्डर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चौड़ीकरण व उच्चीकरण इन दिनों कार्यों के शुभारंभ की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत भी थे। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा गत दिनों विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया, विकास और जन कल्याण की कामना की। दर्शन के उपरांत AK शर्मा ने विद्युत विभाग के कार्यों पर प्रकाश डाला और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया।
2: स्मार्ट मीटर जो है वो प्रीपेड मोड में नहीं बल्कि पोस्ट पेड मोड में चल रहे हैं और कहीं कोई मीटर को लेकर के समस्या नहीं है। गर्मी का सीजन है, थोड़ा लोड बढ़ने से कई बार टिपिंग होती है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बिजली आ रही है। विंध्याचल जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ अगर 20 घंटे बिजली आ रही है और 2-4 मिनट के लिए कहीं किसी की आंधी आती है, तूफान आता है, उसमें बिजली की व्यवस्था में थोड़ा विक्षेप होता है, नहीं तो सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी 20 घंटे कम से कम बिजली और शहरी क्षेत्रों में तो 24 घंटे बिजली हम देने का।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, विषय है जैव विविधता। आलेख और वाचन है संजय भाटिया का।
1: पृथ्वी पर आदिकाल से ही अनुकूल परिस्थितियां, तापमान एवं प्राकृतिक संपदा की उपलब्धता के आधार पर ही हजारों प्रकार के जीव विचरण करते रहे हैं। यह जीव स्वयं तो अपने वंश को आगे बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ अन्य जीवों को भी जीवन यापन में सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसी हजारों प्रजातियां ही जैव विविधता कहलाती हैं, जो वनों एवं समुद्रों में उपलब्ध संपदा अनुसार जीवन यापन करती हैं। सदियों से यह जीवन चक्र चला आ रहा था, पर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मनुष्यों की तेजी से बढ़ती आबादी ने अपने आवास एवं विचरण के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई एवं बेतरतीब तरीकों से कारखानों को स्थापित कर वन्य जीवों पर सीधे प्रहार शुरू कर दिए। मनुष्य का दिमाग जो जो विकसित होता गया, उसने नित नए आविष्कारों की झड़ी लगा दी। इस सारी ताबड़तोड़ प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने जैव विविधता के बारे में सोचा ही नहीं। अंधाधुंध तरीके से विकास, पृथ्वी का दोहन, समुद्रों में केमिकल आदि पदार्थों का बहुतायत मात्रा में पहुंचना, सारे ऐसे घटक हैं जो प्रकृति ने नहीं अपितु मानव ने ही जनित किए हैं। इससे हजारों प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं एवं हजारों प्रजातियां समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। जैव विविधता को संजोए रखने में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि घने वनों में ही जीव निवास करते हैं। ये विविध प्रकार के जीव एक दूसरे को नियंत्रित भी करते हैं एवं वर्ष पर्यंत इनके द्वारा किए गए मल मूत्र से जो खाद तैयार होती है, वो हवा पानी के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में पहुंचकर उस जगह को उपजाऊ बनाते हुए अंततः समुद्र में मिलकर वहां के जीवों के आहार की प्रक्रिया में योगदान देती है। मानव जीवन को सुरक्षित एवं लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर विचरण कर रही हजारों प्रजातियों को उनके अनुकूल वातावरण प्रदान करना एवं संरक्षण देना नितांत जरूरी है। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता में पृथ्वी पर उपलब्ध हजारों वो सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनका जीवित रहना दूसरी प्रजाति के लिए जरूरी है। प्रकृति में एक ऐसी चेन निर्धारित है जो न केवल सब जीवों को जीने का अनुकूल स्थान एवं वातावरण प्रदान करती हैं, अपितु जीव विशेष की बहुतायत होने पर उन निर्भर दूसरे जीवों को भी जीवन प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म एवं छोटे एवं

0: एवं जमीनी जीव जिनकी वंश वृद्धि एक साथ हजारों में होती है, तो दूसरे जीव उनको अपना भोजन बनाकर न केवल स्वयं तृप्त होते हैं अपितु उनकी संख्या में भी संतुलन रखते हैं। समुद्र में हजारों की तादाद में पैदा होने वाली मछलियों का यदि अन्य जीव भोजन नहीं करें तो चंद वर्षों में ही समुद्र इनसे ढक जाएगा एवं प्रकृति की जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी। जैव विविधता में वनों का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। आदिकाल में मानव भी वनों पर ही आश्रित थे। वनों में प्रकृति ने वो शक्ति एवं संतुलन दिया है कि धरती पर आने वाले कितने ही बड़े परिवर्तन उसे समूल नष्ट नहीं कर सकते। थलचर जीवों का आश्रय एवं प्रगति वनों से ही संभव है। वनों में हजारों तरह की जीवन रक्षक औषधियां विद्यमान है जिसके सहारे प्रत्येक जीव अपना जीवन चक्र चला पाता है। यहाँ तक कि समुद्रों में जीवन यापन कर रहे जलचर जीव भी वनों से बहकर आए पानी एवं अयस्क पदार्थों से उत्पन्न काई जैविक खाद का सेवन करके ही जीवन यापन करते हैं। यह सादा जीवन चक्र सदियों से चल रहा है पर बढ़ती आबादी ने अनेक संकट पैदा कर दिए, यथा रोग और जलवायु परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, धरती का बढ़ता तापमान, कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग, वनों की अत्यधिक कटाई, चराई एवं वनों को समूल नष्ट कर शहरीकरण का विस्तार। कई देशों ने अपनी सीमाओं में संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचानने और उन्हें संरक्षण हेतु जैव विविधता कार्य योजना पर कार्यक्रम शुरू किए, पर जरूरत है प्रत्येक मानव के जागरूक होने की। अब समय चिंतन के साथ साथ जैव विविधता को बचाने एवं वनों को बढ़ाने का है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा, विषय था जैव विविधता, आलेख और वाचन था संजय भाटिया का।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए श्रोताओं। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी आज 22 जून को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पूनम अग्रवाल, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान। श्रोताओं यदि आप मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, अपवर्तक दोष, ड्राई आई सिंड्रोम, आंख का सफेद हिस्सा लाल हो जाना आदि समस्याओं से ग्रसित हैं तो इसके समाधान के लिए प्रश्न पूछिए डॉक्टर पूनम अग्रवाल, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा आज सोमवार 22 जून 2026 और समय होगा अपराह्न 1:15 पर। सूचना समाप्त हुई।

तरीके से कर सकते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। हमारी भारतीय संस्कृति में योग को, व्यायाम को बहुत ज़रूरी बनाया गया है, सात्विक आहार को बहुत ज़रूरी बताया गया है, ताकि आप अगर तन से स्वस्थ रहेंगे तो आप मन से भी स्वस्थ रहेंगे। कहा गया है कि अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, तो आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं। आपका मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और आप अपने मन से कुछ भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि शरीर का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये सोच लें कि शरीर को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अक्सर आप सोचते हैं इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में, चकाचौंध वाली ज़िंदगी में, हम अपने शरीर को समय देना छोड़ देते हैं। कुछ पल अपने लिए निकालिए, अपने लिए जीना सीखिए, क्योंकि अगर आप स्वयं स्वस्थ हैं तभी आप खुद के लिए कर पाएंगे, किसी और के लिए कुछ कर पाएंगे। इसीलिए अपना ध्यान रखिए और अपने साथ साथ अपनों का भी ध्यान रखिए।

सुप्रभात, करते हैं एक नई शुरुआत नए उमंग और नए उत्साह के साथ। श्रोताओ, कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपका मन भी स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है। आप अपना कोई भी कार्य बड़े मनोयोग से, बड़े बेहतर

0: श्वेता, 21 जून का दिन यानी कि ऐसा दिन जिस दिन सभी जनता को जागरूक किया जाता है अपने स्वास्थ्य के प्रति। गणेश्वर स्टेडियम में एक भव्य आयोजन किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर आप योग करेंगे तो आप निरोग रहेंगे, इसी बारे में हमें विस्तार से जानकारी दे रही हमारे साथ हैं।
1: मैं डॉक्टर नेहा, आयुष विभाग से, और आज का

0: को यही संदेश देना चाहेंगे कि वो प्रतिदिन अपने जीवन शैली में योग को अपनाएं, क्योंकि प्रतिदिन योग भगाएगा रोग।
1: आप आयुष विभाग से भी हैं, और ऐसे में क्या योग से व्यक्ति निरोग रह सकता है बिना किसी दवा के, क्या ये संभव है?
0: देखिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे पहले स्वस्थ शरीर को हम योग के माध्यम से स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन जब बीमारी होती है तो हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर हम नियमित रूप से अपने जीवन में योग को अपनाएंगे तो शायद रोगी होने की संभावना वो बहुत ही अल्प रह जाती है। तो इसीलिए ये बिल्कुल तार्किक नहीं है कि योग और दवाई का आपस में कोई भी सामंजस्य है। लेकिन हाँ, योग के लिए ये जरूर कहेंगे कि योग प्रतिदिन होगा तो रोग निकट नहीं आएंगे।
1: आपने जिक्र किया स्वस्थ शरीर के लिए आपको योग करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सभी व्यक्ति के मन में ये विचार आ सकता है, प्रश्न आ सकता है, तो हम योग क्यों करें, हम तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है।
0: नहीं, बिल्कुल फिट एंड फाइन है उसका एक माध्यम है, हम रोज खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? इसलिए ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारे शरीर को मल्टीविटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबकी आवश्यकता है, जो हमारे मांसपेशियों को सुदृढ़ रखता है। इसलिए योग भी उसी प्रकार से एक स्वस्थ शरीर के लिए अति आवश्यक है, जिस प्रकार से भोजन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है।
1: आज के समय में भागम भाग की जिंदगी, युवा पीढ़ी फास्ट चीजों की तरफ ज्यादा जाती है, कई सारी की विधाएं एक्सरसाइज करने के लिए, तो ऐसा क्यों लगता है कि योग सर्वोपरि है?
0: योग इसीलिए सर्वोपरि है क्योंकि इसके लिए कोई बजट नहीं है, ये फ्री का, मुफ्त का, और हमारी प्राचीन विधा है भारतीय संस्कृति, क्योंकि आज से 5000 साल पहले ये योग विधा आज का नया दौर नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम विधा है, जहां लोग 5000-6000 वर्ष पहले बिना किसी दवाई के, तब उस समय कोई रोग नाम का शब्द ही नहीं था, तब लोग ऐसे ही स्वस्थ रहते थे और शायद अपनी शतायु मतलब 100 वर्ष की आयु को भी पूर्ण करते थे स्वस्थ अवस्था में। तो इसलिए आज योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और जो ये आपाधापी चल रही है, लोग भाग रहे हैं, और आज के समय में शारीरिक से ज़्यादा लोग मानसिक स्तर पे बीमार हो रहे हैं, उन्हें अपनी जॉब प्रोफाइल को लेके, अपने जो सुखी जीवन के संसाधन को जुटाने के लिए, जो एक वो मानसिक सुकून को कहीं दरकिनार कर रहे हैं, उसके लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमारी कार्य क्षमता, क्योंकि शरीर, एक स्वस्थ शरीर कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का भी वास होता है, तो इसीलिए दिमाग स्वस्थ रखने के लिए भी, हमारा मानसिक स्तर सर्वोच्च रखने के लिए योग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
1: आज के समय में जिम कल्चर बहुत ज्यादा है, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब जिम जा रहे हैं, लेकिन अपने को, शरीर को पतला करने के लिए, सिर्फ पतला करने के लिए, अपना वेट लॉस करने के लिए वो हर विधा अपना रहे हैं, तो उनके मन में शांति नहीं है, लेकिन मन में तनाव अब भी जारी। क्या योग के द्वारा मन भी स्वस्थ होता है, तन भी स्वस्थ होता है, क्या ये सही है?
0: ये बिल्कुल सही है। योग, देखिए, योग हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलन में रखता है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, इसीलिए ये कहा गया है, जो हमारे मन को शांत रखे और हमारे शरीर को भी शांत रखे, क्योंकि अगर हमारा मन शांत होगा, हम अपनी कार्य क्षमता को भी एकदम कौशल पूर्ण ढंग से और उसका निर्वहन कर पाएंगे। इसलिए हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से, और एक हेल्थ की जो डेफिनेशन भी दी गई है हमारे जो बड़े बड़े क्लासिकल टेक्स्ट है मेडिसिन की बुक में भी, कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली चारों एस्पेक्ट में जो स्वस्थ रहेंगे वही स्वस्थ की परिभाषा बताई गई है, और उसमें योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: कहा जाता है बुजुर्गों के लिए एक्सरसाइज मत कीजिए, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, बच्चे अभी छोटे हो, क्या योग हर उम्र, हर आयु वर्ग के लिए, बच्चे, बुजुर्ग सभी योग सही तरीके से कर सकते हैं?
0: देखिए, पहली चीज तो थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं ये क्लियर करूंगी कि योग और एक्सरसाइज ये दोनों सेम नहीं। पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि योग और एक्सरसाइज,
1: बहुत बड़ी बात आपने कही,
0: ये दोनों एक दूसरे के संपूरक नहीं है। योग का मतलब ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे मन की, जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको नियंत्रण में रखती हैं, जो हमारी मानसिक चंचलता है उसको कंट्रोल में रखती है। आज के दौर में जब हर चीज़ इतनी एडवांस हो चुकी है, तो शायद धीरे धीरे योग को जिम

0: और एक्सरसाइज एरोबिक्स, इसमें लोग इस तरफ मुड़ गए हैं। लेकिन आज भी योग जो है वो एक सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो केवल नियंत्रण के लिए सहायक होती हैं, इसको हम एक्सरसाइज से नहीं जोड़ सकते हैं। तो वेट लॉस करना, लोग पर्टिकुलरली इसी के लिए आते हैं कि हम एक्सरसाइज से वेट लॉस कर रहे हैं, नहीं, ये तो आप नियमित अपने जीवन में योग भी करेंगे। जो सूक्ष्म क्रियाएं क्या बताई गई हैं उसका कहीं भी एक्सरसाइज से हम क्या इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कंप्लीट। तो योग की श्रेणी अलग है, और जो आज के ज़माने में जिम है, एक्सरसाइज है, एरोबिक्स है, इनकी डेफिनेशन अलग है।
1: योग को पूरी दुनिया ने माना है, इसीलिए यूएन ने भी योग दिवस निर्धारित किया है। तो योग की जो पावर है बहुत अधिक है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में?
0: बिल्कुल ये सही कहा गया है कि योग की पावर अद्वितीय है, अलौकिक है। क्योंकि फिर से वही बात कहूंगी, क्योंकि एक ये ऐसी विधा है जो शरीर के साथ साथ हमारे मन पे बहुत अधिक प्रभावशाली कार्य करती है। तो इसीलिए योग को हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
1: एक और प्रश्न, क्या बिना प्रशिक्षक के योग किया जा सकता है, या उसके लिए कहीं से जानकारी उपलब्ध हो सकती है? एक आम आदमी कैसे योग
0: नहीं
1: कर सकता?
0: बिल्कुल, देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि देखिए, जीवन में कोई कार्य करना है जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, उसके लिए तो विशेषकर आपको हमेशा एक प्रशिक्षण, प्रॉपर प्रशिक्षण के ही अंतर्गत उसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है कि जिसका काम है वो उसी को सुहाता है। अगर चिकित्सक का कार्य चिकित्सा करना है तो वो कोई और इंसान नहीं कर सकता है। तो आम जनमानस को ये नहीं पता है कि कौन सी योगिक क्रियाएं किस कंडीशन में हमें लाभ देंगी और किस कंडीशन में वो हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती हैं। तो हमेशा जो एक्सपर्ट हैं, जो विद्या ग्रहण करके आए हैं, कोशिश करिए कि उन्हीं से ही आप प्रशिक्षण लीजिए।
1: क्या शासन प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसे योग टीचर निर्धारित है, या कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसा नंबर जिससे व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर सके?
0: नहीं, बिल्कुल है। देखिए, आयुष विभाग में हमारे यहाँ मथुरा जिले में 7 योग वेलनेस सेंटर भी हैं, मतलब 7 में हमारे जो चिकित्सालय है, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से संचालित किए जाते हैं। वहाँ पे योग अभ्यास, वहाँ पे हमारे योग प्रशिक्षक भी हैं, अपॉइंट किए गए हैं, जो नियमित रूप से अपना आउटरीच कैंप भी लगाते हैं और लोगों को जन जागरूक भी करते हैं योग के प्रति। तो ये हमारा नियमित कार्यक्रम चलता ही है, और समय समय पे जब भी कोई जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है या जिलाधिकारी महोदय द्वारा ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, तो भी हमारी टीम वहां जाके और अपना योग अभ्यास सत्र को करवाती है।
1: लोकेशंस कहाँ कहाँ करते हैं?
0: लोकेशंस वो हमारे एज पर इंस्ट्रक्शंस में आते हैं।
1: जी जी, कोई फोन नंबर वहाँ से कोई व्यक्ति या कोई पोर्टल ऐसा, कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ से जानकारी प्राप्त कर सके, आप श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
0: इसके लिए आपको विभागीय कार्यालय में आके ही संपर्क करना पड़ेगा। हमारे जो आयुष विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक महोदय हैं, उनसे आप अपनी जो भी सूचनाएं हैं वो आप ले सकते हैं।
1: अंत में श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे योग दिवस के उपलक्ष्य में?
0: देखिए, इतनी सारी बातें हुई हमारे बीच में, फिर से वही बात है, बस एक लाइन में ही क्या कहना चाहूंगी, प्रतिदिन योग भगाएगा रोग, करो योग।
1: अश्वता, अभी आपने सुना डॉक्टर नेहा को कि योग का किसी व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होता है और किस प्रकार वो योग को अपनाकर निरोग रह सकता है। लेकिन सबके मन में प्रश्न उठता है कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिले? घर बैठा व्यक्ति, अगर एक महिला जिसे घर के कामकाज भी करने हैं, अगर उसे अपने को स्वस्थ रखना है, तो योग की जानकारी, योग के टीचर के बारे में उसे कैसे पता चले? इसी बारे में हमें जानकारी देने हमारे साथ हैं।
2: सभी को बारे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पारू शर्मा, योग प्रशिक्षक, मास्टर ट्रेनर, आयुष विभाग मथुरा से। जैसा कि अभी हमने बोला कि योग के बारे में कैसे जानकारी मिले, हम लोगों की पार्कों में, कॉलेजों में, जगह जगह जहां भी हम लोग शिविर लगा सकते हैं लगाते हैं। जैसे कि मैं 2 महीने से जवाहरबाग में योग शिविर लगा रही थी। मैं हेल्थ वेलनेस सेंटर अड़िंग में भी हूँ, मेरी पोस्टिंग वहाँ है, तो वहाँ भी जो पेशेंट आते हैं हम लोग उनको सेवाएँ देते हैं। तो जहाँ भी जैसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो बिल्कुल किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट कर सकता है। लेकिन सभी को जैसा कि पता है कि योग के क्या फायदे होते हैं, नियमित योग अभ्यास से क्या हम उसका लाभ प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि अभी माननीय मोदी जी ने बोला कि हमको एक दिन योगा नहीं करना है। एक दिन तो 21 जून इसलिए रखा गया लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन हमको 365 दिन योगा करना है, जिससे कि हम उसका अच्छे से स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि योग सभी को करना चाहिए, लेकिन स्पेशली महिलाओं को और ज़्यादा स्पेशल योग करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। उनके हार्मोन्स जैसे डिसबैलेंस होते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। जैसे कि उनका मेनोपॉज का टाइम आता है, उसके समय उनको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती हैं। तो मेरा सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि नियमित योग अभ्यास करें और अपने आप को निरोगी

0: मथुरा में अगर कोई व्यक्ति मथुरा का ब्रजवासी है वो योग करना चाहता है तो हमारे जनपद में कहाँ कहाँ योग के सेंटर है, वो कैसे जानकारी हासिल कर सकता है, या कोई ऐसा फोन नंबर, कोई ऐसा पोर्टल वगैरह?
1: वो उसकी जानकारी हमारे DPM सर जो है जिला कार्य प्रबंधक का वो है, तो वो आपको सूचित करें।
0: हमारे साथ हैं सर।
2: मेरा नाम अखिलेश कुमार विश्वकर्मा है, मैं जिला कार्यक्रम प्रबंधक आयुष विभाग से हूँ, और वो जनपद मथुरा में 7 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहाँ पे हमारे योग प्रशिक्षक महिला और पुरुष नियुक्त है।
0: कहाँ कहाँ पर है सर?
2: मैं बता रहा हूँ, उसके ये पहला है अडीग में, फिर आपका मंगोरा, मुस्तफाबाद, बाजना, पचहरा, माठ और कुमा, ये 7 सेंटर हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के हैं, जहाँ पे हर सेंटर पे एक महिला और एक पुरुष योग प्रशिक्षक है। इसके अलावा हमारे 3 योग वेलनेस सेंटर हैं, जो कि जिनमें 2 वृंदावन में है, एक डॉक्टर हेडगेवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे एक योग प्रशिक्षक और एक योग सहायक है। उसके अलावा 100 सैया वृंदावन में हमारे एक योग प्रशिक्षक और एक योग सहायक है। उसके अलावा हमारा एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है कोसी कला में, वहाँ पे भी हमारा योग वेलनेस सेंटर है, वहाँ पे सिर्फ एक योग प्रशिक्षक है। और इनके अलावा हमारे कुछ सहयोगी संस्थान भी हैं, जैसे कि आपके RSS, पतंजलि, ब्रह्म कुमारीज, आर्ट ऑफ लिविंग, सूर्या फाउंडेशन, खुशी फाउंडेशन, ये सब समय समय पे हमें जब भी योग प्रशिक्षकों की ज़रूरत होती है तो ये अपने योग वॉलंटियर हमें देते हैं, हम उन्हें योग प्रशिक्षक बना के अलग अलग जगहों पे नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, आपके सारे विद्यालयों में, स्कूल में, और जितने भी जिला प्रशासन के बड़े बड़े कार्यालय हैं, जैसे नगर निगम, आपका नगर पंचायत, नगर पालिका, इन सब जगहों पर हम लोग उन्हें ड्यूटी लगा के योगाभ्यास कराते हैं। अगर किसी को योगा सीखना है तो आप ये जितने भी सेंटर मैंने बताए हैं उसके आसपास जाके वहाँ पे हमारे योग प्रशिक्षक से कंसल्ट करके आप वहाँ पे भी योगाभ्यास कर सकते हैं। उसके अलावा उनके संस्था है या हॉस्पिटल है हमारी, वहाँ पे जाके उनका नंबर लेके उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं।
0: क्या ऐसा फोन नंबर आप श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि किसी को जानकारी हासिल करनी हो, दूर दराज के श्रोता हो, ताकि वो पहले जानकारी हासिल करें तभी वहाँ पर आए?
2: अभी जो हमारे आयुष विभाग की तरफ से हमने मास्टर ट्रेनर बनाया है पारू शर्मा को, और पारू शर्मा आप एक बार अपना नंबर बोल दो।
1: मैं पारू शर्मा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9548652544। कभी भी किसी तरह कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: क्या गर्भवती महिलाएं भी योग कर सकती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, गर्भवती महिलाएं योग कर सकती हैं, लेकिन उनको आसन, कुछ आसन है जो नहीं कर सकती, उनको देख करके उनको कुछ आसन करने होते हैं, जैसे वो वज्रासन कर सकती हैं, बटरफ्लाई कर सकती हैं, धीरे धीरे चक्की नहीं चला सकती, लेकिन जैसे ट्विस्टिंग वाले आसन होते हैं वो नहीं कर सकती हैं, धीरे धीरे मूवमेंट वाले आसन वो कर सकती हैं।
0: कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं घर से नहीं निकल पाती हैं, आप इस बात से वाकिफ हैं, क्या कुछ विभाग द्वारा ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था है ताकि घर बैठे वो योग सीख सके?
1: नहीं, अभी ऑनलाइन क्लास की तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन जिस तरह से जिसको ज़रूरतें होती हैं तो उनकी सेवाएं हम दे सकते हैं, जैसे कि मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी क्लासेस देती हूँ।
0: जी देखिए, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सभी के लिए योग संभव है?
1: बिल्कुल संभव है, बच्चे से ही, अगर हम बच्चों को ही योग कराएंगे तो बच्चे बचपन से ही मोटिवेट होता है, योग के प्रति सजग होता है। जैसे कि इस बार थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, उसका मतलब ही यही है कि हम जब शुरू से योग करेंगे तो हम आगे जाके बढ़ती हुई उम्र में हम स्वस्थ और मस्त रह सकेंगे।
0: कहा जाता है बुजुर्गों से कहाँ आप ये योग एक्सरसाइज के चक्कर में पड़ रहे हो, मत कीजिए, घर बैठिए, जरा सी परेशानी हो जाए तो वो घर बैठ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से?
1: नहीं, ऐसा नहीं है, अब ऐसे यहाँ वृद्धाश्रम वगैरह हम लोग, यहाँ से योग सप्ताह चल रहा है, हम लोग वृद्धाश्रम वगैरह में अभी मथुरा में भी एक महाविद्यालय में वृद्धाश्रम में वहाँ पर जाकर योग करा के आई हूँ। हमको लगता है कि उनकी एक एज हो जाती है, वो नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनको सूक्ष्म क्रियाएं तो करा सकते हैं, जैसे कि उनके हाथ पैरों का मूवमेंट होता रहे तो वही उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है।
0: कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रेनर्स होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, वो एक डाइट प्लान, डाइट चार्ट भी देते हैं, क्या योग के साथ भी डाइट चार्ट को फॉलो करना जरूरी होता है?
1: मैं यही बोलूंगी, सात्विक खाना खाएं, वही हमारा सबसे बड़ा डाइट प्लान है, अपना रात को लेट खाना ना खाएं, अपने दिनचर्या के हिसाब से खाना खाएं और अपना बाहर का फास्ट फूड को अवॉइड करें।
0: आज की भागम भाग जिंदगी में लोगों के पास योग के लिए टाइम नहीं है, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, क्या कम समय में कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जिससे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है थोड़े समय के लिए?
1: मैं बोलती हूँ सुबह कुछ नहीं तो कम से कम अपने लिए 15 मिनट तो निकाल सकता है, तो सूर्य नमस्कार डेली अभ्यास करेगा तो फुल, वो हमारी फुल बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। सूर्य नमस्कार अपना नियमित करें और 5 मिनट का प्राणायाम करें, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा रहता है।
0: ऐसा कहा जाता है कि योग के द्वारा तन के साथ मन भी स्वस्थ होता है, लोग एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी टेंशन है, डिप्रेशन है, वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन टेंशन डिप्रेशन से छुटकारा नहीं है, क्या ये सही है?
1: बिल्कुल सही है, लेकिन वो जितना अपना ब्रीथिंग पे फोकस करेगा, जितना वो प्राणायाम का अभ्यास करेगा, उसका मन शांत रहेगा, वो जितना स्ट्रेस लेवल है उसका स्ट्रेस कम होगा, जिसको तनाव की वजह से नींद नहीं आती है, तो हमारे ऐसे भ्रामरी

0: प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उससे हमको अनिद्रा की समस्याएं दूर होती है और हमको लाभ प्रदान होता है।
1: क्या शासन प्रशासन के द्वारा समय समय पर जानकारी दी जाती है लोगों को कि यहाँ योग शिविर लगेगा, वहाँ लोग शिविर लगेगा, या हाँ। कुछ ऐसे विज्ञापन निकाले जाते हैं, किस प्रकार ये जानकारी दी जाती है?
0: विज्ञापन भी निकाले जाते हैं, शिविर लगने के बाद भी हर जिले में हर महीने यहाँ पर योग का शिविर लगता है और आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो है उन डॉक्टर लोग भी हमारा योग का वो लगाते हैं, कैंप लगाते हैं।
1: जी, क्या कहना चाहेंगी सभी श्रोताओं से?
0: सभी श्रोताओं से यही बोलूंगी कि अब नियमित योग अभ्यास करें, जिससे आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी काया पा सकते हैं। सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है।

नजर आज के समाचारों पर। साइबर ठगी पर प्रहार, सिम नहीं मोबाइल हो रहे लॉक। साइबर ठगों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने नया तरीका इजाद किया है। पुलिस ने मोबाइल सिम के स्थान पर मोबाइलों को ही लॉक कराने लगी है। इसे साइबर ठगी करने वाला पुनः उस मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। शिकायत के आधार पर पुलिस पिछले 1.5 साल में 12,000 से अधिक फोनों को लॉक करा चुकी है। साइबर ठगी से बचाव के लिए पुलिस अपने स्तर पर कार्य कर रही है। ठगी से बचने के लिए लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी। साइबर ठग लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं। लोग इससे सावधान रहें तो ठगी की वारदातों में कमी आएगी। हालांकि पुलिस ने अब 12,000 से अधिक ठगों के मोबाइल फोन लॉक कराए। ये ठग अलग अलग राज्यों में बैठकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ऐसा कहना है श्लोक कुमार, SSP मथुरा। अब डालते नजर आज के इतिहास पर, क्या कहता है आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से। आज के दिन 1555 में मुगल सम्राट हुमायूं ने सिंधु नदी पार कर सिकंदर सूरी को हराया, लाहौर पर कब्जा किया। वहीं 1949 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से मतभेदों के बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। 1954 में ब्रिटिश सेना की 14वीं बटालियन ने मणिपुर के इम्फाल को आजाद कराया। 2016 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक साथ 20 उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। 1986 में अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो माडोना ने इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप मैच में अपना प्रसिद्ध हेड ऑफ गॉड यानी हैंड ऑफ गॉड गोल किया था। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में आकाशवाणी ने नित्य नए आयाम स्थापित करते हैं। आइए देखते हैं आपको एक नई जानकारी। साल 2025 में आकाशवाणी ने दी आकाशवाणी पॉडकास्ट और आकाशवाणी ओरिजिनल से जैसी नई ऑडियो विजुअल सीरीज की शुरुआत करी। दी आकाशवाणी पॉडकास्ट के अंतर्गत इतिहास से लेकर समकालीन मुद्दों तक प्रभावशाली बातचीत, साक्षात्कार और प्रेरणादायक कहानियां प्रस्तुत की गई। आकाशवाणी ओरिजिनल्स के माध्यम से गहराई से शोध किए गए विषयों को एक्सप्लेनर के रूप में पेश किया जा रहा है। अपनी समृद्ध परंपरा को नई तकनीक के साथ जोड़कर आकाशवाणी का डिजिटल अवतार आज के समय में सूचना प्रेरणा के एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। क्या करें क्या ना करें के अंतर्गत बातचीत करते हैं विषयों के बारे में जो होते हैं आम बन जाते हैं खास, क्योंकि हम उन पर ध्यान नहीं देते। हम सब जानते हैं कि हमारी ब्रजनगरी श्रद्धालुओं का निरंतर आना जारी है और अभी अधिक मास हो के चुका है, तो आप अपने आसपास साफ सफाई का माहौल बनाने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिए, अपने घर के साथ साथ बाहर भी साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि

जब हम खुद प्रयास करेंगे तभी हम किसी दूसरे को सीख दे सकते हैं। अक्सर आपने देखा अगर लोग गाड़ियों में जाते हैं तो अपने खाली रैपर्स, खाली बॉटल्स पानी की अपनी गाड़ी से बाहर सड़क पर फेंक देते हैं, और उसके लिए हमारा दायित्व यही है कि अगर हम खुद अपनी सड़कों को साफ रखेंगे, अपने आसपास के माहौल को साफ रखेंगे, तो हम दूसरे व्यक्ति को कह सकते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जहाँ गंदगी होती है वहीं बीमारियाँ होती हैं, वहीं हमारे मन में नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक विचार आ जाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई का माहौल रखिए, सदा प्रसन्न रहें और खुश रहें। इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी आज 22 जून को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पूनम अग्रवाल, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान। श्रोताओं, यदि आप मोतियाबिंद ग्लूकोमा, अपवर्तक दोष, ड्राई आई सिंड्रोम, आंख का सफेद हिस्सा लाल हो जाना आदि समस्याओं से ग्रसित हैं, तो समाधान के लिए पूछिए प्रश्न डॉक्टर पूनम अग्रवाल, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा आज सोमवार 22 जून, समय होगा अपराह्न 1:15 पर। सूचना समाप्त हुई। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

साथी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सदमा फिल्म से, गाया है सुरेश वाडेकर ने।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अगला गीत हमने लिया है सड़क फिल्म से, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

रोटी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं भूतनाथ फिल्म से, गाया है अमिताभ बच्चन ने।

0: बॉम्बे फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे ए हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। अगला गीत घरौंदा फिल्म से, आवाज़ें हैं रूना लैला और भूपेंद्र सिंह की।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।

फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अगला गीत सुनिए मैंने प्यार किया फिल्म से। आवाजें हैं SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की।

मिली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मेरे महबूब।

मौसम फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाजों में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। 11 बज चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है रश्मि शर्मा की।

नमस्कार मित्रों, कुछ लोग चाय के बिना नहीं जागते, कुछ लोग मोबाइल के बिना नहीं रहते और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका दिन शुरू ही नहीं होता जब तक उनका पसंदीदा गीत कानों में न घुल जाए। तो लीजिए आपकी यादों की पोटली, आपकी फरमाइश गीतों की ऐसी लिस्ट जो आपके दिल के सबसे करीब है, ऐसे ही प्यारे से गीतों को लेकर मैं आ गई हूँ, आपकी अपनी आरजे रश्मि।

यहाँ फोन आपका, फरमाइश आपकी और गीत भी आपकी पसंद का, तो मुस्कुराइए क्योंकि अब बजने वाला है वो गीत जिसे सुनकर शायद आप भी गुनगुना उठें।

0: और हाँ, अगर आपके दिल में भी कोई गीत दस्तक दे रहा है तो हमें फोन कीजिए, क्योंकि यहाँ फरमाइशें सिर्फ सुनी नहीं जाती, पूरी भी की जाती हैं। तो चलिए संगीत के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं आपकी पहली फरमाइश के साथ।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार।
0: नमस्कार, परिचय दे दीजिए अपना।
1: जय बजरंग रेडियो सोता संग बस स्टैंड बंडा बिलई से लक्ष्मण को चाय वाले बोल रहा। दीदी कैसी हो आप, चाय पी लो।
0: बिल्कुल चाय पियेंगे, इलायची वाली। बढ़िया।
1: हाँ, इलायची वाली
0: और पत्ती कड़क रखना।
1: कड़क, बिल्कुल कड़क रहेगी पत्ती। हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। इतनी बढ़िया आपने चाय पिलाई है, उसका आनंद हम ले रहे हैं और आपको आनंद दिलवाएंगे आपकी पसंद के गीत का। बताइए क्या फरमाइश है।
1: आज रहेगा नदिया के पार, कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया।
0: जी जी, आपने फोन किया इसके लिए धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: ठीक है दीदी, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: आकाशवाणी।
1: हेलो दीदी को नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: मैं दीदी आपका ब्रज

0: रेडियो श्रोता मित्र याद राम बोल रहा हूँ, गांव उस पार मथुरा उत्तर प्रदेश से।
1: स्वागत है कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
0: दीदी हाँ हम तो ठीक है, आपकी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दीदी हमारी ऐसी बनी रहे
1: जी।
0: दीदी आप जो आ जाती हैं स्टूडियो में तो ये समझ लो कि आप आए बाहर आए।
1: अच्छा चलिए ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी मेरे आने से खुश हो जाते हैं, और इस खुशी के नाम एक प्यारा सा गीत बता दीजिए।
0: दीदी देखिए आप देखो बरसात का टाइम आ रहा है, अब जो पर्यावरण को मतलब सफल बनाना है हर व्यक्ति को पेड़ लगाने अपनी जगह पे खेत में खलिहान में और खाली जगह जो पड़ी हो उसमें पेड़ लगाएं जो आगे के लिए छायादार वृक्ष बने और हम कभी भी जाएं तो गर्मी में बैठ सकते हैं
1: बिल्कुल।
0: और हमारी अगली पीढ़ी भी जो है बैठ सकती है, कभी रास्ते में जाए तो पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी सांस ले ले चैन की।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। और अब बता दीजिए गीत भी।
0: घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के।
1: हाँ जी
0: दिल
1: बिल्कुल
0: धड़के, क्यों धड़के।
1: जी जी जी चलिए सुनिए पसंद का ये गीत।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: राधे मैम।
0: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं? परिचय दे दीजिए।
1: मैम, मैं नगला चंद्रवान दीनदयाल धाम से लव कुमार बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है लव कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: मैम मैं अच्छा हूँ, तुम
0: और
1: कैसी हो?
0: बिल्कुल बढ़िया। क्या करते हैं आप लव कुमार जी?
1: मैम मैं स्टडी करता हूँ, अभी पेपर देकर आया हूँ पुलिस का। कुछ
0: अच्छा, पुलिस सेवा में
1: दिन,
0: आप जाना चाहते हैं?
1: हाँ मैम, कुछ दिन पहले पेपर देकर आया हूँ, अभी कुछ दिन के लिए रेस्ट पे, फिर पढ़ाई में लग जाएंगे अपनी।
0: जी, कैसा हुआ आपका पेपर?
1: मैम पेपर तो अच्छा हुआ है।
0: चलिए, उम्मीद की किरण नजर आ रही है और आपको शुभकामनाएं हमारी पहले से ही कि आप सफल हों और आपकी इच्छाएं पूर्ण हों। पसंद क्या रहेगी आज आपकी, बता दीजिए।

0: मैम हमारी पसंद रहेगी, फूल तुम्हें भेजा है खत में,
1: फूल नहीं मेरा दिल है।
0: हाँ हाँ
1: चलिए सुनिए पसंद का ये गीत।
0: और मैम मैं अपने मित्रों के वो सुनाना चाहता हूँ नाम।
1: बिल्कुल बता दीजिए
0: मैम। एक तो हमारे श्याम सुंदर लवानिया, अनूप पाठक जी, सत्येंद्र पाठक जी, और अपने नाना जी भी सुनते हैं
1: जी,
0: श्री यादराम जी उस पर वाले।
1: ठीक है
0: मैम, राधे राधे
1: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, परिचय दें।
1: हम विपिन कुमार बोल रहे, गांव छोड़ी से। और कैसी हैं मैडम जी?
0: बिल्कुल बढ़िया। छोले वोले खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो?
1: छोले तो चलते ही रहते हैं।
0: कभी चावल के साथ, कभी पूड़ी के साथ, कभी पराठे के साथ, कभी रोटी के साथ,
1: और क्या।
0: चलिए, छोले भी खाते रहिए, पसंद के गीत भी सुनते रहिए। बताइए क्या सुनेंगे आज?
1: आज निगाह फिल्म से सुना दीजिए, दिल के अरमा आंसू में बह गए।
0: ओ हो, छोले में मिर्ची ज्यादा हो गई क्या?

0: हाँ नमक हो गया था ज्यादा।
1: नमक से आंसू नहीं आते, मिर्ची ज्यादा होती है तभी आंसू आते हैं।
0: और क्या।
1: और क्या, तो चलो सुन लो अपनी पसंद का गीत। नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार मैडम, किरगिरी कुराता कालरी जिला कोरिया चतुर्वंशी इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में।
1: और आपका कार्यक्रम में फोन किया मैडम, और अपने पसंद के भी गीत बताऊंगा, मौसम के भी बारे में बताऊंगा। यहाँ मौसम 2 दिन से धूप किया है, बादल करता है और उमस गर्मी बढ़ता है मैडम, और यही आठ निचोली वाला खेल चल रहा है। पानी कब गिरेगा, मानसून बनेगा बढ़िया से तो पानी एकदम झमाझम तेजी से गिरेगा।
0: जी चलिए, झमाझम बारिश हो और आप आनंदित हो ऐसी हम कामना करते हैं। और बता दीजिए पसंद आपकी क्या रहेगी आज?
1: आज रहेगी मैडम फिल्म का नाम है मेरा साया, गीत के बोले नैनों में बदरा छाए, गायिका लता मंगेशकर। और सबसे पहले गीत आपको, पूरे भारत श्रोता को, रेडियो में जुड़े सभी लोगों को, हेलो रेडियो गीत में जुड़े श्रोताओं को।
0: चलिए सुनिए पसंद का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति थी रश्मि शर्मा की। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 22 जून यानी कि आज अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पूनम अग्रवाल, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा हमारे मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है आंख

आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान। श्रोताओं, यदि आप मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, अपवर्तक दोष, ड्राई आई सिंड्रोम, आंख का सफ़ेद हिस्सा लाल हो जाना आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर पूनम अग्रवाल से, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार यानी कि आज 22 जून 2026 समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

हिमशिखरों की चुप्पी में भी प्रकृति का संदेश छिपा है। समुद्र केवल जल का विस्तार नहीं, यह जीवन, संतुलन और अनंत संभावनाओं का संसार है। लहरें हर पल यही संदेश सुनाती हैं, प्रकृति का सम्मान करो तभी धरती मुस्कुराती है। सागर की गहराइयों में जीवन के असंख्य रंग बसते हैं, इन्हें बचाना ही मानवता का सच्चा दायित्व है। साथियों, धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब उसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। पेड़, पर्वत, नदियां और सागर यही प्रकृति के अमूल्य उपहार हैं, इन्हें संभाल कर रखना होगा।

यदि प्रकृति रहेगी सुरक्षित तभी भविष्य होगा समृद्ध। हर छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण की बड़ी नींव बनता है। साथियों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम फिल्म संगीत के सफर में, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। साथियों, हिमालय की चोटी से लेकर ध्रुवों की बर्फ तक प्रकृति का संतुलन छिपा है हर एक बर्फीली परत तक। आज हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं है बल्कि हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह विषय है क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्य दशक यानी 2025 से 2034 तक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दशक पृथ्वी के जमे हुए क्षेत्रों जैसे ग्लेशियरों, हिमचादरों, समुद्री बर्फ और परमाफ्रास्ट के संरक्षण तथा उनके वैज्ञानिक अध्ययन को समर्पित है। साथियों, अब आप जानना चाहेंगे कि क्रायोस्फीयरिक क्या है। क्रायोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग है जहां पानी बर्फ या हिम के रूप में मौजूद रहता है। हिमालय के विशाल ग्लेशियर, आर्कटिक और अंटार्कटिका की बर्फ, समुद्री बर्फ और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की हिमराशियां सभी क्रायोस्फीयर का हिस्सा है। बर्फ की चादर केवल ठंडक का एहसास नहीं, यह जीवन, जल और पर्यावरण की आस भी है। इन जमे हुए क्षेत्रों में पृथ्वी के मीठे पानी का एक बड़ा भाग सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि इनका संरक्षण मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथियों, प्रकृति और जीवन के सुंदर संबंध को महसूस तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये एक प्यारा सा गीत।

साथियों, अब हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन और क्रायोस्फीयर के बारे में। आज वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका सबसे अधिक प्रभाव ग्लेशियरों और बर्फीले क्षेत्रों पर पड़ रहा है। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे भविष्य में जल संकट की आशंका बढ़ रही है। जब पर्वतों की बर्फ पिघलती है तो केवल नदियां नहीं, भविष्य भी बहने लगता है। ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के जल स्तर को बढ़ाता है। इससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के सामने विस्थापन का खतरा उत्पन्न हो सकता है। और कार्य दशक की आवश्यकता क्यों हुई? संयुक्त राष्ट्र ने 2025 से 2034 तक की अवधि को क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्य दशक घोषित किया। इसका उद्देश्य है ग्लेशियरों और बर्फीले क्षेत्रों पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझना, लोगों में जागरूकता फैलाना, भविष्य की चुनौतियों के लिए समाधान तैयार करना। ज्ञान वह दीपक है साथियों, जो संकट के अंधकार में राह दिखाता है। ज्ञान और जागरूकता के संदेश के साथ आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनभावन गीत।

0: कभी तो हंसाए।
1: साथियों, हम बात कर रहे थे क्रायोस्फीयर के बारे में। इसमें भारत और हिमालय की भूमिका के बारे में हम बात करेंगे। भारत के लिए यह विषय विशेष महत्व रखता है क्योंकि हिमालय को जल का टावर कहा जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी अनेक नदियां हिमालयी ग्लेशियरों से ही पोषित होती हैं। यदि ग्लेशियरों का क्षरण जारी रहा तो कृषि, पेयजल और ऊर्जा उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। हिमालय केवल पर्वत नहीं, करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। इसलिए हिमालयी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक शोध और जन भागीदारी दोनों आवश्यक हैं। युवाओं और समाज की भूमिका इसमें सक्रिय होनी चाहिए। क्रायोस्फीयरिक की रक्षा केवल सरकारों या वैज्ञानिकों का कार्य नहीं है। साथियों, प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। वृक्षारोपण हम करें, प्रदूषण हम कम करें, जल रक्षण को अपनाएं, जल संरक्षण को अपनाएं। धरती हमें विरासत में नहीं मिली है, इसे हमें आने वाली पीढ़ियों को भी सौंपना है। इसी के साथ पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत। चर्चा आपसे यूं ही जारी रहेगी साथियों।

साथियों, अब हम बात करेंगे भविष्य की चुनौतियां और उसके समाधान के बारे में। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दशकों में ग्लेशियरों का बड़ा हिस्सा समाप्त हो सकता है। इसीलिए अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। प्रकृति चेतावनी देती है, दंड नहीं। समझना, समझाना हमारा कर्तव्य है। यह दशक हमें अवसर देता है कि हम विज्ञान की सहायता से पृथ्वी के भविष्य को सुरक्षित बना सकें। प्रिय श्रोताओं, क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्य दशक केवल एक वैज्ञानिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प है। ग्लेशियरों और बर्फीले क्षेत्रों का संरक्षण जल, पर्यावरण और जीवन की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। बर्फ की हर बूंद में जीवन का संदेश है। प्रकृति का सम्मान ही मानवता का विशेष है। आइए हम सभी मिलकर पृथ्वी के इस अमूल्य खजाने की रक्षा का संकल्प लें और इसी सकारात्मक संदेश के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

साथियों, अंत में बस यही कहना चाहेंगे हम आपसे कि हिमालय की बर्फ हो या सागर की लहरें, प्रकृति की हर धड़कन में जीवन के सुनहरे पहर हैं। प्रकृति की रक्षा केवल एक विकल्प नहीं, आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार फिल्म संगीत के सफर में।

इसी के साथ फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत बात और SMS।

साथियों, जीवन की किसी भी समस्या का समाधान भागने से नहीं, अपितु संकल्प पूर्वक उसका सामना करने से ही निकलने वाला है। दुनिया का कोई भी लक्ष्य व्यक्ति के संकल्प से बड़ा नहीं होता। जीवन में सदैव अनुकूलता बनी रहना संभव ही नहीं, इसीलिए प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदलने वाले जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाते हैं। प्रतिकूलताएं हमारे मार्ग में उतनी ही बाधक नहीं बनती जितना हम स्वयं के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में गीत बात और एसएमएस में। श्रोता साथियों, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं उषा पांडे आज इस कार्यक्रम में हूँ आपके साथ। अब वक्त हो चला है आपके संदेशों को पढ़ने का, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं आपकी पसंद का कार्यक्रम का ये पहला गीत।

साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में। 11:45 पर हमसे सबसे पहले जुड़े हमारे श्रोता साथी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखिलाल मरवा। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान का। हमसे जुड़ चुके हैं संदेश भेजकर भिलाई छत्तीसगढ़ के मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े। अगला संदेश भेजा है हमें ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा ने। ये हमसे जुड़े हैं पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का संदेश भी हमें मिल चुका है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली के रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर छावड़ा, स्वीटी का संदेश भी हमें मिल चुका है। अगला संदेश भेजा है हमारे पास मोताला महाराष्ट्र के विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार कुमकुम ने। विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश।

योगेश कड़वासरा और युद्धव कड़वासरा का संदेश हमें प्राप्त हुआ। ये गांव कलाना, तहसील भादरा, ज़िला हनुमानगढ़, राजस्थान से हमसे जुड़े। राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, ग्राम ममना, ज़िला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से हमसे जुड़े। सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमानाज, असद अरहाम और समस्त परिवारी जन नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हमसे जुड़े। अनिल मोहन, ऊषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का संदेश पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से हमें प्राप्त हुआ। नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या जय हागे, वरवट बकाल बुलढाणा से हमसे जुड़े। अगला संदेश हमारे पास आया है गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण, सोनी, पूजा, पायल, जूली और जगदीश जौहरी का। हमसे जुड़ चुके हैं भटिंडा रोड मंडी डववाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लकी, तानिया नारंग। संदेश प्राप्त हुआ है अगला हमें जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस का। हमारे अगले श्रोता साथी हैं शिवाजी नगर बडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर, इंदिरा ताई, छकुली ताई, खांडवी बुलढाणा से दीपावली राम ढाड़े, स्वराज राम ढाड़े। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का संदेश हमें मिल चुका है। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष का संदेश हमें प्राप्त हुआ। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश, सन्नी भावसार, जैमिन भावसार का संदेश भी हमें मिला। अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमन डावर, राजेंद्र कटारे हमसे जुड़े हैं नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से। अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश दले, जीविका, सानिका दले, कुम्हार गली श्रीरामपुर से, पुनावले पुणे से, अजय सोनवने, करिश्मा, अविका और विशाखा सोनवने का संदेश हमें मिल चुका है। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबिता मिगलानी हमसे जुड़ चुके हैं। हमारे अगले फरमाइश करता हैं, ये संदेश हमें मिला है सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, बसंतराव भोजने, पीएन नहावकर और तुषार करांगले का संदेश भी मिल चुका है। बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य, मेघा मस्कीन, तुलसी मस्कीन, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमसे जुड़ चुके हैं। मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सोरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के संतोष, नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और नामदेव समस्त परिवार हमसे जुड़ चुका है। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर का संदेश भी हमें मिल चुका है। साथियों आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

साथियों, अभी आपने ये जो प्यारा सा गीत सुना, इस गीत को हमने फिल्म परिचय से लिया। गीत को आवाज़ दी किशोर कुमार ने, लिखा गुलजार ने और संगीत आरडी वर्मन का। अब बढ़ते हैं आपके संदेश की ओर। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन, बेबी प्रियांशी, रोशनी मनवर का, शाहू नगर यवतमाल से। हमारे अगले फरमाइश करता हैं जमानिया ज़िला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल भी हमसे जुड़ चुके हैं। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक भी हमसे जुड़ चुके हैं। झज्जर हरियाणा के बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया का संदेश प्राप्त हो चुका है। कबीर रेसियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, मास्टर अलकबीर का संदेश भी हमें मिला। हमसे जुड़ चुके हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। अगली फरमाइश करता है दरियापुर भावली के, महाराष्ट्र से जुड़े हैं आप हमसे गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, अशोक शेडी बडनेर, अकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर का संदेश भी मिला। अकोला से के शरद पाचपुर, श्रीमती शोभा, बेबी वैदेही, विहान बाबू, रश्मि, अक्षय और अभिनव पाचपुर का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता हैं रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश साहू। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुष खत्री, शफी, इद्रीश खत्री, नुरू मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना का संदेश भी प्राप्त हुआ। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, निवृत्ति क्षीर सागर, संजय चौहान भी हमसे जुड़े। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल का

संदेश भी हमें मिला। हमारे अगले फरमाइश करता है दादरी गेट भिमानी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुणाल मेहरा हमसे जुड़ चुके हैं। खेल बाजार पानीपत के नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य लाडो कोयल मल्होत्रा पापा जी नानक चंद मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल डुग्गू भाविक सिक्का अगले फरमाइश करता हैं चंडीगढ़ के सतीश अनेजा और विमला अनेजा हमसे जुड़ चुके हैं। डेर पाटन गुजरात से धीरज वीरवारी जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन नौरीन आसना मोहम्मद कैफ अंसारी का भी संदेश हमें मिल चुका है। अनवर साबरी सन्नो मुदस्सिर मुजक्किर और जफीर अंसारी का संदेश हमें दाऊद सराय सहारनपुर से प्राप्त हुआ। मजनू का टीला से कमल बालूजा मधु सागर सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक भी हमसे जुड़ चुके हैं। प्रकाश रंभाड़े भारती जानवी वैष्णवी हर्षल रंभाड़े का संदेश हमें काशी निवास नागपुर से मिला। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा के राजेश सेन सुरेखा शुभम अक्षय का संदेश हमें मिल चुका है। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का संदेश मिला। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समीरा आजमी उर्फ गुड़िया का संदेश मिला। सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह हमसे जुड़े हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर से हमसे जुड़े गोविंदपुरा अहमदनगर के जुनैद मुजाबर सबीहा मिखाइल मुजाबर जैनब मुजाबर का संदेश भी हमें मिल चुका है। हमारे अगले फरमाइश करता है राजकोट से जैमिन कुमार जैन हेतल कृष्णा जैन और राकेश जैन बीट शहर महाराष्ट्र के नंदकिशोर घटे संगीता घटे साक्षी जयश्री अंजलि करवा बाबा साहेब करवा रामनिवास अग्रवाल धनंजय टबूल पीवी कुलथे हमसे जुड़ चुके हैं। साथियों आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का आपका अगला ये फरमाइशी गीत।

जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमसे जुड़े, ग्राम जखड़गांव अहमदनगर से मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल, अमीना पटेल का संदेश भी हमें मिल चुका है। नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार, साई गायकवाड़, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हमसे जुड़े। हमारे अगले फरमाइश करता है नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार नायक, राजबहादुर साह, शंभु साह, मेनका गांधी और गोदावरी देवी, ये हमसे जुड़े हैं राजदरबार राजनगर बिहार से। मैसेज मिल चुका है हमें डाबकी रोड अकोला से, सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव और आरव अर्पिता का, हमसे जुड़ चुके हैं अपना संदेश भेजकर। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा हसन, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से आप हमसे जुड़े। अगला संदेश हमारे पास आया है सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से, पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा का संदेश मिला। पप्पू राजा खुश दिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू, पप्पू हसमुख लाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी, पूरा खुश दिल परिवार हमसे जुड़ चुका है। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से आप हमसे जुड़े। संदेश प्राप्त हुआ गमरिया जमशेदपुर के रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल का, बबरी बाजार चंदौली के विजय सरोज, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू, देवंती चकिया बाजार चंदौली से सुमन और सुंदर हमसे जुड़ चुके हैं। श्रोता साथियों, इसी के साथ फरमाइशी संदेशों का ये कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस अब यहीं समाप्त होता है। चलते चलते बस यही कहूंगी कि सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखें, सब दुख दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अनुमति दीजिए, स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार हैं रिया देवी, संगत कलाकार हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं रामेश्वर दयाल शर्मा, ढोलक पर संगत प्रोफेसर मिश्रा, सारंगी संगत मनमोहन कौशिक और परकशन संगत गुलाम जाफर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी, दूसरा कोई मैच है क्या?
4: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
3: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
4: पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
5: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या?
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
5: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप सुन रहे हैं रिया देवी को।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप आनंद ले रहे हैं कलाकार रिया देवी के द्वारा गाए हुए कुछ ब्रजलोक गीतों का। संगत कलाकार हैं हारमोनियम पर रामेश्वर दयाल शर्मा, ढोलक पर संगत दे रहे हैं प्रोफेसर मिश्रा, सारंगी संगत मनमोहन कौशिक की और परकशन संगत गुलाम जाफर की।

0: कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज की कलाकार थीं रिया देवी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में

0: चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तेसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आप जानेंगे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

अब से कुछ ही देर में यानी कि अपराह्न 1:10 पर समवेत स्वरों में होगा देशगान। अपराह्न 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक के अंतर्गत हेलो सहेली फोन इन कार्यक्रम। आज का विषय होगा आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान। जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर पूनम अग्रवाल, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी आशु रावत। अपराह्न 2:30 पर NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 पर युवा साथियों के नियमित कार्यक्रम युववाणी के साथ, जिसमें आज की बात के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा गतिशीलता और शारीरिक संतुलन के लिए योग। साथ ही आप सुनेंगे स्वरचित कहानी भाग्य बड़ा ईश्वर। कहानीकार होंगी ऋचा अरोड़ा।

संध्या 6:15 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें होगी चर्चा, विषय होगा पशुपालन से खेत की समृद्धि और खेत बचाओ अभियान में युवाओं की भूमिका। साथ ही आप सुनेंगे भेंट वार्ता, गर्मियों में पशुओं के लिए संतुलित पोषण। वार्ताकार विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि से बातचीत करेंगे सत्यव्रत सिंह। संध्या 6:45 पर भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकेंगे। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रज वार्ता के अंतर्गत मथुरा को पुरातात्विक स्वरूप की जानकारी देंगे वार्ताकार चंद्रशेखर शर्मा। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी संध्या 7:31 पर श्रोता साथी सुन सकेंगे। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे रात्रि 8:00। चित्रपट संगीत सुहाने तराने रात्रि 9:15 पर पेश किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे नाटक एक था राजकुमार, लेखक डॉक्टर ब्रज बल्लभ मिश्रा, प्रस्तुति सतीश माथुर की। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन राग जय जयवंती में आप सुन सकेंगे।

0: अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समवेत स्वरों में देशगान।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है समवेत स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लो।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में हेलो सहेली फोन इन कार्यक्रम के अंतर्गत आप जानकारी प्राप्त करेंगे आंखों की सामान्य बीमारियां एवं

0: इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, ज़िंदगी महक उठेगी बस खुश रहा करो। नमस्कार साथियों, आज मैं हूँ आपके साथ आशु रावत और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बिन बोले जो सब कुछ कह जाती हैं वो आँखें ही तो होती हैं, व्यक्ति के हाव भाव सब आँखों से ही पता चलते हैं। वैसे तो साथियों शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन आंखें हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही मायने रखती हैं। इनका खास ख्याल रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और अगर आज के समय की बात करें तो आज के समय में दूषित वातावरण में हमारी आंखें तो प्रभावित हो ही रही हैं, उस पर भी जो स्क्रीन टाइम होता है बच्चों का या बड़ों का, वो इसकी रही कसर पूरी कर देता है। तो इस तरह के माहौल में किस तरह हम अपनी आँखों का ख्याल रख सकते हैं, उन्हें सही सलामत रख सकते हैं, ये जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी परेशानी कोई भी हो, अगर सही समय पर उसका इलाज हो जाए तो बीमारी से बहुत हद तक बचा जा सकता है। और आँखों की भी साथियों बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता, और बाद में जब समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है तब जाके हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। और ये सब हमारी आँखों की रोशनी को इतना प्रभावित करता है कि बाद में फिर हमारे हाथ में कुछ ऐसा रहता नहीं। तो इन सब परेशानियों का निदान लेकर आज हम आपके लिए अपने स्टूडियो में लेकर उपस्थित हैं डॉक्टर पूनम अग्रवाल को, जो कि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं।
1: साथियों, अपनी साथी आशु रावत के साथ मैं उषा पांडे स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में। जैसा कि हमारी साथी ने बताया कि आज का विषय है आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान, और आपकी समस्या का निदान करने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर पूनम अग्रवाल, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं आप। श्रोताओं, यदि आप मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, अपवर्तक दोष, ड्राई आई सिंड्रोम, आँख का सफ़ेद हिस्सा लाल होना, इस तरह की किसी भी प्रकार की या किसी भी सामान्य बीमारी आपकी आँखों में है तो आप उठाइए फ़ोन और पूछिए अपना सवाल। इसके लिए आपको जानना होगा हमारा टेलीफोन नंबर। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा के बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं, और आप अपने मोबाइल नंबर से हमें मैसेज भेज सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 94 12 22 55 75। तो साथियों, मैसेज कीजिए और हमें फ़ोन कॉल करना शुरू कर दीजिए, डॉक्टर साहब से सलाह लीजिए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये बनता है कि आंखों का जो स्वास्थ्य है वो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है।
2: जैसा आशु जी ने कहा कि आंखें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, और हम सभी को मालूम है बगैर हम आंखों से देखे कुछ काम कर नहीं सकते, और हम बाकी शरीर का ख्याल भी आंखों से देख कर ही कर सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है, हमारी सारी चीज़, हमारे करियर, हमारा प्रोफेशन, सब चीज़ आंखों से रिलेटेड है
1: जी डॉक्टर।

0: साहब, जीवन की सुंदरता ही आंखों पर निर्भर है।
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर साहब, इससे पहले हम आगे की चर्चा इसी तरह से जारी रखेंगे, एक श्रोता साथी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, सहेली कार्यक्रम में आपका
1: अस्सलाम।
0: स्वागत है
1: मैं बोल रहा हूँ महुली से।
0: जी। एक बार फिर से अपना नाम परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम देवी सिंह है, गांव महुली से बोल रहा हूँ, जयगुरु द्वारा मंदिर के पास।
0: जी जी देवी सिंह जी, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से अपना।
1: डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, मेरी उम्र है 67 साल।
2: जी
1: मेरी नजी की नजर से इतनी बढ़िया अखबार पेपर।
2: जी आगे।
1: दूर नजर से कम दिखाई नहीं तो।
2: दूर की निगाह से कम नजर आता है, पास की निगाह बढ़िया है, तो आपको
1: हाँ
2: चश्मे की जरूरत है, आपको चेकअप कराना होगा। हो सकता है चश्मे से काम चल जाए, और कभी कभी मोतियाबिंद की स्थिति में भी हमारी पास की निगाह अच्छी हो जाती है और दूर की निगाह कम होती है। तो एक बार आप आंखों की जांच करा के चश्मा पहन सकते हैं, और अगर मोतियाबिंद ज़्यादा हो गया हो तो ऑपरेशन करा सकते हैं।
1: ठीक है
2: और
1: डॉक्टर साहब।
2: जांच कराना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी काला पानी होता है जो कि मरीज को नहीं समझ में आता, तो इसलिए हमेशा जांच कराने के बाद ही चश्मा पहनिएगा, ताकि पता चल सके कि सिर्फ नंबर है, मोतियाबिंद है या काला पानी है।
1: ठीक डॉक्टर साहब धन्यवाद।
0: जी
2: धन्यवाद।
0: देवी सिंह जी, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आंखों से आजकल जुड़ी हुई सामान्य कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें बराबर देखने को मिल रही हैं?
2: अभी अगर मैं इस समय की बात करूं, इस वक्त मौसम जिस तरीके का चल रहा है, तो जो मैं अपनी ओपीडी में देख रही हूं, सबसे ज़्यादा एलर्जी के केसेस देख रही हूं।
0: जी
2: छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी में आजकल जो धूल भरी आंधियां चलती हैं, गर्मी है और पोल्यूशन है, इससे बहुत सारे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं और एलर्जी के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं।
0: जी तो इससे क्या बचने के लिए क्या आप सलाह देती
2: बचने का,
0: हैं?
2: हाँ बचने का तरीका यही है। एलर्जीज एक्चुअली हमारी बॉडी का एक तरीके का रिस्पॉन्स होता है। हर किसी को एलर्जी उस तरीके से अफेक्ट नहीं करती है, तो किसी में वो ज़्यादा होती है उन्हीं चीज़ों से, किसी में कम। तो सबसे पहला उपाय है बचाव।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक
2: जी
0: श्रोता साथी हमसे जुड़ना चाह रहे
2: जी
0: हैं।
2: जी
0: जी हेलो हेलो, सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: हेलो, जनरल बरसा से बोल रहा हूँ सर।
0: अपना शुभ नाम बताएं।
3: किशन लाल सैनी नाम है।
0: किशन लाल जी। जी डॉक्टर साहब से अपनी समस्या बताएं।
3: हाँ हेलो,
2: हाँ बोलिए बोलिए किशन लाल जी, बोलिए प्लीज।
3: मेरी 67 ईयर्स उम्र है,
2: जी
3: आँखों में चिपचिपापन था,
2: जी
3: यही और कुछ नहीं है, और कोई
2: अच्छा
3: बीमारी नहीं।
2: ठीक है, आपको देखने में सब सही नजर आता है, दूर का पास का सब ठीक नजर आता है? चश्मा लगाते हैं आप? हेलो,
3: हाँ लगाते हैं, चश्मा लगाते
2: चश्मा
3: हैं।
2: पूरे समय? एक्चुअली अगर आपकी निगाह कमजोर है और आप चश्मा नहीं लगाते हैं तो भी आपकी आंखों में चिपचिपापन रह सकता है, और आंखों का पानी सूखने की स्थिति में, जब पानी हमारा ड्राई हो जाता है तो पलकें अच्छे से नहीं चल पाती हैं, उसकी वजह से सूखापन रह सकता है। तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह से लुब्रिकेंट आई ड्रॉप आप डाल सकते हैं, आई चेकअप करा के जो भी चश्मे का नंबर है वो प्रॉपरली लगाइएगा। जी
3: चिपचिपा रहता है, सूखापन नहीं रहता, आँख से
2: हाँ
3: चिपचिपी
2: हाँ
3: रहती
2: चिपचिप, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। सूखने से पहले जब आंख का पानी गाढ़ा हो जाएगा, जब उसमें पानी कम बनेगा तो वो चिपचिपापन आएगा, बाद में ड्राई हो जाएगा। तो अभी शुरुआत है आपकी ड्राइनेस की, पानी कम बन रहा है इसलिए वो चिपचिपा रही हैं, तो ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप डालिए आप। जी जी धन्यवाद।
4: जैसा कि डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे अभी आंखों की एलर्जी के बारे में, तो मैंने देखा है कि आंखों की एलर्जी ऐसी भी होती है कि आंखें पीली हो जाती हैं और थोड़ा साइज में भी अंतर हो जाता है, कुछ ऐसा भी होता है?
2: कोई भी एलर्जी होने पर जब आंखें लाल हो जाती हैं
4: जी
2: और वो लगातार लंबे समय तक लाल रहें, तो आंखों का में जो ब्लड आता है वो
4: जी
2: अपना पिगमेंट छोड़ता है, जिसकी वजह से वो पीली नजर आती हैं,
4: जी
2: और लगातार स्वेलिंग होने की वजह से, आसपास की सूजन की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आंखें छोटी हो रही हैं। छोटी होती नहीं है लेकिन ऐसा महसूस होता है। अगर क्रॉनिक एलर्जी हो जाती है
4: जी
2: तो वो पेशेंट को उतना इरिटेशन वगैरह तो नहीं करती, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आंख के अंदर परेशानी बनी रहती है।
4: एक्चुअली
2: तो
4: हमारे
2: जी
4: पास एक ये व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आया है
2: जी
4: कि मेरे बच्चे की उम्र 8 साल है और उसकी आंखों में एलर्जी बताई है डॉक्टर ने, और वो कह रहे हैं कि 14-15 साल के बाद फिर वो एलर्जी सही हो जाएगी।
2: बिल्कुल
4: अभी
2: बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीके की एलर्जी होती है
4: जी
2: वीके सीन के नाम से, वर्नल क्रेटो कंजंक्टिवाइटिस,
4: जी
2: जो यूजली बच्चों में और

0: स्पेशली लड़कों में ज्यादा
1: हाँ
0: होती
1: जी,
0: है,
1: लड़का है बेटा
0: उनके
1: है उनका।
0: हॉर्मोन्स की वजह से ऐसा होता है, उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है, वो 12 साल तक ज्यादा परेशान करेगी। ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा है 12 साल के बाद भी वो होती रहती है, लेकिन
1: जी
0: उसकी इंटेंसिटी कम हो
1: कम
0: जाती
1: हो
0: है।
1: जाती
0: हाँ
1: है जी। हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार जी,
1: नमस्कार जी भैया, कौन बोल रहे हैं आप?
2: त्रिलोकी बोल रहा हूँ।
1: जी
3: त्रिलोकी,
1: त्रिलोकी, हाँ जी त्रिलोकी जी, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
2: समाज में नमस्कार जी।
0: हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी।
2: मेरी उम्र 50 साल है
0: जी,
2: और नजदीक से मतलब कुछ दिखाई नहीं देता है, जैसे कुछ पढ़ा भी नहीं जाता है, दूर की नजर सही है।
0: ठीक है। आपने इससे पहले कोई चश्मा बनवाया, कहीं डॉक्टर को दिखाया?
2: चश्मा नहीं बनवाया।
0: हाँ, 40 साल की उम्र के बाद हमारी पास की निगाह कमज़ोर होने लगती है। बचपन में तो हम पास और दूर का दोनों देख सकते हैं, लेकिन 40 साल के बाद हमारा लेंस थोड़ा हार्ड होने लगता है और वो पास के लिए सिकुड़ नहीं पाता, तो पास के लिए हमें चश्मा लगाना होगा। ठीक है जी।
3: जी
2: नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब, ग्लूकोमा क्या बीमारी है, काला मोतिया, ये हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो जानते ही नहीं हैं, तो इसके बारे में थोड़ा
0: जी, ये बहुत
3: जानकारी।
0: ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने पूछी और इसको मैं अपने आप से भी बताना चाहती थी ज़रूरी से। ग्लोकोमा को हिंदी में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम लोग इधर काला पानी बोलते हैं, कुछ लोग जगह पे समलवाई बोलते हैं, लोग इसको काला मोतिया भी बोलते हैं। काला पानी का मतलब, इसमें कुछ काला रंग का पानी नहीं निकलता, काला पानी का मतलब ये है आँख के अंदर हमारी जो हमारे हम जैसे हम जानते हैं हमारे सारे शरीर में खून बहता है और सारा न्यूट्रिशन हमारे शरीर को देता है।
3: जी
0: आँख के अंदर वही न्यूट्रिशन उस खून से छना हुआ पानी करता है, क्योंकि खून अगर आँख के अंदर गया तो हमारी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी और हम देख नहीं पाएंगे। तो वो जो पानी सारी चीज़ों को न्यूट्रिशन देता है, वो पानी का सिस्टम रुका हुआ तो नहीं होता, पानी बनता है, फिर वो इम्प्योरिटीज़ को आँख से लेकर बाहर निकलता है। अब ये पानी अगर अंदर ही रुक जाए, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो रुक जाए, तो उसका दबाव बढ़ने लगता है और उसके दबाव के बढ़ने से हमारी आँख की नस जो हमारी प्रतिबिंब को हमारे ब्रेन तक ले जाती है वो खराब होने लगती है।
3: जी
0: तो इसकी वजह से हमारी आँख की रोशनी खत्म होने लगती है, इसलिए कालापन आ जाता है, तो इस वजह से हम इसको काला पानी कहते हैं।
3: जी
0: अब ये खतरनाक इसलिए है कि मोतियाबिंद में तो मरीज को पता चल जाता है उसकी रोशनी कम हो रही है,
3: जी
0: काले पानी में जो रोशनी कम होती है वो आपके सामने वाली दृष्टि में नहीं होती है, आपकी साइड वाली दृष्टि में होती है, आपका फील्ड ऑफ विजन कम होता है, चारों तरफ का घेरा कम होता है, तो मरीज को अंदाजा ही नहीं लग पाता कि कुछ फर्क हो रहा है। आजकल इतनी भागदौड़ की जिंदगी है, इतना ऑब्जर्व भी नहीं
3: जी
0: करते, तो जब तक मरीज को इसमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये जो डैमेज होता है ये परमानेंट होता है,
3: जी
0: इसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता, ना सर्जरी से ना किसी भी मेडिसिन से। इसमें जो भी इलाज है वो सिर्फ इसको आगे बढ़ने से रोकने का है, तो
3: जी
0: इसीलिए ये काला पानी थोड़ा खतरनाक बीमारी है और 40-50 साल के बाद थोड़ा सा इसकी रिस्क बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर को दिखाएं पहली बार जरूर, 40-50 साल की उम्र में एक बार अपना चेकअप करा लें, साल 2 साल में एक बार चेकअप कराते रहें, क्योंकि डॉक्टर ही देखकर इसमें डाउट होने पर कुछ खास जांचें करके इसको जल्दी पहचान सकते हैं और इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। एक और बात कहना चाहूँगी कि जिनके घरों में उनके माता पिता या किसी सगे संबंधी को काले पानी की बीमारी है, उनके पूरे परिवार को इस चीज़ के लिए सजग रहना चाहिए और चेकअप कराना
3: जी
0: चाहिए।
3: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये सुनील कुमार राया से इन्होंने ये प्रश्न किया था
0: जी
3: ग्लूकोमा के बारे में और परिवार वाली बात जो आपने
0: जी
3: कही।
0: जी
3: एक और
0: जी
3: श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर
0: जी
3: साहब।
0: जी
1: हेलो सहेली।
2: हेलो।
1: हेलो,
2: हाँ जी,
1: हाँ जी, हेलो सहेली
2: मेरी
1: कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: उम्र जो है 82 साल की है।
1: जी अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम ओम प्रकाश है, विशाल
1: हाँ जी बताइए ओम प्रकाश जी, अपनी समस्या कहिए।
2: मेरी दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है
1: जी डॉक्टर साहब। हाँ जी
2: अब एक परेशानी है कि एक तो कीचड़ आता है आंखों में
0: जी।
2: और दूसरी झलकती है।
0: हाँ ठीक है, कुछ लोगों में ऐसा होता है ऑपरेशन के बाद उनकी आंखें थोड़ा सेंसिटिव हो जाती हैं अगेन सूखापन होने की वजह से। अब ये अजीब सी बात लगेगी कि आप कह रहे हैं पानी आ रहा है और मैं कह रही हूँ सूखापन है, तो क्या होता है हमारा दिमाग जब ये समझता है कि हमारी आंखें सूख रही हैं तो ज़्यादा पानी बनाना शुरू कर

0: कर देता है, ठीक है। और हमारी आंख की जो परत है वो जब इरेगुलर हो जाती है, ऊबड़ खाबड़ हो जाती है, तो भी आंखों से पानी ज्यादा निकलता है। तो
1: अच्छा
0: इसमें दो काम करने हैं, तो आपको अगर चश्मे का कोई भी नंबर है तो उसको लगा के रखना है, ताकि आपकी आंखें वातावरण के असर से सूखे नहीं ज्यादा। और एक लुब्रिकेंट ड्रॉप आप डालते रहिए, चूंकि आपका
1: हेलो
0: ऑपरेशन। हाँ बोले।
1: कौन सा ड्रॉप बताया?
0: ड्रॉप ऐसे में आकाशवाणी पे नाम नहीं बता सकती, है ना, आपको डॉक्टर से सलाह लेकर ही दिखा कर लेना चाहिए, है ना, वो सही नहीं हो सकेगा। और चश्मा ज़रूर लगाइए, दो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हो, तो चेकअप ज़रूर करा लीजिए अगर आपको परेशानी लंबी है तो।
1: अच्छा जी,
0: जी
1: अच्छा
0: आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रकाश जैन हमसे जुड़े हैं, जी मैसेज कर रहे हैं। उम्र उनकी 55 साल है और पूछ रहे हैं कि मोतियाबिंद किस कारण से होता है, इसके बचने के क्या उपाय हैं और इसके लक्षण क्या हैं। जी मोतियाबिंद यूजुअली एक एजिंग प्रोसेस है, उम्र की वजह से जैसे हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती हैं, अपना पूरा काम करना बंद कर देती हैं, उसकी वजह से होता है मेनली। उसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, उसके अलावा कुछ बच्चों में जन्मजात मोतियाबिंद होता है, जो माता पिता माँ को गर्भावस्था के समय किन्हीं दवाइयों या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा उम्र के साथ साथ कुछ लोगों में मोतियाबिंद कुछ स्टेरॉइड्स ड्रॉप इस्तेमाल करने की वजह से, स्टेरॉइड्स एक तरीके की दवाइयाँ होती हैं जो लोग लोकली मेडिकल स्टोर से लेकर डाल लेते हैं एलर्जी के केसेस में स्पेशली।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम सवाल है और
0: जी
1: ये जानकारी बहुत ज़रूरी है श्रोताओं
0: हाँ,
1: के
0: ये
1: लिए।
0: इसके बारे में बाद में हम बात कर
1: जी
0: लेंगे, इनके
1: बिल्कुल
0: सवाल का जवाब दे देते हैं।
1: जी
0: और एलर्जी के केसेस में स्पेशली ऐसा होता है, उसके अलावा चोट की वजह से मोतियाबिंद हो सकता है। तो जो उम्र वाला मोतियाबिंद है जो एज के साथ होता है, तो अगेन उम्र हमारी जो होती है, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बड़ी उम्र में भी बड़े स्वस्थ दिखते हैं और कुछ लोग कम उम्र में बड़े उम्र दराज दिखते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है हमारे खान पान और हमारी जीवन शैली पर। तो अगर हम शुरू से ही अपने खान पान का ध्यान दें तो हो सकता है कि हम इसको डिले कर लें, है ना।
1: जी
0: और बाकी दवाई के बारे में जैसा बात करा है उषा जी ने, तो उसके बारे में हम और मैं उसको डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी, तो वो हम करेंगे। जी
1: जी एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब,
2: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
2: हाँ
1: मैं
2: जी, आपका स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। जी नाम बताइए अपना।
1: सुरेश चंद्र बोल रहा हूँ सहरसे।
2: हाँ जी सुरेश चंद्र जी, बताइए अपनी समस्या डॉक्टर साहब के सामने रखिए।
1: मेरे को ये परेशानी है, मुझको दूर से तो बढ़िया दिखता है
2: दूर से बढ़िया दिखता है जी।
1: और नजदीक से कम दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है नजदीक
0: हाँ,
1: से।
0: उम्र क्या है आपकी सुरेश चंद जी?
1: 50 वर्ष है।
0: 50 साल। हाँ सुरेश चंद जी, मैंने बताया कि 40 साल की उम्र के बाद हमारी पास की निगाह कम होना शुरू हो जाती है और हमें चश्मे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप कोई चश्मा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अपना चश्मा बनवाइए।
1: चश्मा तो नहीं कर रही हूँ।
0: हाँ तो चश्मा बनवाइए, 40 साल अभी तो आपने 10 साल निकाल लिए, चश्मान भाई। जी
2: जी
1: ठीक है ना।
0: नमस्ते।
1: डॉक्टर साहब, ये अपवर्तक दोष क्या है और बच्चों में आंखों की कमजोरी और जो चश्मे की आवश्यकता पड़ने लग जाती है, वो उसका संकेत क्या हो सकता है?
0: अपवर्तक दोष, ज्यादा हिंदी शब्द इस्तेमाल कर लिया आपने,
1: जी
0: रिफ्रेक्टिव एरर
1: हाँ
0: बोलते हैं
1: जी
0: चश्मे का
1: जी
0: जो नंबर है उसे ही
1: जी
0: बोलते हैं, ज्यादातर जो बच्चों में निगाह
1: नजर
0: कमजोर
1: की
0: होती है।
1: कमजोरी।
0: जी निगाह की कमजोरी, तो यूजली जो निगाह की कमजोरी है वो हमारे जीन्स पे डिपेंड करती है, जेनेटिक होती है। जेनेटिक का मतलब सब लोग थोड़ा गलत ले जाते हैं कि मेरी मेरे पाता माता पिता में तो है नहीं, हमें तो लगा नहीं चश्मा। जेनेटिक का मतलब है कि उस बच्चे के जीन्स में इस तरीके का कोडिंग है कि उसको नंबर आया, वो कहीं से भी आ सकता है, दादा दादी नाना नानी फो फादर से भी आ सकता है। तो एक तो वो है, उसके अलावा अभी जो नंबर की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों में, चश्मे के नंबर लग रहे हैं, वो बेसिकली लाइफस्टाइल की वजह से है, जीवन शैली की वजह से है, क्योंकि बच्चे लगातार जब पास का काम करते हैं तो उनके नंबर के बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये अनिल कुमार सिहाना मथुरा से हमें मैसेज भेज रहे हैं, क्या मोतियाबिंद बुजुर्गों में होता है या किसी भी उम्र में हो सकता है?
0: हाँ मैंने बताया आपको कि मोतियाबिंद किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में जन्मजात या चोट लगने की वजह से हो सकता है, इसके बाद यंग एज में स्टेरॉइड ड्रॉप इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है, बाकी जो नेचुरली होता है वो धीरे धीरे आपकी उम्र के साथ होता है। हाँ एक और खास चीज़ बता दूँ, डायबिटीज़ के केसेस में भी
3: मोतियाबिंद थोड़ा जल्दी होने की

0: भावना होती है।
1: जी, एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं।
2: हेलो, सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: हेलो मैडम, नमस्ते।
2: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
3: हम विपिन कुमार बोल रहे हैं, सॉरी सी।
2: जी, अपनी समस्या कहिए डॉक्टर साहब से। विपिन कुमार जी,
3: हमारी अम्मा जी हैं, उनकी उम्र है 65 साल, उनको खुजली होती है और आंखें लाल पड़ जाती हैं। 5 महीने हो गए उनको बनवाई एक आंख को।
2: अच्छा, एक आंख बनवाई है जी डॉक्टर।
0: ठीक है, आंखों में खुजली और लाल पड़ जाती हैं। अभी अगर सिर्फ ऑपरेशन के बाद हुई है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि कोई परेशानी तो नहीं है। और अदरवाइज जैसे ये मौसम ही एलर्जी का चल रहा है, जब हवा चलती है, खेत करते हैं तो पॉलेंस हवा में आ जाते हैं, उससे एलर्जी होती है। तो फिलहाल की राहत के लिए ठंडे पानी में रुई डालकर ठंडे पानी से सिकाई कर सकते हैं और बाकी डॉक्टर को दिखा के दवा लेंगे। ठीक है
1: डॉक्टर साहब, ये आजकल ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या तेजी से बढ़ रही है
0: जी,
1: इसके बारे में हमारे श्रोता साथियों को जानकारी दीजिए।
0: हाँ, ड्राई आई फिर से हमारी जीवन शैली की वजह से है। मोबाइल की जो क्रांति हुई है और मोबाइल जिंदगी के हर फील्ड में आ गया है, पढ़ाई से लेकर हमारे काम तक, और इसकी इम्पोर्टेंस को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। अगर मैं मना करूं या माँ बाप मना करें बच्चों को, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई करने के लिए उनको स्क्रीन इस्तेमाल करनी होती है
1: जी।
0: तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम लगातार जब चीज़ स्क्रीन को देखते हैं तो हम पलकें नहीं झपकाते। हमारी पलकें जो हैं नेचुरली आँख में जो पानी बनता है उसको स्प्रेड करती हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब वो स्प्रेड अगर ख़त्म हो जाएगा तो ड्राई स्पॉट्स बन जाएंगे, जो वातावरण की हवा है उसको ड्राई कर देगी। ड्राई करने पे आपको इरिटेशन होगा तो वो धीरे धीरे करके डिस्टर्ब होने लगेगा। तो जो भी आप स्क्रीन पे काम करते हैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगी कि बीच बीच में अपनी आंखों को, पलकों को झपकाते रहें, कॉन्शियसली सोच समझ के झपकाते रहें। आप भूल जाते हैं उसको झपकाते रहें, और स्क्रीन टाइम को अगर कम कर सकें तो बहुत अच्छा है। उसके लिए एक रूल है 20-20-20 का, कि आपको अगर लंबे समय स्क्रीन पे काम करना है तो आप हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फिट की दूरी पर देखें। 20 फिट की दूरी पे वैसे ना देख सकें तो आपकी खिड़की हो, खिड़की के थ्रू देख लें, नहीं तो उठ के चले जाइए, पानी पी लीजिए। पानी की बॉटल अपने पास मत रखिए, उठ के पानी पी कर आ सकते हैं, तो उसमें आपका चेंज हो जाएगा फोकस
2: जी। डॉक्टर साहब, एक समस्या हमारे पास आई है हमारे व्हाट्सएप संदेश के जरिए, कि जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी ग्लूकोमा के बारे में
0: जी,
2: तो आपने बताया कि सर्जरी के जरिए भी इसको नहीं सही किया जा सकता, तो इसका मतलब एंड में इलाज क्या हो सकता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, या इलाज होने के बाद भी इसके चांसेस रहते हैं आने के दोबारा? हाँ, ऐसा कुछ
0: इसमें सर्जरी की जाती है, लेकिन सर्जरी इसी ने की जाती है कि आगे ना बढ़े। जो डैमेज हो चुका होता है उसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते। जैसे मोतियाबिंद में, तो मोतियाबिंद हुआ, आपने ऑपरेशन किया, आपको वापस दिखाई दे जाएगा
2: जी।
0: लेकिन काले पानी में जो भी रोशनी खत्म हो गई उसको हम वापस नहीं कर सकते। अगर दवाइयों से हम उस आंख में, एक्चुअली एक प्रेशर होता है उसको नापते हैं, अगर उस प्रेशर को हम एक निश्चित डिग्री तक कंट्रोल कर सकें दवाइयों से, तो दवाइयों से कंट्रोल करते हैं। अगर दवाइयों से नहीं हो सकता तो फिर ऑपरेशन करना होता है
2: जी।
0: ऑपरेशन से भी हम वापस नहीं ला पाएंगे रोशनी, लेकिन अगेन आपको आगे गिरने से रोकने में मदद करेंगे
2: जी। बिल्कुल
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं।
2: हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: हेलो मैडम, नमस्ते।
2: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
4: मैडम अखिल बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, अपना नाम बताइए।
1: स्पीकर ऑफ करके बात कीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है
2: जी। अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम मैडम साहब सिंह है।
2: अच्छा साहब सिंह जी, अपनी समस्या बताइए डॉक्टर साहब को।
4: समस्या ये मैडम, मेरे खुजली बहुत तेज मारती है
0: जी,
4: और दूर से ऐसा धुला धुला सा दिखता है मैडम।
0: हाँ जी, खुजली आपको कब से हो रही है? अभी होना शुरू हुई है, हमेशा रहती है
4: ये? मैडम कम से कम हो गई 10 साल से करीब हो गई मैडम।
0: अच्छा, 10 साल से लगातार हो रही है।
4: हाँ, मैडम मैं दवा ले लेता हूँ, सही हो जाती है।
0: अच्छी, क्या आपने एक अच्छे पॉइंट के पास आ गए। खुजली के साथ यही परेशानी है कि वो ठीक नहीं होगी, है ना? आपको अब बचाव करना पड़ेगा। जिस चीज
4: मैडम,
0: आप चश्मा लगाइए, धूल मिट्टी वाले जिन जगहों पर जाने से आपको एलर्जी होती है नहीं जाइए, जाए तो चश्मा लगा कर जाए। वहां से लौट कर आने के बाद अपने चेहरे को धो लें, आंखों को धो लें।
4: मैडम मेरी आंखें बहुत तेज दुखती भी हैं।
0: हाँ, अगर आप बहुत तेज खुजाएंगे उसके बाद वो दुखेंगी तो ठंडे पानी से सिकाई कर लें। और जो भी दवाइयां हैं, कुछ लिब्रिकेंट्स होते हैं, कुछ एलर्जी की दवाइयां होती हैं, उनको डॉक्टर से बात करके दवा शुरू करें। हाँ, ये निश्चित है, इसको समझ लीजिए कि जाएगी नहीं, आपको केयर करना पड़ेगा। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ दवाइयां सारा काम

0: करेंगी जी।
1: अच्छा
2: जी, आप डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों का प्रयोग करें, अपने मन से किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई लाके जो व्यक्ति अपनी आँखों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, प्रायः उनके सामने ये समस्या आती है। आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार डॉक्टर साहब, आंखों के प्रेशर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अचानक से आंखों का प्रेशर बढ़ जाना, ये क्या होता है और इसका चेकअप कब कब कराना चाहिए? जैसे प्रेशर बढ़ जाने से एक सर में दर्द बना रहता है, आंखों में दर्द बना रहता है, ऐसी क्या समस्या है?
3: प्रेशर से संबंध
2: तात्पर्य वही ड्राई
3: नो
2: जी।
3: आंख के प्रेशर का मतलब है जो हम ग्लॉकोमा में बात कर रहे थे, आंख के अंदर का जो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है
2: जी,
3: तो वो तो चेकअप तो डॉक्टर ही करेंगे, है ना
2: जी।

0: प्रेशर बढ़ जाता है
1: जी जी,
0: तो वो तो चेकअप तो डॉक्टर ही करेंगे, है ना जी।
1: पानी का सूख जाना होता है?
0: नहीं नहीं नहीं, काला पानी की बात जो कर रहे थे हम, काला अच्छा। पानी ग्लूकोमा, जिसमें प्रेशर को हम चेक करते हैं, जिसको इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर कहा जाता है, वो चीज वही है। आपका प्रेशर से मतलब है आंखों पे तनाव से,
1: तनाव से
0: वो हमारे काम करने पर होता है जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना प्रोफेशन में लगातार काम करते हैं, और अगर हमारी आंखें पूरी तरीके से ठीक नहीं देख पा रही तो हमारी मांसपेशियां काम करती हैं। आपने थोड़ी देर तक तो आराम से काम किया, फिर मांसपेशियों ने जोर डालकर काम किया, तो मांसपेशियों के काम करने की एक सीमा होती है, वो थकने लगती हैं, और आपने उसके बाद भी काम किया तो आपको तनाव महसूस होता है, फिर कभी कभी इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि वो आपकी आंखों के चारों तरफ का सिर का दर्द, आपके सिर का दर्द भी बन सकता है
2: जी। ऐसा भी होता है मैडम ग्लूकोमा में कि जैसे, नहीं ग्लूकोमा नहीं, जैसे प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने प्रेशर हाँ। की हाँ, तो उसमें आंख में ब्लड भी आ जाता है कभी कभी, ऐसा कुछ होता है कि वो बीपी की वजह से होता
0: है? वो बीपी की वजह से होता है, वो डायबिटीज और बीपी की वजह से
1: जी जी जी। डॉक्टर साहब, डायबिटीज और बीपी की वजह से भी आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, डायबिटीज के लिए भी मैं कहना चाहती थी कि जो भी डायबिटीज के मरीज हैं, एक्चुअली क्या होता है जब भी उनको डायग्नोज होती है डायबिटीज, तो उस समय उनको कोई परेशानी नहीं होती है ना, तब वो सोचते हैं ठीक है हम खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मीठा खा लेते हैं कल देखेंगे, अभी कुछ नहीं करते हैं। फिर धीरे धीरे करके उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं खराब हो जाते हैं, तो डायबिटीज़ का असर हमारे शरीर के कई हिस्सों पे पड़ता है। जब हमारी डायबिटीज़ अनकंट्रोल होती है, हमारी आंखों पर, हमारे दिल पर, तो आप जानते ही हैं, हमारी किडनीज पर और हमारे ब्रेन पर, जिसमें स्ट्रोक पड़ जाता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि डायबिटीज़ को आपके जब से पता चले, जब से आपका निदान हो, तब से आप उसको कंट्रोल में रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि एक बार अनकंट्रोल डायबिटीज़ से जब बॉडी का सारा सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप करते हैं कंट्रोल तो वो डैमेज तो शुरू हो ही चुका होता है। तो डायबिटीज़ की वजह से पर्दे पर खून के धब्बे आ जाते हैं और पर्दे पर सूजन आ जाती है, जिसके लिए आपको इलाज लेना पड़ता है
1: जी। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं।
3: हेलो
1: जी। हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन साथी बात कर रहे हैं?
3: अरे साहब, हमारी आंखें में दिक्कत आती है।
1: अपना परिचय दीजिए पहले साहब।
3: हमारा गांव माधवीपुर मथुरा से बोल रहे हैं, रामफूल नाम है
1: जी। राम, क्या नाम है आपका?
2: रामफूल।
1: रामफूल जी, अपनी समस्या बताएं डॉक्टर साहब से।
3: अरे साहब, मेरे आज कम से कम 5-7 साल पहले मैंने आंख बनवा ली दोनों
1: जी,
3: और इनमें कचरा आता है। कचरा आता है, धो लेता हूँ तो साफ हो जाती है, दवा ड्रॉप भी डाल लेता हूँ
1: जी।
3: अब एक आंख में दिक्कत है, इसमें कोई तो कहता है डॉक्टर की आंख सूख रही है
1: जी,
3: हाँ कहता है आंख सही है, इसकी समाधान क्या है? कचरा आता है इसमें आंख में।
0: ठीक है, देखिए कचरा आना, हाँ अगेन, अगर आपका आंखों का आपके डॉक्टर ने कहा है सूखना है, यानी पानी सूखने से है, या आपको दिखाई देने में भी कोई परेशानी होती है?
3: नहीं, आंख दिखाई में भी परेशानी आ जाती है जी सर। मैडम जो कचरा आता है जब,
0: हाँ कचरा आता है, तो आप एक बात बताइए, चश्मा है आपके पास?
3: हाँ चश्मा भी है, कभी जब लगा ले।
0: हाँ बस उसको उसको लगाइए आप, चश्मा पूरे समय। दूर का पास का दोनों का नंबर है आपके पास?
3: हाँ दोनों हैं सर।
0: तो दूर वाला चश्मा पूरे समय लगाइए, पास वाला चश्मा पास के काम के समय लगाइए।
3: अच्छा जी
0: जी।
3: अब दिन में नंबर लगाइए, आज मैं सोच रहा हूं, रेडियो सुन रहा हूं मैं अभी
0: जी
1: जी। आप हमारे बहुत सुधी श्रोता हैं, आप हमें सुनते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मैं कई दिन मिलाया आकाशवाणी में, कई दिन गाने वाने इनको मिलाते नहीं, उठाते नहीं ये लोग।
1: कोई बात नहीं, जब लग जाए तभी शुरुआत, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, एक ये निष्ठा राजे जाधव है, महाराष्ट्र से हमसे जुड़ी हैं, ये मैसेज भेज रही हैं कि मेरा चेकअप हो चुका है, चश्मा मुझे लग चुका है, लेकिन मैं जब भी स्क्रीन पे काम करती हूँ, लैपटॉप पे काम करती हूँ, तो धीरे धीरे आंखें मेरी ब्लर हो जाती हैं, और फिर पलक झपकाने के बाद थोड़ी देर बाद दृष्टि साफ हो जाती है, तो क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल सही बताया, उन्होंने खुद ही बताया कि वो लैपटॉप पे जब काम करती हैं तो धीरे धीरे ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। उनको उन्हीं दो बातों का ध्यान रखना है कि बीच में पलके झपकाते रहना है और ब्रेक्स लेते रहना है जी
1: जी। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं।
2: हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
4: मेरा नाम अमर सिंह है, मेरी 74 ईयर्स।
2: जी अमर सिंह जी, जी बिल्कुल, अपनी समस्या बताइए डॉक्टर साहब को।
4: डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: महादेव जी बताइए।
1: मेरी समस्या ये है कि मेरा ऑपरेशन हुआ था दिल्ली रेटिना का,
0: जी
1: आँख खराब हो गई थी तो दिल्ली में रेटिना का ऑपरेशन हुआ
0: जी
1: मैं। हाँ, तो इसके बाद जो है हो गया वो, तो दोबारा गए तो जांच कराए तो बताते हैं काला पानी है, तो अब बता रहे हैं काला पानी है, तो
0: जी
1: काला पानी की क्या फिर दोबारा ऑपरेशन होते हैं?
0: हाँ, काला पानी में अभी वो पहले आपको दवाई देंगे, और एक्चुअली क्या होता है, रेटना सर्जरी में एक ऑयल डाला जाता है आँख के अंदर, तो उसकी वजह से भी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको काला पानी कहते हैं। तो काला पानी में पहले वो दवाई डाल के कंट्रोल करके देखेंगे कि दवाइयों से ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर उसके
1: तो
0: ऑपरेशन की जरूरत।
1: मेरे को दवाई दी है। हाँ,
0: जी दवाई दी है। हाँ तो
1: दो दो ड्रॉप है,
0: जी
1: एक रात को डालता हूँ, बाकी एक ड्रॉप दिन में 6 बार डलती है।
0: ठीक है, जो रात वाली ड्रॉप है वही आपके काले पानी की दवा है, उसको रेगुलर डालते रहिए
1: तो
0: उसको।
1: अब मैं, मुझे बुलाया है, कल जाऊंगा मैं,
0: हाँ जाइए बिल्कुल दिखाइए।
1: तो ऑपरेशन वाली बात से मेरे को थोड़ा वो रहता है, मैं परेशान हूँ, अकेला हूँ, मेरी कोई पैरवी करने वाला है नहीं, तो क्या करूँ मैं इसमें?
0: नहीं, पहले ये बताइए कि आप पहले दवा डाल के तो जाइए, डॉक्टर ने कहा है कि आपका अभी कंट्रोल नहीं हुआ और आपका ऑपरेशन करना ज़रूरी है।
1: हाँ, मौसम भी सही नहीं है, गर्मी का मौसम है।
0: नहीं, मैंने ये पूछा, क्या आपके डॉक्टर ने कहा है कि वो काला पानी का ऑपरेशन करेंगे आपकी?
1: हाँ, वो कल कल जाऊंगा तो कल आप जाकर के पता लगेगी वो
0: हाँ तो बस,
1: ऑपरेशन
0: तो
1: की डेट
0: पहले से
1: मुझे
0: क्यों डर रहे हैं,
1: इसके
0: पहले तो पहले जाके देखिए कि ऑपरेशन होना है या नहीं होना।
1: टांके काट दिए, इसके टांके तो काट दिए उन्होंने,
0: वो
1: मेरी
0: ठीक
1: राइट
0: है,
1: हैंड।
0: वो सही है, वो सही है, लेकिन काले पानी के लिए जो आपकी चिंता है उसके लिए आप दवा डालने के बाद डॉक्टर से मिल लीजिए, हो सकता है कि दवाई से आपका कंट्रोल हो और आपको ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। एक और चीज, अगर ऑयल की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है तो डॉक्टर को ऑयल निकालने की जरूरत होगी, तो वो ऑयल निकालने के लिए दोबारा ऑपरेशन करने की सलाह दे सकते हैं। जी
1: जो रेटिना का ऑपरेशन हुआ है उसी का करेंगे ना फिर वो?
0: ये तो पूरी बात सब कुछ पर्चे
2: एक बार आप
0: देखकर
2: डॉक्टर
0: समझ गए।
2: साहब के
0: हाँ
2: पास जाइए, वो आपको परामर्श देंगे, आप घबराएं बिल्कुल मत,
0: जी
2: क्योंकि घबराने से समस्या बढ़ती है, घटती नहीं है। आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये फोन कॉल्स आ रहे हैं और श्रोता साथी बता रहे हैं, कोई 50 साल का है, कोई 67 का है, कोई 75 का है, और
0: जी
2: कईयों के तो चश्मे ही नहीं लगे
0: जी
2: और वो परेशान हैं
0: जी
2: दृष्टि समस्या से, तो डॉक्टर साहब समय समय पे नियमित जांच जरूरी है, लेकिन श्रोता साथियों को आप थोड़ा जानकारी दे दें कि कितने समय पर जांच करानी चाहिए।
0: जी एक्चुअली अगर हम शुरू से शुरू करें तो एक तो बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो उस समय हमें आई चेकअप करा लेना चाहिए, स्पेशली अगर माता पिता या फैमिली में कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है। कभी कभी माँ ने अपना लैसिक सर्जरी कराया हुआ होता है, वो चश्मा नहीं लगा रही होती हैं, लेकिन लैसिक सर्जरी कराने से जो चश्मे की बीमारी है वो ख़त्म नहीं हो जाती है, सिर्फ
2: जी
0: चश्मा हट जाता है।
2: जी
0: तो अपने बच्चों का समय से जांच करा लें। ये इस बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी हमारी सिर्फ एक आंख में प्रॉब्लम होती है, दोनों में नहीं होती है, दोनों में होती है तो पता चल जाता है, और एक आंख में निगाह कम होने पर बच्चों को समझ में नहीं आता और वो चीज़ अनडायग्नोस्ड रह जाती है, पता नहीं चलती, और हमारी आंखें देखने से ही उनकी रोशनी बढ़ती है और उस स्थिति में आंख लेजी रह जाती है, जिसका बड़े होने पर पता चलने पर इलाज नहीं है। तो
2: जी
0: एक तो स्कूल जाने के एज पे सबसे पहले शुरू करा लें, उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 40 साल की उम्र पर हमारी पास की निगाह कमजोर होना शुरू हो जाती है और बाकी सारे सिस्टमिक प्रॉब्लम्स के इफेक्ट भी आने शुरू हो जाते हैं, तो 40 साल की उम्र पर एक बार जरूर कराएं।
2: जी
0: इन सब के बाद साल में एक बार या दो बार, 2 साल में एक बार जरूर करा लें, और जब अगर कोई परेशानी है तो फिर आप जाएंगे ही डॉक्टर के पास, अगर चश्मा लग गया है तो बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए हर 6 महीने पे चेकअप कराते
2: जी
0: रहना चाहिए। जी
2: जी डॉक्टर साहब, खान पान बचाव इसके बारे में
0: हाँ
2: जानना
0: इम्पॉर्टेंट
2: चाहेंगे
0: है ये,
2: आपसे।
0: और इसके बाद में एक बात और भी बोलूँगी, पहले खान पान की बात कर लेते हैं। खान पान का जो चीज़ है अभी बहुत बिगड़ गया है और मैं बड़े कंसर्न हूँ इस चीज़ के लिए, और इवन जो चश्मे के नंबर के लिए भी है, अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो वो भी पॉजिटिव इम्पेक्ट देता है चश्मे के नंबर। आजकल मदर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हैं अपने बच्चों के चश्मे के नंबर के लिए, उसमें खान पान के साथ एक और चीज़ है सनलाइट का एक्सपोज़र। तो ये स्टडीज़ में और रिसर्च में साबित हो चुका है कि 45 मिनट्स का सन एक्सपोजर पॉजिटिव इफेक्ट रखता है बच्चों की आंखों का चश्मा बढ़ने से रोकता है, और उतना ही अगर आप इंडोर्स रहते हैं तो निगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो लगातार

0: पास का काम करना और सनलाइट में नहीं रहना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, आउटडोर एक्टिविटी करना सनलाइट में रहना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, और खाना पीना इम्पॉर्टेंट है। अब ठीक है, जो बच्चे हैं जिनका ग्रोइंग फेज है, आप उसको सब चीज़ देंगे, दालें हरी सब्जियां फल, ये ना एक बड़ा मोनोटोनस सा डायलॉग है। कोई भी खाने पीने के बारे में पूछता है और हम सब लोग यही बोलते हैं, आप किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे सब यही कहेंगे कि हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, दालें खाइए। माँ को भी पता होता है, फैमिली को भी पता होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली होता नहीं है,
1: नहीं हो
0: क्योंकि
1: पाता, बच्चों की अपनी चॉइस होती है, वो
0: बच्चों की
1: नहीं
0: अपनी
1: खाते
0: चॉइस
1: हैं।
0: होती है। तो
1: हाँ
0: मेरा रिक्वेस्ट है ये, अभी ना न्यूट्रिशन पे बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। हम लोगों की जो बात की बीमारियां हैं वो सब हमारे खान पीन से रिलेटेड हैं। अब पिछले 10-20 सालों में डायबिटीज़ इतना ज़्यादा बढ़ गई जो पहले कभी नहीं थी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पैक्ड फूड जो हम लोग खाते हैं, बना बनाया जंक फूड खाते हैं, बाजार की चीज़ें खाते हैं। तो उस पर सभी को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, इज़ अ होल, नॉट फॉर द आइज़, सिर्फ अकेले आंखों के लिए नहीं कह रही मैं। जो मिडिल एज के लोग हैं, जैसे 30, 40, 45 साल के लोग हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि आप देखो कि जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो बीमारी की परेशानी होती है घर में, है ना।
1: जी
0: और जब आप बच्चे होते हो आपको दुनिया में किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, आप मिडिल एज पर हो आप सोच सकते हो कि आपके बड़े बूढ़े बीमार हैं घर पे, तो आप समझ सकते हो आप अपने बच्चों को किस तरीके से उस रास्ते पर जाने से रोक
1: रोक
0: सकते हो,
1: सकते हैं।
0: ठीक है। तो आपको उनको टेस्ट देना है, डेफिनेटली बच्चे हैं, बच्चों को टेस्ट देना ही देना है। आपको तरीके ढूंढने होंगे कैसे उनके टेस्ट को मेंटेन करते हुए उनको हेल्दी फूड खाने की आदत डालनी होगी,
1: जी जी
0: ठीक
1: डॉक्टर साहब,
0: है।
1: योग व्यायाम,
0: ये सब चीज़ तो योग कुछ ना करें तो वॉकिंग तो ज़रूर करें,
1: वॉकिंग जरूर
0: वॉकिंग ज़रूर करें, और योग करना बहुत ज़रूरी है। जो एज के साथ हम लोगों के जॉइंट्स नहीं मूव करते हैं, चलने में प्रॉब्लम आती है, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उन बुढ़ापे में स्वस्थ रहने के लिए जवानी में काम करना पड़ेगा।
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने इतने अच्छे से हमारे श्रोता साथियों को और हमें समझाया, जानकारी दी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि आंखें हैं तो रंग हैं, सपने हैं संसार है, इनकी सुरक्षा में ही जीवन का असली उपहार है। रोशनी केवल आंखों में नहीं होती, सही जानकारी भी जीवन में उजाला लाती है। हमें विश्वास है कि हमारी ये जो आज की बातचीत है, श्रोता साथियों को बेहतर जानकारी प्राप्त हुई होगी। प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ हेलो सहेली कार्यक्रम कि आज की ये जो चर्चा है यहीं समाप्त होती है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए विशेषज्ञ के साथ। आपको हमारा
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते। नमस्ते करते करते मुझे एक
1: जी
0: बोलना है
1: जी डॉक्टर साहब,
0: सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ से बोलूं,
1: जी
0: कि जो किसान भाई हैं मेरे पास आते हैं, उनको खेती करते समय आंख में चोट लग जाती है, ज़्यादातर लोग वहीं लोकली मेडिसिन ले लेते हैं और उसकी वजह से उनकी समस्या काफ़ी बढ़ जाती है। उसमें से जो भी किसान भाई हैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना है, स्टेरॉइड ड्रॉप नहीं लीजिए प्लीज़। आप सिंपल लुब्रिकेंट ड्रॉप डाल सकते हैं, सिंपल एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल सकते हैं, उससे आप चाहे ठीक नहीं होंगे लेकिन स्टेरॉयड ड्रॉप डालने से आपकी आंखें बहुत ख़राब हो जाती हैं, फिर उसका कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे को बस ये एक मैसेज ज़रूर जन देना है किसान भाइयों और किसान भाइयों के एरिया वाले मेडिकल स्टोर के भाइयों को, वहाँ के लोकल प्रैक्टिशनर्स को, कि आंख में किसी भी वेजिटेटिव बॉडी मतलब किसी लकड़ी पेड़ पौधे से चोट लगने पर स्टेरॉयड ड्रॉप्स प्लीज़ मत दीजिए।
2: बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, और हमारी भी आपसे यही कोशिश रहेगी कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी परेशानी को बढ़ाना उसका समाधान नहीं होता है। तो चलते चलते अपने कार्यक्रम को देते हैं यही विराम। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: थैंक यू।

हेलो सहेली फोन इन कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम अग्रवाल से आपने की प्राप्त जानकारी। विषय था आंखों की सामान्य बीमारियां एवं निदान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: at isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha, and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh. News just in. Keir Starmer has resigned as Prime Minister of the United Kingdom. In a statement outside 10 Downing Street, he said every decision he has made in office has been about putting the country that he loves first. In the FIFA World Cup 2026, Egypt registered their first ever World Cup victory 3-1 over New Zealand in Vancouver this morning. Liverpool star Mohamed Salah scored his first goal of the tournament. With this win, Egypt took over the first place in Group G. Earlier, Cape Verde held Uruguay to a 2-2 draw in their Group H match in Florida today. Iran and Belgium also played out a goalless draw in their Group G clash in California last night. In today's fixtures, Argentina will take on Austria in Group J. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In men's hockey, India defeated the Netherlands 3-2 in their last match of FIH Pro League Rotterdam leg yesterday. Jugraj Singh, Abhishek and Rajinder Singh scored the goals, helping India register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये बढ़ाया गया है। कोलकाता

0: के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक

0: साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने

0: टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव,

पॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार

इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया

0: और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
1: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 5:30 पर हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 5:30 हो चुके हैं। इस मीटर पर द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को अरविंद कुमार का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में हम हर रोज एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होते हैं आपकी सेवा में, और हर रोज की भांति आज भी हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। आज की बात में हम चर्चा करेंगे गतिशीलता और शारीरिक संतुलन के लिए योग, साथ ही आपको सुनवाएंगे स्वरचित कहानी भाग्य बड़ा ईश्वर ऋचा अरोड़ा जैसे, साथ ही आप सुन सकेंगे कुछ फिल्मी गीत। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला और बात करते हैं कैसे विषय की जो युवाओं के स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शैली से सीधे जुड़ा है, गतिशीलता और शारीरिक संतुलन के लिए योग। युवा दोस्तों, विश्व भर में योग को स्वस्थ जीवन का आधार माना जा रहा है। आधुनिक जीवन शैली में घंटों बैठकर पढ़ाई करना, मोबाइल और कंप्यूटर का अत्यधिक उपयोग और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण शरीर की गतिशीलता और संतुलन प्रभावित होने लगे हैं। ऐसे में योग एक सरल, सुलभ और प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। गतिशीलता अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों की सहज और लचीली गति। जब हमारे जोड़ों और मांसपेशियों में पर्याप्त लचीलापन होता है, तब हम दैनिक कार्यों को अधिक दक्षता और ऊर्जा के साथ कर पाते हैं। वहीं शारीरिक संतुलन हमें गिरने, चोट लगने और शारीरिक अस्थिरता से बचाता है। दोस्तों, योग के अनेक आसन गतिशीलता और संतुलन को विकसित करने में सहायक हैं। उदाहरण के लिए हम मान लें ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन और गरुणासन शरीर के संतुलन को बेहतर बनाते हैं। वहीं भुजंगासन, मार्जरी आसन और पश्चिमोत्तानासन की बात करें तो ये शरीर में लचीलापन बढ़ाने और मांसपेशियों को सक्रिय रखने में मदद करते हैं।

करते हैं। दोस्तों, योग केवल शरीर तक सीमित नहीं है, इसके साथ किए जाने वाले प्राणायाम और ध्यान मन को एकाग्र बनाते हैं, जिससे शरीर और मस्तिष्क के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है और यही समन्वय संतुलन और सक्रिय जीवन की आधारशिला है। 21 जून 2026 यानी बीते कल को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। विशेष रूप से युवाओं के लिए योग आत्मविश्वास, कार्य दक्षता, कार्यक्षमता और सकारात्मक सोच विकसित करने का सशक्त माध्यम है। तो आइए हम सभी प्रतिदिन कुछ समय योग को दें और अपने जीवन को अधिक सक्रिय, संतुलित और स्वस्थ बनाएं।

0: दोस्तों, पापोन और रोंगड़ी गुप्ता की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे सुई धागा फिल्म का गीत। वरुण ग्रोवर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत निर्देशन था। और युववाणी कार्यक्रम जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल। अंतराल के बाद हम फिर मिलेंगे, आपको सुनवाएंगे स्वरचित कहानी।
1: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं कथा क्रम के क्रम में स्वरचित कहानी भाग्य बड़ा ईश्वर। कहानीकार हैं ऋचा अरोड़ा।
4: एक निर्धन व्यक्ति था। वह गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने तथा अपने परिवार का पेट पालता था। उसका तथा उसके परिवार का जीवन अभावों में व्यतीत हो रहा था। कभी काम मिला तो रोजी रोटी मिल गई, काम न मिला तो दो जून की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। उस निर्धन व्यक्ति से अपने परिवार की दशा देखी नहीं जाती थी। कभी कभी सोचता था कि आत्महत्या कर लूं, किंतु बच्चों को देखकर वह ये भी नहीं कर पाता था। खूब परिश्रम करने के बाद भी वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन निर्धन व्यक्ति का एक मित्र शहर से आया। उसके ठाट बाट देखकर निर्धन व्यक्ति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कुछ साल पहले ही उसका यह मित्र फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमा करता था। उस मित्र का नाम राजू था। राजू ने जब उसके घर की दशा देखी तो वह बहुत दुखी हुआ और बोला, अरे तेरी क्या जिंदगी बदल गई, देख तो तूने घर की क्या हालत बना रखी है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं खुद ही इस जीवन से तंग आ गया हूँ। गरीबी पीछा ही नहीं छोड़ती, कुछ समय में नहीं आता तो मैं क्या करूँ। निर्धन व्यक्ति उदास स्वर से बोला, तो ठीक है, तू मेरे साथ शहर चल, वहाँ चलकर तेरी किस्मत बदल सकती है, राजू ने सुझाव दिया। निर्धन व्यक्ति राजू की बात मानकर और उसके साथ शहर चला गया। शहर पहुंचकर उसने उसे एक दुकान पर काम दिला दिया। एक साल तक निर्धन व्यक्ति दिल लगाकर काम करता रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि उसने काफी सारा धन एकत्रित कर लिया। एक साल बाद उस निर्धन व्यक्ति ने घर वापस आने की सोची। उसने अपने रुपयों की थैली एक पोटली में रखी और घर आने के लिए चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। चलते चलते उसे रात हो गई थी। उसने सोचा, रात में जंगल में सफर करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने रात गुजारने

के लिए एक वृक्ष का सहारा लिया। थकान के कारण उसे जल्दी नींद आ गई और नींद में उसने दो प्राणियों को अपने ऊपर झुके हुए देखा। उसमें से एक बोला, अरे इस आदमी के नसीब में खाने और कपड़े के सिवा कुछ लिखा ही नहीं है, फिर उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ सकता है? मैंने उसे यह धन दिया है। दूसरा बोला, ये आदमी बहुत ईमानदार तथा मेहनती है, उसने

0: की कमाई कोई चलता बना था। अब वह घर किस मुंह से जाए। वह बहुत देर तक अकेला बैठा और रोता रहा। आखिरकार एक बार फिर शहर जाने का फैसला किया। शहर जाकर वह फिर से मेहनत करने लगा। एक साल बाद उसने फिर कुछ धन इकट्ठा किया और एक बार फिर उसने एक थैली में डालकर पुनः घर के लिए चल पड़ा। उसने पहले की तरह जंगल में ही रात गुजारने का फैसला किया और सोचा कि अब की बार वह सोएगा नहीं। किंतु हवा बड़ी ठंडी चल रही थी और वह थका हुआ भी था। उससे नींद आ गई और इस बार भी वही दोनों प्राणी नजर आए। एक ने कहा, भैया कर्म, मुझे समझ में नहीं आता कि जो चीज़ इस आदमी के नसीब में नहीं है वो तुम इसे क्यों दे देते हो। देखो तो ये एक बार फिर धन कमा लाया। भाई, जो मेहनत करेगा वह तो धन कमाएगा ही। ये बेचारा गरीब दिन रात मेहनत करता है, फिर मैं धन कैसे ना देता। तुम तो जानते हो कि मैं हर एक की मेहनत का फल उसे देता हूँ, और एक तुम हो। मैं तो नसीब हूँ भाई, जब तुम्हारा काम समाप्त हो जाता है तब मेरा काम शुरू हो जाता है। तुमने तो इसकी मेहनत का फल इसे दे दिया क्योंकि तुम कर्म जो ठहरे, किंतु उसके भाग्य में यह लिखा ही नहीं कि इसके पास धन रहे। कहते हुए उस आदमी ने निर्धन व्यक्ति के सिर के नीचे से रुपयों की थैली निकाली और दोनों चलते बने। जब तक दोनों निर्धन व्यक्ति के सिर पर सवार रहे तब तक उसकी आंख नहीं खुली। उनके चलते ही वह एकदम घबराकर बैठ गया। उसकी आंख खोलते ही दोनों अदृश्य हो गए। उसने उठकर अपनी रुपयों की थैली देखी, वह फिर से वहां नहीं थी। वह कहता है, हे ईश्वर, यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी साल भर की कमाई रात में ही क्यों हवा बनकर उड़ जाती है? मैं तो कमा कमा कर थक गया हूँ। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं और कड़ी मेहनत दोबारा से करूँ। अब तो इस जीवन से मरना ही अच्छा है। ये कहकर निर्धन व्यक्ति ने अपनी धोती गले में डाली और आत्महत्या करने के इरादे से उसी वृक्ष से उसका दूसरा सिरा भी बांधने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे भले आदमी, जब मैंने इस धरती पर तुझे जीने के लिए भेजा तो उसी क्षण तेरा भाग्य भी लिख दिया, मगर तुम धन कमाते ही मुझे भूल गए। यह भी भूल गए कि कोई तुम्हें जन्म देने वाला भी है। धन कमाते ही तुम ईश्वर को भूल गए। ओ मूर्ख, केवल धन ही जीवन नहीं होता, फिर तुझे आत्महत्या करने का अधिकार ही क्या है? यह जीवन तुम्हारा नहीं, मैं ही जीवन देने वाला हूँ तथा मैं ही जीवन लेने वाला। तू सीधे अपने घर जा और चिंता छोड़। धन जोड़ने से मनुष्य को शांति नहीं मिलती। चिंता छोड़, तू जहाँ भी जाएगा तेरा भाग्य ही तेरे साथ जाएगा। जैसे ही निर्धन व्यक्ति घर पहुंचा, उसने देखा कि घर में बहुत रौनक है। सबने नए कपड़े पहने रखे हैं। निर्धन व्यक्ति को देखकर सब खुशी से झूम उठे। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये क्या है? मेरा तो सारा धन चोर ले गए, फिर तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आ गया? ये सुन उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक साधु बाबा दो थैलियाँ दे गए। वह कह रहे थे कि तुमने भेजी हैं। दोनों में ही रुपए भरे थे। इस बात को सुनकर निर्धन व्यक्ति को पता चला कि सब भाग्य का ही खेल है। वे अगर बदनसीब है तो उसके बच्चे तथा उसकी पत्नी तो खुश नसीब है जिन्हें धन की प्राप्ति हुई। इससे सीख हमें यह मिलती है कि मनुष्य को किसी भी हालत में भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही नसीब बनाता तथा बिगाड़ता है। बुरे वक्त से घबराकर आत्महत्या का अधिकार ईश्वर किसी को नहीं देता। कर्म करना मनुष्य का कार्य है, फल ईश्वर देता है। निर्धन व्यक्ति ने कर्म किया, बेशक उसके साथ भाग्य न था, पर कर्म के कारण जो कुछ उसने कमाया, भाग्य के विपरीत होते हुए भी कर्म रूपी साधु के माध्यम से कमाया हुआ सारा धन उसकी पत्नी और बच्चों के पास पहुंच गया। इसलिए कहा गया है कि भाग्य बड़ा की ईश्वर।
1: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे स्वरचित कहानी भाग्य बड़ा ईश्वर। कहानीकार थी ऋचा अरोड़ा। और अब आपको सुनवा रहे हैं कुछ फिल्मी गीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं सोनू निगम, आफताब सबरी और हसीम सबरी की आवाजों में मैं हूं ना, फिल्म का ये गीत।

सोनू निगम, आफताब सबरी और हाशिम सबरी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मैं हूं ना फिल्म का ये गीत, जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत निर्देशन था। और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत, लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में सुर फिल्म का ये गीत। निदा फाजली के बोल हैं, एम एम करीम का संगीत निर्देशन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं अब हिंदी में समाचार होंगे, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
1: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि

0: दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। संध्या 6:15 पर किसान श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें चर्चा के विषय होंगे पशुपालन से खेती की समृद्धि और खेती बचाओ अभियान में युवाओं की भूमिका। इसी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे भेंट वार्ता, गर्मियों में पशुओं के लिए संतुलित पोषण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रश्मि और इनसे बातचीत करेंगे सत्यव्रत सिंह। संध्या वंदन का प्रसारण समय होगा 6:45। संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज ब्रज वार्ता प्रसारित की जाएगी। वार्ता का विषय होगा मथुरा को पुरातात्विक स्वरूप। वार्ताकार होंगे चंद्रशेखर शर्मा। संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सहनी प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8 बजे आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का और रात्रि 8:20 पर देश गान प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत हम दिल दे चुके सनम फिल्म के कुछ गाने आपको सुनवाएंगे। रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने प्रसारित किया जाएगा। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे नाटक एक था राजकुमार। लेखक होंगे डॉक्टर ब्रज बल्लभ मिश्रा, प्रस्तुति सुतीश माथुर की होगी। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन। राग होगा जय जयवंती। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। किसान भाइयों, इस मंगलवार दिनांक 23/6/2026 को शाम 6:15 से हेलो किसान वाड़ी कार्यक्रम में इस बार का विषय है आज का एकीकृत खेती एवं मछली पालन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। किसान भाइयों, खेत बचाओ अभियान क्रम में खेती बाड़ी के साथ किसान की आय बढ़ाने, जल संसाधनों के प्रबंधन एवं अन्य आय स्रोतों के सृजन और जिले में मछली पालन की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी हेतु आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर

05 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। कार्यक्रम संबंधी सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देश का

इस स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का यह कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं मृणालिनी दीक्षित।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनान को मनालनी बहन की राम राम। भैया पशुपालन और खेती बाड़ी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हुए हैं। पशुपालन भी खेती को एक अभिन्न अंग है जो खेतन में समृद्धि लावे के साथ साथ किसान भैयान को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। और भैया खेती को लाभदायक बनाने के साथ साथ ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं, वाको आधार हुए है। पशुपालन से और खेती बाड़ी दोनों से एक दूसरे के पूरा कहवे के कारण बहुत ही लाभ हुए। पशुपालन कर रहे भैया बहनान को खेती में बहुत लाभ मिले हैं, आय को एक स्थायी स्रोत बन जावे। मुख्य फसल खराब होवे की स्थिति में पशुपालन किसान भैया एक मजबूत आर्थिक संबल के रूप में पशुपालन को कार्य हुए है। खेती बाड़ी में यह है कि भाई पशुपालन के लिए खर्चा भी कम हुए है, जो खेत में फसल बच गई है या खेत की जो फसल है उसमें से वो गाय अपने पूहन के काजे निकालने में है। जैविक खाद की उपलब्धता बनी रहे, पशु उनका गोबर और मूत्र खेतन के काजे सर्वोत्तम जैविक खाद मानो जावे है। जाए हम बर्मी कंपोस्ट भी कह में है, जैसे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़े है और रासायनिक खादन पर होवे वाला खर्च भी हमारो बच जावे है। भैया और भी सबसे बड़ी बात कि महिला सशक्तिकरण, हमारी जो ग्रामीण अंचल की बहनें हैं वो खेती ना कर पा रही हैं, यदि नहीं जा पा रही हैं तो घर के जब पुरुष चले जावे खेतन में तो हमारी भैया जो बहना हैं वो सब अपने घर में पशुपालन को कार्य कर सके हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों तो विशेष तौर से महिलाएं पशुपालन को कार्य करें भी हैं और एक उनके आय को प्रमुख स्रोत भी होए और एक साधन भी बन जावे हैं। और भैया पशुपालन के कार्य करने वाले भैया को साल भर यानी वर्ष भर, जैसे खेती में तो कही जाए जब फसल होगी जब बहन जी बिकेगा लाभ मिलेगी, पशुपालन करने वाले में भाई खेती के लाभ के साथ साथ पशुपालन से भी पूरे वर्ष भर आपको रोजगार मिल जावे है। वाको भाई दूध है मांस है बेच कर अपने आराम से पाको पालन कर सके हैं। भैया सूकर पालन करने वाले हैं, कम लागत में बकरी पालन करने वाले हैं, कम जगह में मुनाफे अधिक मिल जाए, सरकार की बहुत सारी योजनाओं को लाभ भी मिल जाए और भैया पशु बीमा कराकर किसान भैया और भी अधिक लाभ ले सकें। तो भैया ये तो रही आज की चर्चा पशुपालन से खेत में समृद्धि। और भैया

गर्मी बहुत तेज़ है और जहाँ गर्मी में अपना और अपने शरीर को पूरा ख्याल रखना चाहिए, बचाव करना चाहिए, लेकिन आनंद भी लेना चाहिए। तो गर्मी के महीना में कितना आनंद भी आवे या उसका आनंद लें या लोकगीत में।

0: भैया अभी आप आनंद ले रहे हैं मेघ श्याम के स्वर में जा लोकगीत को। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको जानकारी दे पाएंगे डॉक्टर रश्मि से। गर्मियों में पशुओं के लिए संतुलित पोषण, इनसे बातचीत कर रहे हैं सतव्रत सिंह।
1: गर्मियों में अगर पशुपालन का व्यवसाय प्रभावित होता है तो दो उसमें प्रमुख नकारात्मक कारक होते हैं जिनकी वजह से पशुओं को परेशानी होती है, या तो कोई रोग बीमारी की वजह से, या फिर हमको सही संतुलित चारा पशुओं को नहीं मिल पाता है, चाहे वो हरा चारा हो या संतुलित पोषण अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, वो हम नहीं दे पाते हैं। तो पशुओं में अक्सर करके ये शिकायत होती है कि गर्मी में पशुओं के दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। वास्तविकता ये है कि अगर संतुलित पोषण पशु को मिलता रहे तो शायद ये स्थिति नहीं आएगी। तो इसी संदर्भ में आज वेटनरी कॉलेज से हमारे साथ में जो पशुधन प्रसार विभाग है वहाँ से डॉक्टर रश्मि जी हैं। तो डॉक्टर रश्मि जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्मी के सीजन में पशुओं को अगर हम पोषण की बात करें तो क्या क्या मुख्य मुख्य परेशानियाँ और चुनौतियाँ होती हैं?
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण हमारे यहाँ पानी की कमी हो जा रही है। पानी की कमी से हरे चारे की कमी हो जाती है, जिससे हमारे पशु में कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर पशु बीमार होगा, कुपोषित होगा, तो उसमें अन्य बीमारियां उत्पन्न होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो हमारे पशुपालक को ये ध्यान देना चाहिए कि इस समय उन्हें शुद्ध पानी उपलब्ध कराएं और उसके साथ साथ संतुलित आहार जरूर दें, ताकि उनके उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार की कमी ना हो।
1: ये आपने बड़ा अच्छी बात बताई कि जैसे उनको शुद्ध पानी, मतलब साफ पानी उपलब्ध कराएं। अक्सर करके गर्मियों में क्या होता है कि पोखर और जो जल जमा हुआ जल होता है या रुका हुआ जहां जल होता है उसी में पानी पिलाने वगैरह के लिए भेज देते हैं, तो उससे रोग
2: जी सर
1: उनके विषाणु और
2: बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है।
1: तो एक तो उस चीज को हटाना है, और पोषण की आप बात कर रही थी
2: जी सर। एक आपको अपने पशु को संतुलित आहार देना चाहिए ताकि उसे बीमारी ना हो। संतुलित आहार हम उसे कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो और जो हमारे पशु की उत्पादन क्षमता और बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सके, इसको हम संतुलित आहार कहते हैं। और ये संतुलित आहार को हम तीन भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि एक सूखा चारा, एक दाना मिश्रण और हरा चारा। सूखे चारे में हमें बरसीम, जई, जौ, रिजिका इत्यादि हरे चारे आते हैं, और सूखे में हम पुआल, भूसे इत्यादि दे सकते हैं। और दाना मिश्रण में हम मक्का, चोकर, खनिज लवण, खली और उसके साथ साथ हमें नमक भी उस मिश्रण में जरूर मिलाना चाहिए, ताकि उसको हमारे पशु को सारा पोषक तत्व मिल सके।
1: यानी कि एक तो हरे चारे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना है, सूखा चारा उसमें मिला करके देना है, और आपने जिक्र किया कि खनिज लवण और पोषक तत्व तो ऐसे रूप में दिए जाएं जो कि एक संतुलित जो जरूरत है वो पूर्ति हो सके। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे किसान भाई ये बात समझें कि जो पोषक तत्वों की बार बार बात की जाती है

0: है, हर एक डॉक्टर ये बता दें भाई पोषक तत्व तो अच्छे से मिलने चाहिए। तो जैसे गाय है या भैंस है या कोई जैसे बैल हैं या जो काम करने वाले पशु हैं या जो छोटे पशु पशु हैं, बछड़े बच्चियां हैं, तो इनकी पोषक तत्व तो के रूप में जरूरतें क्या क्या होती हैं?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि संतुलित आहार का निर्धारण हमें पशु के शारीरिक भार और उसके दूध उत्पादन की क्षमता पर हम निर्धारित करते हैं। जैसे कि हमारे देश में अमूमन जो पशु का वजन होता है वो 400 से 450 किलोग्राम होता है और औसतन उसकी दूध की क्षमता 7 से 8 किलोग्राम तक होती है। तो ऐसे में हमें अपने पशु को सूखा चारा 3 से 4 किलोग्राम प्रतिदिन, उसके साथ साथ दाना मिश्रण 4 से 4.5 किलोग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। और हरे चारे को हमें उपलब्धता के अनुसार, जैसे आपको अगर बरसीम देना है, अगर उपलब्ध है तो 20 से 25 किलोग्राम तक देना चाहिए। मक्का और जई को थोड़ा कम मात्रा में देते हैं क्योंकि उसमें पानी थोड़ा कम होता है, चरी में ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी मात्रा हमें बढ़ाकर देना चाहिए। अतः हमें टोटल अपना सूखे चारे का 8 से 10 किलोग्राम तक संतुलित आहार अपने पशु को देना चाहिए जिससे कि उसकी उत्पादन क्षमता बनी रहे।
0: तो इसको हम कैसे, जैसे अब बरसीम है, रिचकाए तो जाड़े में तो थोड़ा मिल जाते हैं,
1: जी
0: गर्मियों में परेशानी इसकी ज्यादा
1: जी
0: रहती
1: अगर
0: है।
1: हरा चारा उपलब्ध ना हो तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। पशुपालक अपना जो दाना मिश्रण है उसकी मात्रा बढ़ा सकता है। 1 से 2 किलो तक हरे चारे के बजाय आप मिश्रण दाना दे सकते हैं, उससे भी उसको संतुलित आहार की पूर्ति हो जाएगी। जी
0: आपने जिक्र किया 4 से 4.5 किलो,
1: जी
0: अगर उसके हम पैसे की तुलना करें तो किसान भाई सबसे पहले गणना करते हैं कि इतने रुपए रोजाना के हिसाब से, तो इतना कौन खिलाएगा, इतने के तुम कहाँ से।
1: जी आपने सही कहा कि जो हमारी जो उत्पादन की कॉस्ट है सबसे ज़्यादा वह आहार पे के खाने पर ही होता है 70% तक। तो पशुपालक चाहे तो इस दाना मिश्रण को अपने घर पर आराम से बना सकता है जिसमें उसका कम लागत में ये मिश्रण तैयार हो जाएगा। जैसे आपको अगर 100 ग्राम का मिश्रण बनाना है,
0: 100 किलोग्राम,
1: 100 किलोग्राम का मिश्रण
0: हाँ
1: बनाना है तो आपको 32 किलोग्राम का चोकर और 35 किलोग्राम का मक्का कूटा हुआ चाहिए और 36 किलोग्राम आपको खली चाहिए। खली आप सोयाबीन की खली, सरसों की खली, मूंगफली की खली भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको 2 किलोग्राम खनिज लवण जरूर मिश्रण करना चाहिए और उसके साथ साथ 1 किलोग्राम नमक भी जरूर उसमें डालना चाहिए और अच्छी तरह से मिलाकर पशु के वजन के आधार पर उसको हमें प्रतिदिन देना चाहिए। मैं
0: 4 से 4.5 किलोग्राम,
1: जी
0: तो जैसे दूध देने वाले हैं और काम करने वाले हैं दोनों के लिए मात्रा कम ज्यादा हो जाएगी या एक जैसी रहेगी?
1: काम करने वाले, दूध देने वाले के लिए 1 किलोग्राम थोड़ा आप ज्यादा दे सकते हैं। ये देखा गया है कि ज़्यादातर पशुपालक जो है खनिज लवण और नमक नहीं मिलाते जिससे कि हमारे पशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है। तो पशुपालक ये ध्यान रखें, उनसे मेरा अनुरोध है कि खनिज लवण और नमक की मात्रा को उचित मात्रा में मिलाकर मिश्रण में जरूर दें।
0: तो ये जो खनिज लवण की जब आप बात कर रही हैं तो आपने ये तो कई चीज़ों का जैसे बाजार से ला के ऐसे भी इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मिला सकते हैं?
1: जी हाँ, इसमें बाजार से लाके जैसे उसमें कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, आयरन हो, जिंक हो, ये आपका एक खनिज मिश्रण जो है बाजार में उपलब्ध है उसको लाकर आप इसमें मिला सकते हैं।
0: और नमक उसमें
1: जी 1 किलो नमक आपको, अगर 100 किलोग्राम का आप मिश्रण बना रहे हैं तो 1 किलो नमक जरूर उसमें मिलाएं।
0: आजकल बाजार में जैसे जो आहार पशु आहार मिलते हैं तो उनकी गुणवत्ता और घर पे बनाई हुई की गुणवत्ता में तो घर वाला ज़्यादा बढ़िया रहता होगा?
1: जी हाँ, आप जो घर पे बनाएंगे वो आप अपने हाथ से बनाएंगे, सामने बनाएंगे और वो आप उसके टेम्परेचर, उसकी जो तापमान है उसका भी ध्यान रखेंगे और उसका स्टोर करने की जो आप भंडारण करने की जो व्यवस्था है वो भी आपको पता होगी जिससे आपका जो दाना मिश्रण है वो खराब नहीं होगा, जिससे घर का जो दाना मिश्रण है वो बाजार के अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें लागत भी कम लगती है जिससे किसान भाई उसे आसानी से अपना सकते हैं।
0: आपने भंडारण की बात की तो इसमें भंडारण जैसे 100 किलो हमने बनाया मिश्रण पूरा तैयार किया तो भंडारण में कोई खास सावधानी की जरूरत पड़ जाती है?
1: हाँ, आप जब आप अपना चारा दाना मिश्रण का भंडारण करें तो ये देख लें कि जहाँ आप भंडारण कर रहे हैं वहाँ नमी ना हो, पानी ना जा पाए। पानी अगर आ गया तो उसमें फर्मेंटेशन की वजह से उसमें आपके बहुत से परजीवी उत्पन्न हो जाएंगे जो कि हमारे पशु को स्वास्थ्य पर बहुत बुरा हानि देंगे, जिससे दूध क्षमता, कार्य करने की क्षमता, उनकी वृद्धि में भी रोक हो जाएगी।
0: यानी कि किसी तरीके से नमी

0: और ऐसे स्थान पर नहीं जिससे कि उसमें जो है ना सड़न पैदा हो सके,
1: जी सूखे
0: स्थान पर और
1: छायादार स्थान पर
0: रखना चाहिए। और इसमें जैसे 4 से 4.5 किलो आपने जो बताया है, तो सुबह शाम बांट के पूरे दिन में 3 बार में, 2 बार में?
1: जी जी चारा जो चारा है आपका और जो दाना है उस पशुपालक चाहे उसको 2 भागों में बराबर बांट ले। जैसे सूखा चारा है वो आप सुबह और शाम के टाइम दे। जैसे आपको अगर 3 किलो सूखा चारा देना है तो आपको 1.5 किलो सुबह और 1.5 किलो शाम को देना है। अगर आपको मिश्रण देना है जैसे आपको 4 से 4.5 किलोग्राम देना है तो 2 से 2.5 किलोग्राम आप दोहन से पहले सुबह के और शाम के दोहन से पहले आपको उसको देना है। ऐसे ही आपको हरे चारे को भी सुबह और शाम में देना है। जैसे आपको अगर 20 से 25 किलोग्राम चारा देना है तो 10 से 12 किलोग्राम आप सुबह और 10 से 12 शाम को दे सकते हैं। बीच में आपको चारा कम से कम देना है क्योंकि इस समय गर्मी के कारण हीट फर्मेंटेशन की वजह से पशुओं में गर्मी उत्पन्न ज़्यादा हो जाती है जिससे वो बहुत ही गर्मी का एहसास करते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता में भी कमी पड़ती है।
0: तो इसके लिए हमको थोड़ा
1: सावधानी बरतनी चाहिए। आपको सुबह और शाम में छायादार स्थान पर ही देना चाहिए और अपने पशुओं को छायादार स्थान पर बांधे और उसको उपयुक्त मात्रा में पानी जरूर दें।
0: पानी मतलब 2-3 बार
1: जी
0: तो साफ पानी पिलाना
1: साफ
0: वो।
1: पानी जरूर पिलाएं।
0: और जैसे आपने नमक की बात की थी, तो नमक अगर खनिज मिश्रण में नहीं, उसमें नहीं है घर में, जैसे बहुत से लोग तो केवल चोकर और खली वगैरह ही देते हैं, मिनोला वगैरह देते हैं,
1: जी
0: और ये मिश्रण घरों में किसान भाई कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नमक का अगर रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि
1: जी
0: पशु को
1: आयोडीन की कमी पूरी होगी और उससे अगर आपका पशु पानी नहीं पी रहा है तो वो नमक के कारण पानी ज्यादा पी पाएगा, उसको ज्यादा प्यास लगेगी और वो पानी ज्यादा पर्याप्त मात्रा में पी पाएगा।
0: तो नमक का पशु के आहार में शामिल होना
1: बहुत
0: बहुत
1: जरूरी
0: जरूरी
1: है।
0: है। अच्छा, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे दूध की बीमारी है, थनैला वगैरह, कैल्शियम की
1: जी
0: कमी खाने में पशु के आहार में अगर है, तो
1: जी
0: इस तरह की बीमारी, तो आहार में कैल्शियम और नमक दोनों की
1: दोनों
0: पूर्ति
1: की
0: होना जरूरी है।
1: जो जरूरी है।
0: तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए क्या-क्या करना होगा?
1: कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप पशुपालक भाई चूना का जो मिश्रण होता है चूरा वो अपने चूरा वो मिश्रण में मिला सकता है जिससे कि उसकी कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाए और दूध में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा में आएगी और आपका अच्छे क्वालिटी का दूध प्राप्त होगा।
0: तो किसान भाइयों, ये संतुलित आहार की मोटी मोटी बातें हैं जो डॉक्टर रश्मि जी ने बताई। गर्मी के सीजन में हरे चारे की परेशानी हो जाती है, लेकिन उसकी पूर्ति हम थोड़ा खनिज मिश्रण और चोकर और इन सब का अपना घर पे तैयार करके संतुलित आहार बनाएं और उसके माध्यम से करें। कैल्शियम यानी कि खड़िया और नमक,
1: नमक
0: इसकी पूर्ति करें और साफ पानी पशु को दें। साथ ही साथ एक सलाह हम अपने किसान भाइयों को, जो चरी किसान भाई करते हैं और सीजन में पानी की कमी हो जाती है, तो पहली कटाई जो है वो जब पशु को खिलाते हैं उसको, तो कभी कभी पशुओं को जहरवाद की परेशानी हो जाती है,
1: जी
0: इसीलिए अगर चरी आप काट रहे हैं तो पहली कटाई जो है ना पानी देने के बाद में ही
1: जी
0: काटनी चाहिए, जिससे कि जो चरी में एक जहरवाद बनता है गर्मी में
1: जी
0: वो ना बने,
1: ना बने
0: तो इसका विशेष ख्याल रखें। अक्सर करके क्या होता है, सूखे खेत से जब चरी काट के पहली बार हम काट लाते हैं और पशु खिलाते हैं, तो पशु को अफरा और उसमें एक विषैला पदार्थ बन जाता है, उसका भी ख्याल रखना है। तो पहले पानी लगाएं खेत में
1: जी
0: और जब पानी लग जाए उसके बाद 2-3 दिन के बाद में उसकी कटाई करें, पशु को तब खिलाएं तो ज़्यादा लाभकारी होगा। आपने जो जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद
2: भैया। अभी आप जानकारी ले रहे डॉक्टर रश्मि से, गर्मियों में पशुओं के लिए संतुलित पोषण, इनसे बातचीत कर रहे सतव्रत सिंह। कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए हम आपको आनंद दिला रहे हैं आशु रावत के स्वर में जालू गीत को।

भैया अभी आप आंसू रावत के स्वर में आनंद ले रहे जा लोग गीत को चलते चलते अपने भैया को एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भैया जहाँ मंगलवार यानी कि कल 23 तारीख को संध्या 6:15 पर 30 मिनट की अवधि वालों हेलो किसान वाणी का

कार्यक्रम होगा। जावार को विषय है एकीकृत खेती एवं मछली पालन। प्रिया, खेत बचाओ अभियान क्रम में खेती बाड़ी के साथ साथ किसान की आय बढ़ावे के काजे, जल संसाधनों के प्रबंधन एवं अन्य आय स्रोतों के सृजन और जिले में मछली पालन की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी देवे के काजे हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे।

डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। हमारा टेलीफोन नंबर है भैया 25 30 135, कोड लगाना अवश्य ध्यान रखें 0565 25 30 135 पर फ़ोन करके, या हमारा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75। भैया एक बार फिर से सुन लें 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर जा संबंध में आप सीधे बातचीत कर सके हैं। भैया फिर से ध्यान रखियो, संजा को 6:15 पर डॉक्टर नित्यानंद पांडे। सूचना समाप्त हुई। इन्हीं जानकारी के साथ अब हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम संपन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मृणालिनी दीक्षित ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

आशा भोसले के स्वर में अभी आप सुन रहे थे नरम गरम फिल्म से ये भक्ति रचना। आइए सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में ये भक्ति रचना।

लता मंगेशकर और साथियों के सुरों में अभी आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से ये फिल्मी भजन। आइए आप सुनते हैं गीता दत्त के स्वर में जोगन फिल्म का ये भजन।

गीता दत्त के स्वर में जोगन फिल्म से ये भक्ति रचना सुन रहे थे। कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं चंद्रणी मुखर्जी के स्वर में। फिल्म का नाम है गोपाल कृष्ण।

चंद्रणी मुखर्जी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे गोपाल कृष्ण फिल्म का ये भजन। रचना और संगीत रविंद्र जैन के थे। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की मथुरा

0: वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 MHz पर। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए ब्रजवार्ता। मथुरा को पुरातात्विक स्वरूप, वार्ताकार हैं चंद्रशेखर शर्मा।
5: विश्व में प्राचीनतम पुरातात्विक धरोहर के अंतर्गत तीन नगरीन के नाम आवे हैं। इन तीनों नगरीन की सांस्कृतिक विरासत आज हू जीवित है। ये नगरीयें पहली काशी, दूसरी मथुरा और तीसरी है एथेंस। संयोग ते ये तीनों नगरी देव नगरी के रूप में जानी जावे हैं, क्योंकि काशी देवन के देव महादेव की अत्यंत प्रिय नगरी है। मथुरा हमारे आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। एथेंस वीरता और सद्गुणन की देवी एथेना की जन्मभूमि है। यूनान की राजधानी को एथेंस नाम देवी एथेना पे ही है। सुविज्ञ श्रोताओं, इन तीन प्राचीनतम नगरीन में थे केवल मथुरा नगरी को ही पुरातात्विक स्वरूप संक्षेप में बता रहे हूँ। मथुरा के राजकीय पुरातत्व संग्रहालय में वाल्मीकि रामायण से उद्धृत संस्कृत भाषा में एक शिलालेख सुरक्षित है। यह शिलालेख को अनुवाद या प्रकार है। इक्ष्वाक वंश में जन्मे श्री राम के लघु भ्राता शत्रुघ्न ने मधु नाम के राक्षस के पुत्र लवणासुर को संहार करके मधु वन की पुनर्स्थापना करी। साहित्यिक परंपरा के आधार पर या नगरी को मधु नाम के राक्षस ने ही बसायो हतो। या नगरी को नाम मधुवन संभवत है यालिए पड़ो, चौंके या क्षेत्र में तब हु वन उपवन की अधिकता हती। वृक्ष फल फूलन ते लदे रहते, मधुमक्खी बिनमें ते मधु विपुल मात्रा में संचित करती। कालांतर में जे ही मधुवन नाम मथुरा है गयो। ईसा पूर्व चौथी सती में यूनान के सेनापति सेल्यूकस को राजदूत बनके मेगस्थनीस भारत आयो। वो 5 वर्ष तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहो। एक जिज्ञासु इतिहासकार हेवे के कारण वाने मथुरा नगरी को हु भ्रमण करो। श्री कृष्ण की जन्म स्थली हेवे के कारण जिन नगरी वाय बहुत आकर्षक लगी। मेगस्थनीज ने यहाँ जोमुना नदी में व्यापारिक जलपोत हु देखे। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में यमुना को जोमुना लिखो है। श्री कृष्ण की अद्भुत गाथा को बाने बड़े मनोयोग ते सुनो और समझो। श्री कृष्ण की वो गाथा मेगस्थनीज को इतनी मोहक लगी कि या गाथा को वो अपनी स्मृति बनाए के यूनान ले गयो। श्री कृष्ण की वह अद्भुत गाथा को मेगस्थनीज ने अपने यूनानी नायक हेराक्लीज के चरित्र में आरोपित करके यूनान के पौराणिक साहित्य को समृद्ध बनाया। नायक हेराक्लीज के माध्यम से एक सच्चे इतिहासकार के नाते सफलतापूर्वक जिस संकेत दियो है कि हेराक्लीज और कोई नाय स्वयं श्री कृष्ण है। हेराक्लीज इज नन अदर देन श्री कृष्ण। या प्रकार श्री कृष्ण में समाहित सत्य सनातन धर्म विश्वव्यापी सिद्ध है गयो। वायी सनातन धर्म की तीन शाखा वैष्णव धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म ने अपने संगम ते मथुरा नगरी को पवित्रतम बनाए।

0: बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के आधार पर बुद्ध द्वैबार मथुरा भ्रमण पे आए। अपने दूसरे भ्रमण में बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के संग उर्मुंड पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत पर चढ़े। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य को देख के वो बहुत ही प्रसन्न भये। तब बिन्ने आनंद को संबोधित करते भये एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करी। प्रिय आनंद, मेरी मृत्यु के 100 वर्ष बीतवे पे मथुरा नगरी में एक बालक जन्म लेगो। वो मेरे धर्म में दीक्षित है के उपगुप्त कहलावेगो। वो मेरे ही समान रूपवान प्रतिभावान और श्रेष्ठ धर्मोपदेश होएगो, पर वाके शरीर पे मेरे जैसे मांगलिक लक्षण नहीं होंगे। यही कारण वो अलाक्षण बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठित होएगो। भगवान बुद्ध की वो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध है गई। वाई उपगुप्त को प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने अपनो धर्म गुरु बनायो। देश विदर्शन में जितने चैत्य बिहार और स्तूप बुद्ध की स्मृति में अशोक ने बनवाए वो सब उपगुप्त के ही संरक्षण और मार्गदर्शन में बनवाए। सम्राट अशोक की यश पताका फहरावे वारो मथुरा नगरी में जन्मियों जी उपगुप्त ही हो। जैन धर्म को मथुरा नगरी ते घनिष्ठ संबंध रहे हुए जैन धर्म के 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली मथुरा नगरी है। बिनकी स्मृति में यहाँ एक विशाल स्तूप को निर्माण भयो। ये स्तूप इतना विशाल और भव्य हो के जाय देव निर्मित कहो जातो। स्थानीय कंकाली टीले ते प्राप्त या स्तूप के कला रत्न आज लखनऊ के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को जन्म ब्रजमंडल के बटेश्वर में बताया जावे। जैन मान्यता के आधार पर नेमिनाथ श्री कृष्ण के ताऊ समुद्र विजय के पुत्र है। श्री कृष्ण को अहिंसा को उपदेश नेमिनाथ ने दियो। भगवान महावीर ने हूँ मथुरा नगरी में निवास करो। जैन धर्म के अंतिम केवली को निर्माण मथुरा नगरी में ही प्राप्त भयो। इन सब आधारण पे निश्चित रूप से कहो जा सके है कि पुरातत्व की दृष्टि से मथुरा नगरी वैष्णव धर्म बुद्ध धर्म और जैन धर्म की पवित्र संगम स्थली रही है।
1: मथुरा को पुरातात्विक स्वरूप, अभी आप सुन रहे थे ये ब्रजवार्ता, वार्ताकार थे चंद्रशेखर शर्मा। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए डोरी लाल के गोला के गाए ये ब्रज लोकगीत।

डोरीलाल गोला के गाए इसी ब्रज लोकगीत के साथ ही ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा आपसे थोड़ी ही देर में।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: TLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सुगंध क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे।

0: पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 92 स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मरने वाले छात्रों की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आग इमारत के अंदर लगी और तेजी से फैल गई, जिससे छात्र अंदर फंस गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीमें, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य में जुट गए। श्री पाठक ने बताया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं, कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी महोदय मौके पर हैं, और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है, हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही केजीएमयू पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जाना और समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई नेताओं ने आग की घटना में जनहानि होने पर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के लाभार्थियों को चाभी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को भी पछाड़ दिया है।
3: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है, और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2000

0: 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को कल पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेट भी उपस्थित थीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए हर सेक्टर में। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे सीबीजी प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेसवे ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ ही लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य, व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने के लिए अगले माह प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कारण गोंडा रूट होकर चलने वाली कई ट्रेनों को 7 से 11 जुलाई तक निरस्त किया जाएगा। वहीं कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे। 6, 7 और 10 जुलाई को छपरा मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हुई। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जीआरएफ, सहायक प्रोफेसर के पदों और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। उसके एक फरार साथी की तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में

0: आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 52वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
2: चलो,
3: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। पेश है प्रोग्राम शाम सुहानी। शाम सुहानी प्रोग्राम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं आपका रेडियो हमसफर अरविंद कुमार। श्रोताओं, दिन भर की व्यस्तताओं के बाद ये वेला है कुछ सुकून के पल बिताने की, मधुर स्मृतियों को संजोकर संगीत के सुरों में खो जाने की। इस कार्यक्रम में हम आपको आपके संदेशों और आपकी पसंद के गीतों के साथ एक उस सफर तक ले जाते हैं जहां पर आपके आत्मीय, मधुर और स्नेह भरे संदेश में प्राप्त होते हैं, और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के कुछ फिल्मी नगमे। यदि आप भी अपने प्रिय फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9412225575। तो आइए आरंभ करते हैं आज के इस संगीतमयी यात्रा का पहला पड़ाव। मन की वीणा के तारों पर जब यादों के स्वर झंकृत होते हैं, भावों की सरिता बहती है और गीत स्वयं मुखरित होते हैं, संगीत की इसी मधुर छाया में प्रेमिल अनुभूतियों का संसार लिए आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो बरसों से श्रोताओं के हृदय में बसा हुआ है। अशोक कुमार और आशा भोसले की आवाजों में खूबसूरत फिल्म से गुलजार की रचना।
8: राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी।

अशोक कुमार और आशा भोसले की आवाजों में खूबसूरत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गुलजार की रचना थी, आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन था। और इस गीत को सुनने के लिए जो संदेश हमें मिले हैं, पेपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का संदेश, मलकापुर महाराष्ट्र से सोपान तड़े, नारायण इंगले, आशीष मुर्रेकर और पीएस नुहानकर, निर्मला और विशाल नुहानकर का भी संदेश इसमें शामिल है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का संदेश, आदर्श नगर बठिंडा से इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रमजीत, अनमोल प्रवीण, निखिल भाटिया, नीति और महरीन भाटिया। बलहारी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांगन। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती, ओम कुमार और गौरी। दत्तरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, नशा सभी हाना सोरेहान खान। रंगनी छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सनावद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्रे, शफी इद्रेश, नूर मीना, इरफान और कासिम मीना। सैयद आलम हाशमी, गुलराज हाशमी, सलमराज, असद अरहम और इनके परिवारीजन अजमेर शरीफ से इन्होंने संदेश भेजा है। रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और डीकेश साहू। बुलढाणा महाराष्ट्र से जुड़े ही नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे। सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, प्रथमेश, सर्वत, प्रणाली, सानवी और हर्षदा देशमुख। बागपत से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया। दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मेघलानी, बबीता मेघलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष शिवन्या और अनु गोस्वामी। सुरों की ये महफिल यूं ही सजती रहे, दिलों की दूरियां गीतों से मिटती रहे, हर फरमाइश में चल के अपनत्व का रंग, हर धुन में नई यादें सिमटती रहे।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में दिल ने पुकारा फिल्म का गीत आपने सुना। इंदिवर की रचना थी, कल्याण जी आनंद जी का संगीत निर्देशन था। महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से, सोनाली दुबे मोनिका रानू मुंगेली छत्तीसगढ़ से, मोहम्मद इसहाक खतीजे बेगम, मोहम्मद अल्ताफ आफरीन कौसर, मोहम्मद अशफाक और नीलोफर फातिमा, अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता कुमारी प्रियाली हागोड़े और पार्थ हागोड़े, इस गीत को सुनने के लिए हमें संदेश भेजा था नसवाल चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल ने वृत्ति शीर स्वागर और संजय चौहान ने, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति और ओजस्वी यादव का संदेश, देवशंकर तामुरिया जय तुषार तामुरिया, डोली पूजा प्रभा देवी अलकबीर और राधिका बालोद छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सर नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम और अदीब, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभी राधिका अनिष्का और तन्मय का संदेश में मिला है, श्रीरामपुर से

अशोक दलित, सविता, अनिकेत, रोहिणी और इनके ढेर सारे साथीगण इनसे जुड़े हुए हैं। सरगम बाजार छत्तीसगढ़ से नसीम मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान और फैजान। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, बसंतराव भोजने, पीएस नुहानकर और तुषार करंगले का संदेश। भोंगीर तेलंगाना से जुड़े हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फैजान लल्ला, फरहान लल्ला, समयरा अजमिन गुड़िया। गांधी नगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला विशाल और निशा। सहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष, चैतन्य और मेघा। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।

निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत और इनके ढेर सारे परिजन से सुन रहे हैं। ललितपुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने संदेश भेजा है। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता की सीता, सुवर्णव आनंद, सत्यमानंद। यवतमाल के श्रोता हैं राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी। बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेश, उमेश, प्रमिला वंचोर, चुतुर्ग छत्तीसगढ़ से। सहरसा बिहार से जुड़े हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश विद्या, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी सक्षी, अच्छीलाल बुल्कीवाली और फलना झा। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल बेंगलुरु से। कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा का संदेश मिला है। कुशेश्वर कांति गुप्ता, राजनगर कांति निकेतन से रुद्र गुप्ता, जनकधाम संतोष गुप्ता, सरोज गुप्ता और अरुण शर्मा। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया का संदेश में मिला है। राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप नायक, राजबहादुर, शंभूसा, मेनका और गोदावरी। मधुबनी बिहार से राजकुमार गुप्ता, विनीता, रविराज, गौरव कुमार और इनके ढेर सारे साथीगण। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा, कोमल, किरण और कपिल मेहरा, इनके साथ हैं कुणाल मेहरा। श्रोतो, संगीत की इस सुहानी यात्रा में अब एक और पड़ाव, एक और मधुर एहसास आपका इंतजार कर रहा है।

मोहम्मद रफी की आवाज में काला बाजार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र की रचना थी, एसडी बर्मन का संगीत निर्देशन था। श्रोताओं, फरमाइशों का सिलसिला जारी है। बहुत सारे संदेश लगातार हमें मिल रहे हैं, बहुत तीव्र गति से अभी भी संदेश हमें मिल रहे हैं। चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगाहत परवीन अब्बासी, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहन, अरजान अबान और इनके परिवारीजन। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार, गंजी डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश, डॉक्टर दबीरुल हसन और इनके परिजन। गावना थाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सिंह, प्रभा देवी सिंह, लक्की विक्की, नानू रविंद्र, रौनक सिंह। नागपुर के श्रोता हैं प्रकाश रामहड़े, भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ, निषाद, प्रकाश, बल्लू, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा। पहाड़गंज मलताली ढाना से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम कुमार और साई गायकवाड़। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता रजत और मयंक भाटिया। निजामाबाद तेलंगाना से अजीज मतीन, शादिक चंद, फारूक। समतानगर काष्टी से लक्ष्मण जगताप, श्रेया शिंदे और निशांत जगताप। माठल विठल सुरशे, सुषमा, परिधि और मायरा। वाशी महाराष्ट्र से उन्होंने संदेश भेजा है। उरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आजना और कैफ अंसारी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता हुजा। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका, सोनू कुमार और अर्चना कुमार। डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रबारी का संदेश मिला है। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और इनके परिजन। वनखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। मलोट पंजाब से संदेश मिला है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू का। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चींपा, कपिल चींपा, ईशान और पूजा परिहार। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजिता केशुरी धन और तुलसी मस्किन। राजू माठे, गजानन माठे, संजय माठे, ज्ञानेश्वर और प्रकाश दांगड़े बुलढाणा महाराष्ट्र से जुड़े हैं। नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता सूरज और पी आर जैन। फाजिलका पंजाब से क्रियांश बगड़िया, योगेश, ओम, गरिमा, रजत और मनीष चौधरी। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी जय, श्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टवूल, पी बी कोलो थे। कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल अजीत और आयुष नंदनी, उनके साथ हैं इनके ढेर सारे साथीगण। दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, अशोक येले। अकोला से अरुण, बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। श्रोताओं के

0: स्नेहिल संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं एक और यादगार फिल्मी नगमा। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं। प्रेम कहानी फिल्म के लिए गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।
1: कहा आपका ये बजा ही सही के हम

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम कहानी फिल्म का गीत आपने सुना और इस गीत के साथ ही शाम सुहानी प्रोग्राम अब अपने अंतिम चरण पर पूरी तरह से इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अपने दोस्त अरविंद को दीजिए अनुमति। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अनुराधा श्रीराम या रहमान, सुजाता, मोहन और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे थे ताल फिल्म का यह गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत यार रहमान का था। आइए अब सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत, जिसे गाया है उस्ताद सुल्तान खान, शंकर महादेवन और कविता कृष्ण मूर्ति ने। महबूब के बोल हैं इरशाद इस्माइल दरबार का संगीत निर्देशन।

उस्ताद सुल्तान खान शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे हम दिल दे चुके सनम फिल्म के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल को। फिल्म का नाम है बाजीराव मस्तानी। सिद्धार्थ गरिमा के बोल हैं, संजय लीला बंसाली का संगीत।

पंडित बिरजू महाराज और श्रेय घोषाल को आप सुन रहे थे। बाजीराव मस्तानी फिल्म के लिए सिद्धार्थ गरिमा की रचना थी, संजय लीला भंसाली का संगीत निर्देशन था। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत, फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, करसन सरगटिया और साथियों की। महबूब की रचना, इस्माइल दरबार का संगीत।

हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गीत आपने सुना। कविता कृष्णमूर्ति, कृष्ण सरगढ़ी और साथियों की आवाजें थी। इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देश गान।

संवेद स्वर में अभी आप सुन रहे थे सत्यकाम विद्यालंकर की ये देशभक्ति परक रचना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति चंद्रदत्त इंदु की देशभक्ति परक रचना संवेद स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देश गान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। इस मंगलवार यानी दिनांक 23 जून 2026 को शाम 6:15 से शाम 6:45 के मध्य हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में इस बार का विषय है एकीकृत खेती एवं मछली पालन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। किसान भाइयों, खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में खेतीबाड़ी के साथ किसान की आय बढ़ाने, जल संसाधनों के प्रबंधन एवं अन्य आय स्रोतों के सृजन और जिले में मछली पालन की उन्नत किस्मों की बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर नित्यानंद पांडे, डीन फिशरीज कॉलेज वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा। कार्यक्रम में सहभागिता के लिए हमारा टेलीफोन नंबर होगा 0565-253-0135। संदेश के माध्यम से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा 9412225571।

सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से कार्यक्रम एक ही फिल्म से। अभी अभी आपने सुना फिल्म उमराव जान का काल जय गीत। श्रोताओ, वर्ष 1981 में प्रदर्शित फिल्म उमराव जान भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में गिनी जाती है जिन्होंने साहित्य, संगीत और अभिनय को एक साथ नई ऊंचाइयां प्रदान की। मिर्जा हादी रुसवा के प्रसिद्ध उपन्यास उमराव जान अदा पर आधारित ये फिल्म अवध की तहजीब, शायरी और संगीत की खूबसूरत तस्वीर प्रस्तुत करती है। फिल्म की नायिका अमीरन परिस्थितियों के कारण लखनऊ के एक कोठे पर पहुंच जाती है और वहीं उमराव जान के रूप में एक प्रतिष्ठित शायरा और नर्तकी बनती है। जीवन में प्रेम मिलता है, बिछोह मिलता है, सम्मान भी मिलता है और अपमान भी। इन्हीं अनुभवों के बीच उमराव जान का चरित्र मानवीय संवेदनाओं का एक जीवंत दस्तावेज बनकर उभरता है। श्रोताओ, खय्याम के मधुर संगीत, शहरयार के बेमिसाल शायरी और आशा भोसले की सुमधुर आवाज ने इस

फिल्म के गीतों को अमर बना दिया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और लोकप्रिय गीत। ये गीत उमराव जान की उस मन स्थिति को व्यक्त करता है जब जीवन की राहों में निराशा और अकेलापन गहरा जाता है।

श्रोतो, फिल्म उमराव जान की कहानी आगे बढ़ती है और उमराव जान के जीवन में प्रेम और प्रतीक्षा का एक नया अध्याय खुलता है। लेकिन अक्सर जीवन में जिसकी तलाश होती है वही सबसे दूर निकल जाता है। इसी भाव को अत्यंत मार्मिक शब्दों में व्यक्त करता कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि उमराव जान के गीत केवल फिल्मी गीत नहीं है, बल्कि ये भावनाओं, शायरी और भारतीय संगीत परंपरा की अनमोल धरोहर है। प्रेम की नजाकत, आत्मसम्मान की गरिमा और जीवन की कसक इन गीतों में सहज रूप से दिखाई देती है।

0: आशा भोसले की आवाज़ में उमराव जान फिल्म का यह गीत आपने सुना, शहरयार के बोलते खय्याम का संगीत। और इसी के साथ फिल्म उमराव जान के यादगार गीतों पर आधारित हमारी ये संगीतमय प्रस्तुति एक ही फिल्म से यहीं संपन्न होती है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट

पहले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे।

0: प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड

0: शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी

0: प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में हमराज फिल्म का गीत आपने सुना। सुहाने तराने कार्यक्रम की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अलबेला से। आवाजें हैं चितलकर और साथियों की।

अजल की फरमाइश कभी पाउडर की फरमाइश कभी सर्कस की जिद है और कभी

चितलकर की आवाज में अलबेला फिल्म का गीत आपने सुना। सुहाने तरह ने कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश आपके रेडियो सेट पर मोहम्मद रफी की आवाज में हमराही फिल्म का ये गीत।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में हमराही फिल्म का गीत आपने सुना। हजरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन था। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा अब से कुछ ही पलों में।
1: साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है, बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत

0: रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इससे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज़ किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहाँ पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: हाँ, सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ है, लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: नमस्कार,
0: सवाल पूछे अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
1: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम वो 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं, और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15

0: 17,000 रुपये तक की राशि दी जाती है,
1: तो 6 महीने के बाद और फिर छः
0: छः
1: महीने
0: महीने के
1: के
0: दो
1: बाद।
0: दो बार में दिया
1: जी
0: जाता
1: जी
0: है।
1: आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार
1: नमस्कार
2: जी। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
0: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं, वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में, जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे, तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है, तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और ख़ासकर जैसे अगर कोई कंपनी है अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सब के लिए क्या प्रावधान है?
0: कंपनी के लिए दो तीन चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है, तो पहला तो उनका कवरेज ज़रूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में। साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं, जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं, जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की, तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20,000, तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है, तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है। और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा, अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेंड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
1: ये भी डीबीटी के थ्रू ही,
0: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
1: जी हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हाँ जी थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
3: जी सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती है, क्या
1: पात्रता क्या होनी चाहिए? हाँ,
4: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपके संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
1: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज़ हैं या 50 से ज़्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
0: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक ये है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है।

0: वो है हमारे ईसीआर पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो ना केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, दो आदमी होंगे या पांच आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए।
1: हाँ
0: तो वो
1: वो
0: लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कॉम्पोनेंट है हमारा, कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया, बेसलाइन जिसे हम
1: जी
0: कहते
1: जी
0: हैं। तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है, अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20
1: बीस
0: हो
1: हो
0: गया।
1: गया।
0: तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट
1: तो
0: करते
1: छोटी
0: हैं।
1: छोटी चीजें देखी जाएंगी
0: जी
1: और तभी इंसेंटिव के आप पात्र
0: जी
1: बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी।
2: बिहार से जुड़े हैं हिमाचल
1: हिमांशु जी, आप
2: जी
1: आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दे।
3: मैडम कर दिया, माना
1: जी जी
3: कर दिया कर दिया कर
1: सवाल
3: दिया कर
1: पूछे।
3: दिया। मैडम मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ एनआईसी मुजफ्फरपुर में, ठीक है,
1: जी
3: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के ये मेरा जो है ईपीएफ नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग लेकिन पहले से जो कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो ईपीएफ कटा हुआ है, तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
1: जी पुणेंद्र जी
0: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से ईपीएफ से जुड़े हुए हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है, अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं, तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से तो एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो,
4: हाँ जी मैम नमस्कार,
1: नमस्कार
4: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र से।
1: जी जी
4: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे ईपीएफओ में जो नई कंपनियां होती है जैसे ज्वाइंट होते हैं, लेकिन एम्प्लॉय का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू।
1: जी प्रणय जी,
5: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉय से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है पीएफ जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर पीएफ जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो आपका जो पासबुक है, आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है। तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
6: जी नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका पीएफ जो जो कटता है या पीएफ का जो इतना संभाग उनमें रहता है कृत, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे? जी
0: हाँ
6: उसे मैं
0: अमित
6: पहले
0: जी,
6: कार्ड।
0: अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा, तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर है उसके उसके थ्रू ओटीपी से आप रीसेट कर सकते हैं।

0: और जितने जगह पे भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही। आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है, अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफ़र करवा लें, ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
1: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते, यूएएन नंबर या अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
0: अभी हाँ प्रणीत,
2: सो जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएन

0: ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएएन जनरेट करते थे। तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे। तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना नहीं है, बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
1: जी, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
2: जी नमस्ते
1: नमस्ते
2: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते
1: जी।
3: नमस्ते
2: जी, मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
3: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूँगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहाँ पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है। उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है।
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
3: और
1: तो
3: कोई
1: कोई
3: दस्तावेज
1: दस्तावेज
3: नहीं
1: की
3: चाहिए।
1: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें, जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
3: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज़ पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहाँ रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉय वहीं पर रह जाएँ। एम्प्लॉय को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉय अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहाँ पे एम्प्लॉयर को भी फ़ायदा हो रहा है, एम्प्लॉई को भी फ़ायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर हैं तो एम्प्लॉई के अगेंस्ट हैं, एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट हैं। यहाँ इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात हो रही है।
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा।
3: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो
1: बिल्कुल
3: एक बहुत अच्छी स्कीम है
1: जी,
3: जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर
1: कर
3: रही
1: रही
3: है
1: है
3: और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे
1: और सस्टेन करें
3: और सस्टेन करें वहां 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा
1: जी। दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
4: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
3: नमस्कार
4: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो प्लेयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके? और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है?
0: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है। तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज़ को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसे ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
1: सैलरी का पूछा उन्होंने।
0: सैलरी हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए। तो 1 लाख से जो नीचे है उनका, जिसका ग्रॉस सैलरी है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
0: तो इसमें जो

0: सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ हम लोग तीन स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये पीएमवीबीआरवे के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये तीनों स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पेंशन एक बहुत बड़ा चीज़ है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन
1: जी
0: पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी, उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कॉम्पोनेंट है लाइफ इंश्योरेंस का।
1: जी पुणेंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
2: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है। जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेस लाइन से, या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉई तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर वहाँ पे रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो रादर एम्प्लॉयर को अभी ज़्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉय के लिए भी फ़ायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फ़ायदा,
1: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों
2: विन
1: के
2: विन
1: लिए।
2: है। जी
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
3: नमस्कार सर,
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
3: मैं बसंतपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर
1: जी,
3: मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर, नया नया स्तर से। दूसरा है सर,
2: जी
1: जी
2: पूछें।
1: जी मोहन जी,
3: जो सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
1: जनरलाइज सवाल
2: हाँ,
1: पूछाना नहीं
2: एक
1: उन्हें।
2: जनरलाइज सवाल है। बहुत सारी योजनाएं तैयार
1: जी
2: की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए, ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में, एमएसएमई क्षेत्र को लेकर जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश के जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
0: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टेब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके
1: जी
0: लिए मैंडेटरी है। बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसमें बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए, उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उनको केवल 2 एम्प्लॉयज, एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है। तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
0: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर्स जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने, हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
2: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहाँ पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में, कि फेस ऑथेंटिक

0: ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहाँ हमारे साथ, सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहाँ आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
2: छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे
2: जी, भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर हैं?
1: कौन कौन से
0: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है। तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है
1: जी। अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
3: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
0: मैम, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
0: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफ़ी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए नाटक एक था राजकुमार। लेखक हैं डॉक्टर ब्रज वल्लभ मिश्रा, प्रस्तुति सतीश माथुर की है।

0: हो गई हैं।
1: महारानी नहीं सरंध्री, महारानी का मातृत्व मूर्छित हो गया है।
0: महाराज, माँ का हृदय वकुल पुष्पों से भी अधिक कोमल होता है, उसके मोह तंतु पद्म कलिका से भी अधिक सरल होते हैं। महाराज, जिस माँ का सुंदर सुकोमल राजकुमार राज से वैभव त्याग कर वनवासी जीवन ग्रहण कर ले, माँ के प्रेम पगे स्नेह की स्वर्ण श्रृंखला को शिथिल कर अनजाने वनों की बीहड़ गहराइयों में जीवन व्यतीत करने चलते, उस माँ के हृदय की सरिता का शुष्क हो जाना स्वाभाविक ही है। महाराज,
1: राजकुमार के वैराग्य ग्रहण करने की पीड़ा का प्रभाव क्या पिता के हृदय को नहीं होता?
0: आप पुरुष हैं आर्य, आपके पास पौरुष और पराक्रम की प्रखर शक्ति है। स्त्री कोमल होती है, पुत्र का प्राथक्य उसके लिए प्रहारवत है जो अपने क्रूर आघात से उसको अवसन्न बना देता है।
1: सत्य है सैरंध्री, किंतु नियति की अदृष्ट लिपि आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, ना ही उसके विधान को कोई परिवर्तित कर सका है।
0: ये आप पे वचन है महाराज, किंतु नियत के क्रूर प्रहार की पीड़ा के प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है।
1: पीड़ा के प्रभाव को कम कैसे सैरंध्री?
0: महारानी इस समय पुत्र बिछोह के कारण शोकाकुल है, उनकी अधीर स्थिति आप ही परिवर्तित कर सकते हैं।
1: कदाचित मैं त्रिशला के शोक का संवरण कर सकूं तो प्रस्तुत हूं, किंतु उनका गया हुआ राजकुमार मैं वापस लौटा कर नहीं ला सकता सैरंध्री।
0: निसंदेह आर्य, गए हुए राजकुमार को आप वापस नहीं ला सकते, किंतु महारानी की वेदना को अवश्य कम कर सकते हैं। उनके संतप्त और दग्ध हृदय का शीतोपचार कर उन्हें सांत्वना का संबल प्रदान कर सकते हैं। महाराज,
1: अवहित हूं सैरंध्री, मार्गदर्शन करो।
0: दासी मार्गदर्शन की योग्यता तो नहीं रखती आर्य, निवेदन अवश्य कर सकती है।
1: अभिप्रेत स्पष्ट करो सैरंध्री।
0: महारानी का हृदय संप्रति दो आघातों की करुणा से आप्लावित है। नारी हृदय की स्थिति को एक नारी ही समझ सकती है। महाराज, महारानी की आंखों के समक्ष इस समय दोष का कोई साधन नहीं। स्त्री का सुख उसका पति और पुत्र होते हैं। महाराज, पुत्र शोक के अभाव को पति का स्नेह सहज ही शांत कर सकता है। कदाचित आप अंतःपुर में पधारकर अपनी स्निग्ध वाणी का अमृत उनके दग्ध हृदय पर छिड़के उन्हें सांत्वना प्रदान करें तो निश्चय ही उनके हृदयाग्नि का ताप शमित हो सकता है। महाराज,
1: वचन की विदिग्धता के साथ तुम व्यवहार नीति के कौशल में भी सिद्ध हो सैरंध्री, न्याय और दर्शन भी जानती हो।
0: महाराज, सैरंध्री सेविका भी तो आपकी है।
1: तो चलो, अंतापुर में चलने को प्रस्तुत हूँ।
2: महाराज की जय।
1: प्रियंबदे, क्या हाल है महारानी का?
2: जब से महारानी मूर्छित हुए हैं, मैं तथा सखी सैरंध्री निरंतर उपचाररत हैं। मुख पर निरंतर गुलाब जल छिड़का जा रहा है, सारा कक्ष करंड की गंध से सुवासित कर दिया गया है। करंड गंध के स्पर्श से महारानी की इंद्रियां कुछ चंचल तो हुई हैं।
1: क्या मूर्छा के साथ महारानी की इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो गई थी?
2: महाराज, मूर्छा के उपरांत जब सखी सैरंध्री ने महारानी का गात निरीक्षण किया ना।
0: हाँ हाँ महाराज, उस समय तो महारानी की स्थीवा और पयस्विनी दोनों ही इंद्रियां अत्यंत मंद गति से चल रही थी। मैंने और प्रियंबदा ने तत्काल महारानी के पगतल और करतल में घृत घर्षण किया, तब महारानी की कुंडलिनी ईषद उद्भूत हो पाई।
2: महाराज, अनेक उपचार किए, महारानी के मस्तक पर कपूर तथा चंदन का अनुलेप लगाया, उस समय महारानी के मुख का वर्ण वायतोद्भूत मेघ मंडल की भांति प्रतिपल परिवर्तित हो रहा था।
1: शरीर जब प्रलय स्थिति में पहुंचता है तो वैवर्ण अश्रु स्वर भंग स्वेद रोमांच आदि लक्षण मन स्थिति की विकृति व्यक्त करने को प्रकट होते ही है। प्रियंवदे, शरीर की समस्त शिराएं झंझना कर भड़क उठती है।
0: आप विराजे महाराज, आपकी स्नेह मधुर वाणी महारानी के कानों में पड़कर उनके ताप को तिरोहित कर मुहूर्त भर में ही उन्हें चेतन कर देगी।
1: ओ, देखो महारानी के नेत्र पक्षमों में सिहरन उत्पन्न होने लगी, नासाग्र प्रकंपित होने लगे, वो देखो अधरोष्ठों में स्पंदन प्रारंभ हो गया।
0: सखी प्रियंवदे, हला सखी, महारानी की उपचार की आगत व्यवस्था देखो। तुम अपर कक्ष में चलो भद्रे, चंदन चूर्ण का अंगराग बनाओ, मैं भी आती हूँ।
2: हला भद्रे, मैं चलती हूँ।
0: महाराज, महाराज, महारानी, महारानी, महाराज विराजे हैं।
3: त्रिशले, भद्रे,
2: कुमार, राजकुमार, मत जाओ, मत जाओ राजकुमार, मत जाओ, मत जाओ।
3: चित्त स्थिर करो त्रिशले, अधीर ना हो।
2: स्वामी,
3: हाँ,
2: मेरे विनय को स्वीकार कर लीजिए आर्य।
3: चित्त संयत करो आर्य, मन की व्यग्रता विवेक का विनाश कर देती है।
2: राजकुमार का बिछोह असह्य है महाराज, आपने उन्हें राजभवनों को छोड़कर जंगलों में निवास करने क्यों जाने दिया? राजसी वैभव में पला उनका सुकोमल गात्र बीहड़ वनों और उत्तप्त कठोर चट्टानों की दुर्घर्ष यातना कैसे सहन कर पाएगा महाराज, कैसे सहन कर पाएगा? आपने राजकुमार को वनवास करने की अनुमति क्यों दे दी महाराज, क्यों दे दी, क्यों दे दी?
3: राजकुमार स्वेच्छा से अरण्यवासी हुए हैं आर्य, उन्होंने स्वेच्छा से वैराग्य ग्रहण किया है। आसक्ति और मोह की श्रृंखलाओं को विखंडित कर वो स्वयं निर्बंध हुए हैं। सैरंध्रे,
0: आज्ञा देव।
3: सुनो, राजकुमार के वस्त्राभूषण यहां से अन्य कक्ष में ले जाओ। यहां रखने से महारानी को राजकुमार की बातें निरंतर स्मरण होती रहेंगी।
0: महाराज, महारानी हठात उन्हें राजकुमार के कक्ष से यहाँ ले आई है, हृदय से स्पर्श कर निरंतर अश्रु निपात करती रही। मैंने अनेक प्रकार से समझाने की चेष्टा की महाराज, किंतु मेरे प्रयत्न विफल हो गए।
3: त्रिशले,
2: आज्ञा आर्य।
3: लिच्छवी वंश की नंदिनी होकर इतना अविवेक शोभा नहीं देता। सैरंध्री,
0: आज्ञा कीजिए महाराज।
3: ले जाओ इन सारे वस्त्राभूषणों को और भविष्य में उन्हें कभी भी महारानी के समक्ष न आने देना।
0: जो आज्ञा देव, अभी मैं अज्ञात स्थान पर पहुंचाए देती हूँ।
2: महाराज, महाराज।
3: स्त्री की सहिष्णुता और धैर्य लोक में सर्वोपरि स्वीकार किए जाते हैं। तुम्हें क्या हो गया है शुभे?
2: मैं अपना कष्ट सहन करने में संकोच नहीं करती महाराज, किंतु राजकुमार, राजकुमार के कष्टों के संबंध में विचार करते ही मेरे मन प्राण से हर उठते हैं महाराज। किंचित आप ही विचारें, राजसी वैभव में पला मेरा पुत्र बीहड़ वन और कठोर पर्वतों में कैसे जीवन व्यतीत करेगा? कड़ा शीत, दुस्सह ग्रीष्म और मूसलाधार वृष्टि उन्हें कैसे सहन होंगी? कहाँ उनकी सुकुमार काया और कोमल अंग, और कहाँ जंगलों की कंटका वृत्त धरती, उत्तप्त शिलाखंड, सिंहों का बयावा गर्जन, हाथियों की विकराल चिंगार, बनैले हिंसक पशु।
3: त्रिशले,
2: महाराज,
3: त्रिशले
2: महाराज, तनिक सोचिए, राजकुमार वर्धमान के

0: कौन? सैरंध्री?
1: दासी कुछ निवेदन करना चाहती है।
0: अंतःपुर से आ रही हो ना?
1: हाँ महाराज।
0: कोई समाचार लाई हो वहां से?
1: महाराज अभिनय क्षमा, महारानी

0: लावण्य पर विचार कीजिए, जिनके कोमल पगों में प्रकृति ने स्वयं महावर लगाया हो, जिनके अभिराम नैनों के समक्ष खंजन पक्षी भी लज्जित हो जाते हों, जिनके रक्त कपूरों से मौलश्री भी संकुचित हो जाती हो, जिनकी धवल दंत पंक्ति की ज्योति के समक्ष मोती भी फीके पड़ जाते हों, जिनके प्रियदर्शी स्वरूप के समक्ष कामदेव का रूप भी नगण्य हो जाता हो, वो कोमल कंचन काया वाला राजकुमार कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा महाराज?
1: मोह और आसक्ति के कठोर बंधन तुम्हारी चिंतन दृष्टि को अवरुद्ध किए हुए हैं शुभे। अन्यथा तुम्हारा चिंतन एक पक्षी न होता।
0: एक पक्षी?
1: हाँ देवी, प्रस्थान से पूर्व राजकुमार ने क्या कहा था?
0: क्या कहा था?
1: राजकुमार ने कहा था, पिताजी आज जिस ऐश्वर्य के बीच में भोगरत हूं वे सब नश्वर हैं। मैं नश्वर भोगों के स्थान पर शाश्वत सुख भोग करना चाहता हूं। पिताजी अब संयम और त्याग का अवसर उपस्थित हुआ है, मैं आत्मशुद्धि की दिशा में बढ़ना चाहता हूं। मोह माया ममता और अस्मिता पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। अहंता की कीचड़ से ऊपर जीवन की निर्मलता का अनुसंधान करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब जो इंद्रियातीत है उसे उपलब्ध करूं और आपके कुल का गौरव बढ़ाऊं। महारानी उस की उस पराकाष्ठा पर पहुंचने वाले राजकुमार के पावन उद्देश्य में बाधक बनना क्या हमें उचित है? त्रिशले राजकुमार लौकिकत्व से अलौकिकत्व की ओर अग्रसित हुए हैं। उन्होंने हमारे यहां जन्म लेकर हमें धन्य कर दिया है। हमें तो गर्वान्वित होकर प्रसन्न होना चाहिए त्रिशले।
0: सत्य है आर्य, सत्य है, किंतु मन के ये बंधन बड़े शिथिल है, किन्हीं ऐसी रोम रश्मियों से बने हैं कि किंचित भी तनाव सहन नहीं कर पाते।
1: त्रिशले
0: आज्ञा देव।
1: आज से 28 वर्ष पूर्व तुमने एक विलक्षण स्वप्न देखा था, बड़े उत्साह से मुझे सुनाया था, स्मरण आता है? हाँ हाँ, राजकुमार को जन्म देने से पूर्व।
0: 28 वर्ष पूर्व?
1: हाँ हाँ, स्वप्न, एक ही स्वप्न में 16 स्वप्न त्रिशले।
0: 16 स्वप्न?
1: हाँ, वो भी अत्यंत विलक्षण और असामान्य।
0: विलक्षण असामान्य?

0: वैशाली नरेश की जय हो।
1: क्या समाचार है प्रियंवदे?
0: महारानी चार पहर से महाराज की प्रतीक्षा देख रही है।
1: ओ, महारानी को ये विदित तो है कि हम प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में विचरण को जाया करते हैं। प्रत्युष काल की नैसर्गिक सुषमा की छटा निहारा करते हैं। पक्षियों का कलरव, वायु के आघात से प्रकंपित वल्लरियों और गुल्मों पर पड़े थिरकते तुहिन बिंदु, प्राची का स्वर्णिम दिगंध, सब कुछ सुहाना लगता है उस समय प्रियंवदा। हाँ, तो महारानी त्रिशला हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। चलो चलो उनकी आतुरता का कारण पूछे।
0: दासी आराध्य के चरणों में प्रणाम निवेदन करती है।
2: हमारे अहो भाग्य त्रिशले, कि आज तुम व्यग्रता से उत्कंठित बड़ी भोर से ही हमारे कक्ष में हमारी प्रतीक्षा कर रही हो। व्यग्रता का प्रयोजन स्पष्ट करो भद्रे।
0: महाराज, रात मैंने एक विलक्षण स्वप्न देखा है।
2: स्वप्न?
0: अप्रत्याशित और अद्भुत। आप विद्वान हैं, अनेक विद्याओं का आपने अध्ययन किया है, ज्योतिष और आयुर्वेद का भी आपने गहन अध्ययन किया है। स्वप्न विचार का आपको परिपूर्ण ज्ञान है। कृपया

0: मेरा स्वप्न सुनकर उसके शुभाशुभ परिणाम और फल की व्याख्या करें।
1: हमारी प्रियकारिणी ने स्वप्न में क्या क्या विलक्षणत्व दर्शित किया, किंतु हाँ एक बात बताओ।
0: पूछिए देव।
1: स्वप्न दर्शन की बेला क्या थी?
0: रात्रि का तीसरा प्रहर रहा होगा महाराज।
1: और स्वप्न देखने के बाद तुम फिर निद्रा की गोद में विश्राम करने लगे?
0: नहीं महाराज, उस विलक्षण स्वप्न को देखकर निद्रा तो जैसे नैनों से तिरोहित ही हो गई, एक निमिष को भी नींद ना आ सकी।
1: तब तो समग्र लक्षण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि स्वप्न सार्थक है, उसका फल भी अवश्यम भावी है। हाँ तो सुनाओ अपना स्वप्न, क्या देखा?
0: महाराज स्वप्न इतना विचित्र था कि एक स्वप्न में 16 स्वप्न दिखाई दिए।
1: एक स्वप्न में 16 स्वप्न?
0: हाँ।
1: किस प्रकार के?
0: महाराज पहले मुझे स्वप्न में एक मदोन्मत्त हाथी दिखाई दिया।
1: मदोन्मत्त हाथी? फिर?
0: उसके पश्चात गर्जन करता हुआ एक सिंह और उसके बाद ऊंचे कंधों वाला श्वेत बैल।
1: श्वेत प्रशव, धर्म का शुभ्र प्रतीक। फिर?
0: फिर कमल के सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी, उसके बाद 2 सुगंधित मालाएं और उसके बाद नक्षत्रों की सभा में बैठा हुआ चंद्रमा। उसके बाद महाराज उदयाचल पर अंगड़ाई लेता हुआ सूर्य दिखाई दिया। तदनंतर कमल के पत्तों में ढके हुए 2 स्वर्ण के कलश दिखाई दिए।
1: और उसके पश्चात?
0: उसके बाद महाराज जलाशय में क्रीड़ा करती हुई मछलियां दिखाई दी। पश्चात स्वच्छ जल से परिपूरित सरोवर दिखा। सरोवर के बाद गंभीर खोज करता हुआ सागर दिखाई दिया। उसके बाद मणिजटित सिंहासन दिखा और उसके बाद रत्नों की ज्योति से प्रकाशित एक देव विमान दिखाई दिया महाराज।
1: रत्नों की ज्योति से प्रकाशित ज्योतित देव विमान?
0: हाँ।
1: फिर देवी?
0: उसके बाद महाराज धरणेन्द्र का गगन चुंबी विशाल भवन, फिर रत्नों की विशाल राशि और अंत में निर्धूम अग्नि दिखी महाराज।
1: निर्धूम अग्नि, बिना धुएं की अग्नि, स्वप्न रात्रि के तृतीय प्रहर में दिखाई दिया।
0: हाँ महाराज।
1: उस समय हस्त नक्षत्र था, प्रत्युष काल का पूर्वागम
0: है ना महाराज विलक्षण स्वप्न।
1: हाँ त्रिशले, सचमुच बहुत विलक्षण है ये स्वप्न।
0: किंतु अब इसका शुभाशुभ फल तो कथन कीजिए महाराज।
1: विलक्षण स्वप्न के समग्र मंगल प्रतीक ये द्योतित कर रहे हैं कि
0: बताइए ना महाराज,
1: कि महारानी त्रिशला के गर्भ से कोई ऐसा ज्योति पिंड अवतरित होने को है जिसकी समग्र विश्व वंदना और अर्चना करेगा, जिसके पावन नाम का स्मरण कर लोक के प्राणी सांसारिक भव बाधाओं के बंधन से मुक्त हो जाया करेंगे। शुभे, तुम्हारा जन्म धन्य है कि तुम किसी दिव्य आत्मा को प्रसूत करने वाली हो।
0: महाराज आप तो व्यर्थिया किंचन को महत्व दे रहे हैं।
1: नहीं शुभे, बड़ा शुभ लक्षण है, लघुत्व से महानत्व का सृजन होने वाला है त्रिशले।
2: अरे सुबुद्धि कहाँ जा रहे हो?
3: कुमार वर्धमान के साथ खेलने।
2: क्या कुमार महलों से बाहर इधर वन में खेलेंगे?
3: वे नित्या खेलने आते हैं।
2: महलों में खेलने के प्रसादन नहीं है क्या?
3: एक नहीं अनेक हैं। किंतु क्या तुम कुमार के स्वभाव को नहीं जानते? राजसी ठाट बाट उन्हें बिल्कुल नहीं सुहाते।
2: किंतु सघन वन में यहाँ उन्हें भय नहीं लगता किसी का?
3: भय? भय किसका?
2: अरे हिंसक पशुओं का।
3: हिंसक पशु तो उनको देखते ही मुंह छुपाकर किनारा कर जाते हैं।
2: अच्छा,
3: कुमार की दृष्टि में कुछ ऐसा जादू है कि जिस हिंसक जीव की ओर उन्होंने करुणा से देखा कि वह पानी हुआ।
2: समझा, तब तो कुंडलपुर के नगर वासियों ने उनका नाम उचित ही रखा है।
3: क्या नाम रखा है नगर वासियों ने उनका?
2: महावीर। मैं क्या जानूं भैया, मैं तो महाराज चेटक का नापित हूँ, अपने महाराज का कुछ दाय देने यहाँ आया। नगर में सुना लोग कुमार को महावीर महावीर कह रहे थे।
3: हाँ, महाराज ने कुमार में गुणों का वर्धन देखते हुए उनका नाम

0: वर्धमान रखा तो नागरिकों ने महावीर रख दिया। अरे अच्छा लो वो कुमार उस विशाल वृक्ष के नीचे पहुंच गए, अन्य साथी ही पीछे आ रहे हैं। अब मैं चला उसी वृक्ष पर चढ़ने उतरने का खेल खेलने। अरे कुमार कुमार मैं भी आया।
1: लो सुबुद्धि भी आ गया। हाँ पेड़ पे चढ़ने उतरने वाले खेल की रीति सबको ज्ञात है ना, चलो खेल शुरू करें।
0: कुमार कुमार बचाओ।
1: क्या बात है सुबुद्धि?
0: देखो देखो कुमार अब पेड़ के नीचे कैसे उतरे।
1: क्यों क्या भय है, रोते क्यों हो सुबुद्धि?
0: वो नीचे पेड़ के तने के चारों कितना विशाल सर्प है, उतरते ही डसलेगा। कुमार देखो कैसी फुंकार मार रहा है, कितना चपल और भयानक है। देखो देखो हम तो आज बहुत बुरे फंस गए कुमार, अब घर कैसे जाएंगे?
1: सुबुद्धि चिंता न करो, भय की कोई आवश्यकता नहीं, धैर्य रखो। सर्प है तो क्या, मैं धीरे से उतरकर अपने पांव से उसके फन को दबा लेता हूँ, फिर तुम उतर आना।
0: नहीं कुमार नहीं नहीं ऐसा मत करना कुमार, सर्प बहुत चंचल है, पांव से दबेगा नहीं उल्टा ही डस लेगा। नहीं नहीं नहीं नहीं कुमार नहीं, उसके समीप मत जाओ, डाल से झूलकर तुम उसके फन को कैसे दबा पाओगे, गिर जाओगे कुमार गिर जाओगे।
1: सुबुद्धि अब आ जाओ, देखो मैंने उसका फन अपने पांव के नीचे दबा लिया है, अब यह तुम पर आक्रमण नहीं कर सकता, उतरो शीघ्रता करो।
0: कुमार लो मैं तो उतर आया और दूर भी भागे जाता हूँ, किंतु तुम कैसे बचाओगे कुमार, पांव हटाते ही है तुम पर।
2: छोड़ दो मेरा गला थक रहा है, मैं घुटा जा रहा हूँ, छोड़ दो कुमार।
0: अरे कुमार यह सर्प तो धीरे धीरे मनुष्य के रूप में बदलता जा रहा है, अरे कौन हो तुम, कौन हो?
2: मैं संगम नामक देव हूँ कुमार, एक बार सधर्मेंद्र की सभा में वीरता और पराक्रम का प्रसंग छिड़ा, सबने कहा वर्तमान में वैशाली के राजकुमार वर्तमान से अधिक बलशाली और कोई नहीं, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा छोटा सा बालक और विश्व का सबसे पराक्रमी बलवीर, बस मैं यह राजकुमार की परीक्षा करने चला आया। मैंने विक्रिया से एक विकराल सर्प का रूप धारण कर लिया, किंतु कुमार धन है तुमको और तुम्हारे पराक्रम को, जब तुमने मेरे मस्तक पर पांव रखा तब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैं पाताल में धस जाऊंगा, जैसे मेरे फन पर सुमेर पर्वत का बोझ चढ़ रहा हो। कुमार आज से मैं आपका नाम वीर रखता हूँ, मेरा अपराध क्षमा करें नाथ, मेरा अपराध क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें।
3: क्या ये सत्य है महाराज कि कुमार विवाह के प्रति उदासीन है?
4: हाँ त्रिशले, कुमार ने विवाह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया।
3: अस्वीकृत कर दिया? क्यों, क्या कलिंग नरेश जित शत्रु की कन्या यशोदा हमारी कुलवधु बनने के योग्य नहीं है? आपने भी तो उसे देखा है महाराज, चंपक लता के समान उसकी कमनी ही काया, प्रफुल्ल पुंडरीक के समान उसका मुख, चंद्र किरणों के कूर्चक से प्रक्षालित उसके अवयव, मुक्ता के समान कर्ण प्रदेश तक विस्तरित उसके नेत्र, विमल चीनांचुक से आवृत उसकी स्निग्ध अलके, रक्त कमल से उसके कपोल। महाराज एक कुलवधु में और क्या चाहिए भला?
4: प्रश्न राज कन्या यशोदा के कौलीन्य और पात्रता का नहीं है त्रिशले, प्रश्न राजकुमार की अभिरुचि का है।
3: तो उनकी अभिरुचि क्या है?
4: क्या बताऊं?
3: क्यों, क्या मैं उनकी माता नहीं, क्या मुझे ये जानने का अधिकार नहीं
4: है? किंतु राजकुमार की अभिरुचि का ज्ञान तुम्हारे अनुकूल नहीं, वो विवाह को तैयार नहीं है त्रिशले।
3: आपने समझाया नहीं महाराज कि वय का यौवन काल ही विवाह के लिए श्रेष्ठ होता है।
4: समझाया, जानती हो राजकुमार ने क्या उत्तर दिया?
3: तनिक मैं भी सुनूं आर्य।
4: राजकुमार ने कहा पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ, किंतु आप ही कहें यहाँ कौन किसका है, सारा संसार मोह और आसक्ति की कठोरतम श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ प्रतिपल छटपटाता रहता है, क्या क्या मैं भी उसी राह पर चलने लगूं, मुझे लगता है कोई नया राजमार्ग मेरी प्रतीक्षा कर रहा है।
3: क्या?
4: जो एक ऐसे लक्ष्य पर पहुंचता है जहां सब कुछ समत्व और शांति के वातावरण में स्पंदित होता है। मुझे अनुकूलता दीजिए तात कि मैं गहन अंधकार में किसी अद्रप्त आलोक को खोज निकाल सकूं, विश्व के नारकीय जीवन को स्वर्गीय आभा से आलोकित कर सकूं। पिताजी, मेरा एक निश्चित लक्ष्य है, हम जिए और सबको सुख से जीने दें। संसार में हिंसा का साम्राज्य समाप्त हो जाए, समत्व की भावना प्रतिष्ठित हो, पशु हो या पक्षी, पुरुष हो या प्रकृति, हम सबका अस्तित्व समान रूप में देखें, किसी का दमन न करें, न मन से, न वचन से और न कर्म से, यही सच्ची अहिंसा है। त्रिशले
3: कुमार ने,
4: हाँ त्रिशले, जब मैंने कुमार के ये वचन सुने तो मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा उठ गया। मुझे लगा कि मेरा पितृत्व धन्य हो गया। अब तुम ही बताओ शुभे, मैं कुमार को विवाह के लिए कैसे वाद्य कर सकता था?
3: समझी, कुमार का प्रारंभ से ही मौन रहना, विचारों में खो जाना और भोग से अनासक्त होना आज ये रूप प्रकट कर रहा है। किंतु महाराज, मैं माँ हूँ, मुझे अब भी आशा है।
4: क्या?
3: कि कुमार का मन आज नहीं तो कल अवश्य बदलेगा। वे विवाह करके एक दिन इस घर में बहू अवश्य लाएंगे, मेरी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे महाराज, अवश्य।
5: एक था राजकुमार। अभी आपने सुना डॉक्टर ब्रज बल्लभ मिश्र का लिखा ये नाटक। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे ब्रज गोपाल मुनि, दीपा रानी श्रीवास्तव, विमल अरोरा, डॉक्टर अचला नागर, लिली अरोड़ा, गोपेंद्र गोस्वामी, नवनीत यादव, राजेश शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, शिवदत्त शर्मा, राधा बिहारी गोस्वामी, सतीश माथुर और राम नरेश पांडे। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे सतीश माथुर।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन। राग है जय जय वंती।

0: अभी आप उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का ख्याल गायन सुन रहे थे। राग था जय जयवंती। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में

0: केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Fifteen people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon. The tragedy occurred when a massive fire broke out at an animation coaching center located inside a commercial complex. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. Chief Minister Yogi Adityanath has said a high-level committee comprising the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home will investigate the incident and those found responsible would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire. In a social media post, Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. The injured will receive 50,000 rupees each. Prime Minister Narendra Modi has stated that India is a fast-growing and credible economy and has become a reliable power. Mr. Modi said this while addressing a summit organized by a private media house in New Delhi today. He noted that several initiatives have been launched in the last 12 years with the motive of Nation First. Mr. Modi asserted that Nation First is India's highest guiding principle today.
4: Bharat jo kar raha hai, wo aane wale 1000 varsh ka future likhne wala hai. और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: द प्राइम मिनिस्टर सेड द कंट्री हैज विटनेस्ड एंड एंड्योर्ड साइकल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रक्शन। ही एडेड दैट इंडिया कैरीज द मेमोरी चिप ऑफ एजेस विद इन इट्स कॉन्शियसनेस। मिस्टर मोदी स्टेटेड दैट इंडियाज एक्शंस आर शेपिंग द फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 1000 ईयर्स, हाईलाइटिंग द